प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
2: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। श्रावण प्रभात की इस पुण्य वेला में मॉरिसस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रावण मास और अपने चरमोत्कर्ष पर भगवान शिव और माँ पार्वती की और आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्यों न हो भगवती जगदम्बा तो और भगवान शिव की अर्धांगिनी है। जयाम्बिके जगन मातर जय सर्व जगन्मयी जयान वधिकैश्वर्य जयानुपम विग्रहे जय वांग मनसातीते जया चिध्वांत भंजिके जय जन्म जराहीने जय कालोत्तरोत्तरे मन वाणी से अतीत शिवे आपकी जय हो। अज्ञानांधकार का भंजन करने वाली देवी आपकी जय हो। जन्म और जरा से रहित हे माँ हे उमा आपकी जय हो। काल से भी अतिशय उत्कृष्ट शक्ति वाली दुर्गे आपकी जय हो। जया नेक विधानस्थे जय विश्वेश्वर प्रिय जय विश्वसुराराध्ये जय विश्व ब्रिजिम्भणी। अनेक प्रकार के विधानों में स्थित परमेश्वरी आपकी जय हो। विश्वनाथ प्रिय आपकी जय हो। समस्त देवताओं की आराधनिया देवी आपकी जय हो। संपूर्ण विश्व का विस्तार करने वाली जगदम्बिके आपकी जय हो।

0: मंगलमय दिव्य अंगों वाली देवी आपकी जय हो। मंगल को प्रकाशित करने वाली आपकी जय हो। मंगलमय चरित्र वाली सर्व मंगले आपकी जय हो। मंगलदायिनी देवी आपकी जय हो। नमः परम कल्याण गुण संचय मूर्तये त्वत्तः खलु समुत्पन्नम् जगत्त्वायैव लीलये। परम कल्याणमय गुणों की आप मूर्ति हैं, आपको नमस्कार है। हे माँ, संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है और आप में ही लीन हो गया। हे भगवती, हे जगदम्बा, सदा शिवांकमारूढ़ा शक्तिरिच्छा शिवालया जननी सर्वलोकानां प्रयच्छतु मनोहरम मनोरथम। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। काले वर्षतो पर्जन्य पृथ्वी सस्यालिनी देशो हम शुभरणी तो ब्राह्मण संतो निर्भया। बादल समय पर वर्षा करें,

0: पृथ्वी धान्य से समृद्धि हो। यह देश भारतवर्ष शोभरहित हो जाए और ब्राह्मण निर्भर हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सबका सुख का कल्याण करें, सबके सुख में आनंद चित से जीवित रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुखवा भवेत्। सबके सुख के लिए, देश के कल्याण के लिए, परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए, सबके कल्याण में अपना कल्याण बनाएं, सबके खुशियों में अपने को हर्षित माने, भाग्यशाली माने, तब जाकर के यह जीवन सतर्क और पवित्र रहता है। स्वस्थयस्तु हो विश्वस्य खल प्रसीदता, ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथ्योदया, मनजस्य भद्रे बजातु धयते भोक्षजयेत्, आवेशयताम नोहो मतिरा मित्यात्मोपिशाम। हे नाथ, विश्व ब्रह्मांड का कल्याण हो, सभी हित का कल्याण हो, आकाश पृथ्वी जल विश्व का कल्याण में ही अपना कल्याण होता है। दुष्ट लोग शांत हो जाए, जितने दुष्ट कर्म वाली है, जितने क्रोध वाली है, जितने अहंकार वाले हैं, वो के मन में शांत प्रदान करें, सबका कल्याण हो, कोई किसी के लिए दुष्ट शब्द और दुख न दें। इस कल्याण के लिए सभी प्राणी अपने बुद्धि के द्वारा एक दूसरे का भला सोचें, सबका हित के लिए सोचें, सबका कल्याण के लिए ही सोचें, मन सदा भलाई और मंगल का ही चिंतन करें, एवं हम सब की बुद्धि बिना किसी हेतु के भगवान में आविष्ट रहें। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघाणाम रसानाम छंदसामपि मंगलानामश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीनान पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरं श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज सैटरडे 22 अगस्त के श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करता हूं। कल जहां से विराम लिया था दोहा संख्या 58 वहीं से हम आगे बढ़ते हुए आज दोहा संख्या 39 को हम प्रारंभ करते हुए शिव सती चरित्र को आगे बढ़ाते हैं।

सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचन

ही उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहे हैं। कही

वेद जसु गावा। सती जी के हृदय ग्लानी कुछ कहीं नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाला है, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ

0: चलिए आज इसको यही पर विराम दे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: श्रावण मास के विशेष कार्यक्रम में आर्य सभा मॉरिशस से पंडिता नर्मदा पतिया की ओर से श्रोताओं को हमारी सादर नमस्ते। सेवा में प्रस्तुत है एक वेद मंत्र। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम् तन्मे राध्यताम इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। ओम शम। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के इस पांचवें मंत्र में वेद माता हमको यह सीख दे रही है, परमेश्वर की ओर से उपदेश दिया जा रहा है कि हमें न्याय युक्त सत्य को ग्रहण करना चाहिए जो सबका भला करने वाला है। मनुष्यों का आचरण दो प्रकार का होता है, एक सत्य और दूसरा झूठ। अर्थात जो मनुष्य मन और वाणी से सत्य का आचरण करते हैं वे देव कहलाते हैं, और जो झूठ का आचरण करने वाले हैं वे असुर, राक्षस आदि नामों के अधिकारी होते हैं। ये शुभ और अशुभ संस्कार हमारे जीवन को बड़ा प्रभावित करते हैं। शुभ संस्कार विशाल रूप से बढ़ जाने पर व्यक्ति को देवता की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देता है। देवता का सही अर्थों में दूसरों को देने वाला, दूसरों का हित करने वाला, दुख दूर करने वाला होता है। सत्य जीवन की आधारशिला है। जहाँ सत्य है वहाँ प्रकाश है, वहाँ उन्नति है, वहाँ जीवन ज्योति है और शांति है। असत्य को छोड़ना अवनति का प्रथम सोपान है। वह अवनति हमें जीवन के लक्ष्य से दूर ले जाती है। सत्य प्रकाश है, वह मार्गदर्शक है और विघ्नों के समय सबसे बड़ा रक्षक है। सत्य दिवत्व की ओर ले जाता है, असत्य दानवता की ओर। मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए सत्य का व्रत लेना आवश्यक है। यह व्रत ही उसे घोर विपत्तियों के बाद सत्य रूपी ब्रह्म का दर्शन कराता है। इस मंत्र में अग्नि व्रतपति, हे अग्नि रूप परमात्मा, व्रतों के पालक, व्रतम चरिष्यामि, हम सत्य आदि का व्रत पालन करेंगे। सफलता उसी को मिलती है जिसे सफलता पर विश्वास होता है। आत्मविश्वास के बिना ईश्वर या देवता भी हमारी सहायता नहीं कर सकते। जीवन में महान कार्य वे ही लोग करके दिखा सकते हैं जो दृढ़ आत्मविश्वासी है। जिन्हें अपनी शक्ति पर विश्वास नहीं, वे कुछ नहीं कर पाते। आत्मविश्वासी लोग जीत की ओर, प्रगति की ओर बढ़ते हैं। हमारे पूर्वजों ने भी एक व्रत धारण किया था, व्रत पालन। व्रत सिद्ध हो और हमारी आत्मविश्वास की शक्ति से असंभव लगने वाले कार्य इस जंगल लगने वाले देश को उपजाऊ बनाकर विश्व को चमत्कृत कर दिया। अपनी कार्य क्षमता के बल पर मनुष्य क्या नहीं कर सकता। सफलता घर बैठते नहीं मिलती। सफलता प्राप्त करने से पहले आत्मविश्वास व्रत धारण करना होता है। यह व्रत जो लोग प्रायः कहते हैं कि आज मेरा व्रत है, उपवास है, भोजन नहीं करूंगा आदि, कदापि नहीं। व्रत लेना दृढ़ आत्मविश्वास का होना है। इस विराट ब्रह्मांड की कार्य प्रणाली अपूर्व अद्भुत ढंग से सुनियोजित है। प्रकृति स्वयं हमें इस बात की शिक्षा देती है कि सफलता का भेद क्या है। किसी पेड़ के उगने से पहले उसका बीज पढ़ना डालना आवश्यक है। ऐतरेय ब्राह्मण ने इस विषय में सुंदर बात कही है कि श्रद्धा पत्नी सत्यम यजमान। श्रद्धा पत्नी है और सत्यम यजमान। यजमान सत्य के साथ श्रद्धा रूपी पत्नी भी आवश्यक होनी चाहिए। सत्य के श्रद्धा के समन्वय से ज्ञान और विवेक की ज्योति उत्पन्न होती है। दोनों का समन्वय ज्ञान ज्योति को प्रज्वलित करता है। सत्यम ब्रह्म। मनुष्य को व्रत में सफलता के लिए आत्मिक शक्ति चाहिए। वह शक्ति हमें एकमात्र परमात्मा से प्राप्ति होती है। यही शक्ति है, इसका ही बार बार मनन और चिंतन करना चाहिए। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

आदरणीय श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते। श्रावणी वेद मास उपलक्षे गहलोत राजपूत महासभा की ओर से यह विशेष कार्यक्रम में गायत्री दावलाल आप सभी जनों का इस प्रातः बेला में स्वागत करती हैं।

देव शक्तियों को धारण करने के दृढ़ और सुयोग्य पात्र माध्यम है। आप और आपके यज्ञ संचालक कुटिल न बने, पोषक विष्णु देव ही आप पर आरूढ रहे। विशाल वायुमंडल में विचरण करते हुए वायु सेवन प्राण संवर्धन करें। राक्षसी वृत्तियां दूर करने के बाद पांचों उंगलियां अथवा पांच विद्या शक्तियां कर्म शक्ति, ज्ञान शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति और आत्मशक्ति ईश्वरीय प्रयोजनों में लगे। ओ

हणाम यज्ञनि शोमाभ्याम जोष्ठम गृहणामि। सृजनकर्ता परमात्मा द्वारा रची गई सृष्टि में मानो अश्विनी कुमारों की बाहुओं तथा पूषा देव के हाथों से तुझे साधक के हविष यान को ग्रहण करता हूँ। अग्नि को जो प्रिय लगे हम अधर्व वही विष यान स्वीकार करते हैं। अग्नि तथा सोम के लिए प्रिय पदार्थ ही ग्रहण करते हैं।

कक्षा, आपको अनुदारता के लिए नहीं उन्नति के लिए निर्मित किया है। हमें आत्मा में विद्यमान ज्योति दिखाई दे, इस पृथ्वी पर सज्जनता का बाहुल्य हो। धन्यवाद। ओ

0: प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वाज्यातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणां।
1: हे सब प्रजा के स्वामी प्रजापति, आप सभी प्रजाओं का पालनहार हैं। आप सृष्टि में वास करने वाले सभी प्राणियों की रक्षा करते हैं। आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी उत्पन्न हुए जड़ और चेतन पदार्थों को अपने वश में नहीं कर सकता। आप सबसे ऊपर हैं। हम जिस जिस उत्तम पदार्थ की कामना करते हैं तथा उन्हें पाने के लिए आपकी सहायता लेते हैं, शुद्ध मन से प्रार्थना करते हैं। हमारी कामनाएं और प्रार्थनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो, जिससे हम सब लोग धन ऐश्वर्य बल बुद्धि ज्ञान और सुख समृद्धि के स्वामी बनें।

0: धन की इच्छा एवं धन की वृद्धि के लिए शुद्ध व्यापार एक उत्तम मार्ग है, एक उत्तम कर्म है। जिस पूंजी अथवा धन को लगाकर व्यक्ति व्यापार करता है और धन को बढ़ाता है, उसकी रुचि और एकाग्रता उस व्यापार में बनी रहे। इंद्र, प्रजापति, सूर्य, सोम और अग्नि देव की कृपा उस व्यापार और व्यापारी के ऊपर बनी रहे। व्यवसाय करने वाले व्यक्ति की रुचि व्यवसाय में बनी रहे। यह रुचि तभी बढ़ती है जब व्यापारी अपनी बुद्धि के अनुसार काम करें। उत्तम व्यापारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अपने व्यापार को सुचारू रूप से बढ़ाते रहें। धर्म से जुड़ा हुआ धन दरिद्रता का नाश करता है।
1: ओम इंद्रधनस्य सातये हवामहे जेतारम् अपारजितम् स्वर्षडति द्विशंसनः स्वर्षडति द्विषः।
0: विद्या और ऐश्वर्य रूपी धन की प्राप्ति के लिए सर्वविजयी परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को अपने हृदय में आवाहन करें। ऐश्वर्यशाली प्रभु को कोई पराजित नहीं कर सकता। वह धन के दाता परमेश्वर हमारे शत्रु रूपी दुर्गुणों को पूरी तरह नष्ट करके परम सुख प्रदान करता है। वही हमारे अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश करता है। इस संसार में सुख पूर्वक निर्वाह करने के लिए हमारा वास्तविक धन विद्या, सद्बुद्धि और उत्तम ऐश्वर्य है। इनकी प्राप्ति और संरक्षण में सुख समृद्धि का विस्तार होता है।

0: या सभी को नमस्कार। आज सुबह से बंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर एक नया नाम और नया लोगो नजर आएगा। फिलिंग इस नई पहचान का अनावरण कर लावाचे जिससे खब बोपलों में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। बंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम बंजन ने विशेष रूप से मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया। उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। मॉरिशस ने अपनी कोयले की खपत का 15% हिस्सा बायोमास से बदलने का लक्ष्य तय किया है। इसे हासिल करने के लिए वो भारत की विशेषज्ञता की सहायता लेगा। कल भारतीय पक्ष के साथ हस्ताक्षर किए गए एक एमओयू के बाद ऊर्जा मंत्री ने इसकी जानकारी दी। मॉरिशस में जल संसाधनों की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। कई जलाशयों में पानी का स्तर कम होने के बावजूद सेंट्रल वाटर अथॉरिटी लोगों तक पानी की आपूर्ति बनाए रखने के प्रयास जारी रखे हुए हैं। और विदेश में यूक्रेन के मध्यवर्ती शहर क्रिव्ये रिह में एक शॉपिंग सेंटर पर रूसी ड्रोन हमले में कम से कम 15 लोगों की मौत हुई है। हमले में 130 लोग घायल रहे हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। मलबे में अभी भी और लोगों के फंसे होने की खबर है। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि सुबह के वक्त आसमान में कुछ घरी के लिए बादल घेराएंगे और पूर्व उत्तर तथा सेंट्रल प्लाटू पर जहां तहां बारिश हो सकती है। उसके बाद मौसम सुहाना रहेगा। दोपहर में पश्चिम एवं सेंट्रल प्लाटू पर बादल घेराएंगे और जहां तहां थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। अन्य इलाकों में धूप खिली रहेगी। तापमान 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहेगा तटवर्ती इलाकों में, बल्कि सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हल्की और अस्थिर हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। दक्षिण पश्चिम में लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:27 पर, सूर्यास्त होगा 5:59 पर।
1: RM3 Radio.

महफिल में मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर तदब्बुर करेंगे। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई कितना हसीन व जमील नाम है, कितना प्यारा और ख़ूबसूरत लफ्ज़ है, कितना दिलकश नाम है, इस नाम की दिलो जान पर कितनी ज़्यादा तासीर है, असर है और दिलों में कितना बड़ा मकाम व मर्तबा है। इसी ख़ूबसूरत एहसास के साथ कुरान पाक की तिलावत समात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

कुछ भी नहीं, और आपके पहलुओं में उस चटाई के निशान हो गए। तोशे खाना में मुट्ठी भर के जौ के सिवा कुछ और नहीं। आंखों से बेख्तियार आंसू निकल आए। इरशाद हुआ, उमर क्यों रोते हो? बोले, क्यों ना रूं? और आपकी यह हालत है, और कैसर व किसरा दुनिया के मज़े उड़ा रहे हैं। सो हुज़ूर ने फरमाया, क्या तुम्हें यह पसंद नहीं कि हमारे लिए आखिरत हो और उनके लिए दुनिया हो? एक दिन ये मुस्लिम शरीफ में यह हदीस पाक है, एक दिन अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अपने दोस्तों को कोश रोटी खिलाई तो रो पड़े और कहा, रसूलुल्लाह सल्लम का विसाल भी हो गया और आपने पेट भर कर जौ की रोटी कभी न खाई। अगर आप किसी चीज़ से मुतमत्ते न हो सकते, लुत्फ़ंदोज़ फ़ायदा न उठा सकते, तो साहबे कराम इससे कभी भी मुतवत्ते होना और फ़ायदा उठाना पसंद न करते। आपका विसाल हुआ तो आपके कफ़न के लिए एक हुल्ला ख़रीदा गया, लेकिन बाद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे कपड़ों में कफनाए गए। यह हुल्ला हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अबी बकर ने इस ख़्याल से लिया कि इसको अपने कफ़न के लिए महफूज रखेंगे, लेकिन फिर कहा कि जब अल्लाह की मर्ज़ी न हुई कि वो रसूलुल्लाह का कफ़न हो तो मेरा क्यों हो? ये कहकर उसको फ़रोख करके उसकी कीमत सदका कर दी। ग़ज़वा तबूक में सख्त गर्मियों के ज़माने में हज़रत अबू खुसैमा एक सहाबी थे जो इस ग़ज़वा में शरीक न हो सके। एक दिन वो घर में आए और तो देखा कि बेटियों ने, बीवियों ने उनकी आराइश के लिए नहायत सामान किया है, बाला खाने पे छिड़काव किया है, पानी को सर्द किया, ठंडा किया, उम्दा खाना तैयार किया, लेकिन वो ये तमाम सामान इशरत देखकर बोले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गर्मी में खुले हुए मैदान में हो और अबू खुसैमा साया में हो, सर्द पानी, उम्दा ग़िज़ा और ख़ूबसूरत औरतों के साथ लुत्फ़ उठाए। खुदा की कसम, ये इंसाफ नहीं है, मैं हरगिज़ बाला खाना पर न आऊँगा। चुनाचे उसी वक्त ज़ाद राह लिया और तबूक की तरफ रवाना हो गए। ये है वो मिसाली मोहब्बत अल्लाह जल्ला मजहू ने इन अज़ीम साहबा को, इन अज़ीम हस्तियों को अता की। विसाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते तो साहबे किराम बे इख्तियार रो पड़ते। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह उन्होंने फरमाया, जुमरात का दिन किस कदर सख्त था, इसके बाद इस कदर रोए कि ज़मीन की कंकरियां आंसू से तर हो गई। हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ने पूछा कि जुमरात का दिन क्या? बोले, इसी दिन हुज़ूर सलाम की बीमारी मुबारक

0: बहुत ज़्यादा सख्त थी, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। सही मुस्लिम किताब अल वसीया में ये रिवायत मौजूद है। आपकी मुबारक सोहबतों की याद आती तो सहाबे किराम की आंखों से बेख्तियार आंसू जारी हो जाते। एक बार हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु अंसार की एक मजलिस में गए तो देखा कि सब लोग रो रहे हैं। सबब पूछा तो बोले कि हम आपकी मजलिस, हमें आपको आपकी मजलिस यानी हुजूर की मजलिस याद आ गई। हाफिज इब्ने हजर ने इस हदीस की शरह में लिखा कि यह वाकया आपकी बीमारी के ज़माने का है, जिसमें अंसार को ये खौफ पैदा हुआ कि अगर इस मर्ज़ में आपका विसाल हुआ तो फिर आपकी मजलिस मुयस्सर न होगी, इसलिए वो इस गम में रो पड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हु जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्किरा फरमाते तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। सुन्नात सुन के रोना, कसायद सुन के रोना और हुजूर सलाम की बातें सुन के रोना, ये सहाबे किराम की अजीम अदा है। अल्लाह पाक हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रोने की अजीम सआदत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।
1: अल्लाह पाक हमको इस बयान से फैज़ उठाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। उम्मते इस्लामिया नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और उसकी इज़्ज़त व तौक़ीर करने लगी। कोई घर इस नाम से खाली नहीं है। बाज़ इस्लामी ममालिक के लोग हर नौमौलूद के नाम के शुरू में मोहम्मद लिखते हैं ताकि वो उस बाबरकत नाम से बरकत हासिल करें। क़यामत तक रूए ज़मीन के कोने कोने पर ये नाम बुलंद होता रहेगा और अहले ईमान उसके गुण गाते रहेंगे।

आला अल्लाह मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटा देगा, मैं हाशिर हूँ, मेरे कदमों पर लोगों को जमा किया जाएगा, मैं अल आक़िब हूँ यानी पीछे आने

कुरान करीम में तकरीबन 4000 मकामात पर इशारतन किनाए और इसमें मौसूल ज़माइर और इसमें इशारा की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आया है। हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि वो हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ से पानी पीना नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए। बेशक वो दुआएँ सुनने वाला और उन्हें कबूल फरमाने वाला है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। सामईन कराम, सबाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दे। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

இன்றைய ராசி பலன். மேஷம் முயற்சி, ரிஷபம் மகிழ்ச்சி, மிதுனம்

94.6 98.2 તમે સાંભળી રહ્યા છો RM3 રેડિયો।

भक्ति में शक्ति। प्रिय श्रोताओं, सादर अभिवादन। श्रोताओं, जीवन जीने के लिए आत्मविश्वास का होना आवश्यक है, और यह आत्मविश्वास तभी उत्पन्न हो सकता है जब हमने साधना की हो। साधना का बल मनुष्य का वास्तविक बल होता है। साधना से शक्ति प्राप्त कर साधक उसे अपने जीवन में समाहित कर सहज ही दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पाता हुआ अपने अभीष्ट लक्ष्य की पूर्ति में सहजता और निर्द्वंद्वता से प्रविष्ट हो सकता है।

श्रोताओं, जीवन में चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता के लिए या पूर्ण भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए या संपूर्ण निरोगी जीवन के लिए

श्रोताओं, आज जीवन में इतना तनाव, इतने द्वंद पाए जाते हैं कि पग पग पर व्यक्ति ऐसा अनुभव करता है कि उसने अपनी किसी समस्या के लिए जो समाधान प्राप्त किया है वह वास्तव में चार नई समस्याओं को जन्म देने वाला बनता जा रहा है। इस उहामों में व्यक्ति एक बेजान मूर्ति के समान हो जाता है। वह कुछ नहीं कर पाता, उल्टे उसके होंठों की मुस्कुराहट खो जाती है और हृदय की उमंग खो जाती है। ऐसे में व्यक्ति को प्रभु की याद आती है। आखिर एक प्रभु ही तो है जो हर विपदा से हमारी रक्षा

श्रोताओं, अगर हम चाहें तो ईश्वर की साधना के माध्यम से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। प्रभु हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य करते हैं। इस तरह हमारे जीवन में कोई अभाव नहीं रहता।

श्रोताओं, ईश्वर की साधना करने से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। साधना से तो जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। जो ध्यानपूर्वक ईश्वर की साधना करता है, उस साधक का किसी भी प्रकार का अहित नहीं हो सकता। साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। साधना में इतनी शक्ति होती है कि साधना करते करते साधक स्वयं शक्तिमान हो जाता है।

श्रोताओ, ईश्वर का साथ हमें पाप कर्मों से बचाता है और हित कर्मों की ओर प्रवृत्त कराता है। आपत्ति आने पर जो साथ दे, उस परमात्मा के उपकार को सदैव याद करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना हमारा कर्तव्य।

श्रोताओं, इस जीवन में मानव के नाते हमारा सबसे बड़ा धर्म है सत्य का पालन करना। हमें अप्रिय एवं कटु वचनों का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, अपितु हमें सदैव सत्यवाणी का प्रयोग करते हुए दूसरों को हमेशा सुख पहुंचाना चाहिए। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें।

好，听众朋友，今天的音乐风景线就到这里跟您说再见了。祝听众朋友周末愉快，下次节目我们再会。

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे करुणा जी नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। इंजन का नाम बदलकर फिलिन हो गया है। प्रथम स्थानीय वितरक बंजन ग्रुप ने कल बोपलों में आधिकारिक तौर पर अपनी नई पहचान का अनावरण किया। आज सुबह से बंजन ग्रुप के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर नया लोगो फिलिन देखा जा सकता है। अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में पेट्रोलियम क्षेत्र में भारत के साथ वर्षों से विकसित किए गए सहयोग और साझेदारी का उल्लेख किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां लगातार अनिश्चित होती जा रही हैं, इसलिए मॉरिशस को अपनी ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। बंजन ग्रुप के सीईओ विक्रम बंजन ने खास रूप से मॉरिशस की कंपनियों की क्षमता पर जोर दिया। उनका ये कहना रहा कि स्थानीय कंपनियों में भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। बंजन ग्रुप ऊर्जा क्षेत्र में अपने निवेश जारी रख रहा है। फिलहाल 5 नए भंडारण टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर लगभग 1 बिलियन रुपए का निवेश किया जा रहा है। मॉरिशस ने जैव ईंधन और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए एक नया रणनीतिक ढांचा तैयार किया है। इस पहल के तहत गन्ने की खोई यानी बागास, बायोमास, जैविक कचरे और इस्तेमाल किए गए खाद्य तेल जैसे कई स्रोतों से अपनी ऊर्जा पैदा करने की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जीवाश्म यानी फसिल ईंधनों पर मॉरिशस की निर्भरता कम करना है। हज यात्रियों की व्यवस्था करने वाले प्रत्येक ऑपरेटर के लिए न्यूनतम हज यात्रियों की संख्या 50 से बढ़ाकर 100 कर दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड की ओर से परमिट जारी किए जाने से पहले ऑपरेटरों को जमा कराने वाली गारंटी राशि से संबंधित नियम भी निर्धारित किए गए हैं। और विदेशी स्तर पर संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि सोमालिया में बच्चों के बीच जानलेवा कुपोषण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहायता में कटौती के बाद 200 से अधिक स्वास्थ्य और पोषण केंद्रों को बंद करना पड़ा है। यूनिसेफ ने बताया कि 2026 के पहले 6 महीनों में गंभीर तीव्र कुपोषण और उससे जुड़ी जटिलताओं के साथ स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती बच्चों की संख्या में 32% की वृद्धि हुई है। इसके साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। रू कुवेंट डी लोरेट क्यूपिपमें 97 साल की 97 ईयर ओल्ड श्रीमती दमवंती गोवर्धन पैदाइशी नाम दमादर सिंह जो दमवंती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे इनके बेटे देवेंद्रनाथ सिंह गोवर्धन के मकान रू कुवेंट डी लोरेट क्यूपिप से उठाकर दाह संस्कार के लिए बिगाहा की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोकग्रस्त इस परिवार के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:04 हुए हैं।
4: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
3: सभी दोस्तों को अनीता की ओर से शत शत नमन, हेलो आदाब। एंड आप रेडियो मनोरंजन की लहरों से जुड़े हुए हैं, जहां आप मेरा साथ दे रहे हैं अभी से लेकर 2 बजे तक इन योर फेवरेट शो, जहां पर यादों की महक हो, जहां पर भावनाओं का सागर हो, जहां पर गीतों का खनक हो और जहां पर मुस्कुराहट की झलक हो। जी दोस्तों, इन वन एंड ओनली सुहाना सफर कार्यक्रम मैं अनीता आप लोगों के शनिवार को पूरी तरह जबरदस्त बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए, आपके नाम हम करते हैं फिल्म आक्रमण का गाना। 1975 अर्थात 1975 के दशक के मधुर प्रेम गीतों में खो जाइए, जहां किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर जी की आवाजें दिलों को छू जाती हैं। फिल्म आक्रमण का यह गाना, ये मौसम आया है एक ऐसा नगमा है जो आप आज आपको रोमांस सिखा देगा, ये रोमांस की जो यादें हैं वो ताजा कर लेगा और उनकी आवाजों में छिपे दर्द और खुशी को महसूस करें, जो हर पीढ़ी के लिए अनमोल है। इस गाने में डूबे हुए लम्हों को महसूस करें और उन सुनहरे दिनों को याद करें जब प्यार में सादगी और गहराई होती थी।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर जी दोस्तों, हम ऐसे गाने चलाएंगे जो आपको ख्वाबों ख्यालों में ले जाएंगे। और क्या बात है, लाजवाब गीत, बहुत ही शानदार तथा हमेशा जवा रहने वाला गीत ये मौसम आया है। माइंड ब्लोइंग क्रिस्टल क्लियर, हार्ट टचिंग मेलोडियस वॉइसेस, ऊपर से अमेजिंग कंपोजिशन, एक्सेलेंट रिलीज, ऑल टाइम बेस्ट मेल सिंगर किशोर दा तथा बेस्ट फीमेल सिंगर लता जी। मेकिंग ए परफेक्ट हार्ट टचिंग एवरलास्टिंग मेलोडियस रोमांटिक सॉन्ग। जी दोस्तों, ये मौसम आया है और आज का मौसम कुछ अलग है। कहीं धूप खिली हुई है, कहीं बादल छाए हुए और कहीं तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो बिल्कुल अपना ध्यान जरूर रखिएगा। और यहाँ पर सुहाना सफर कार्यक्रम चल पड़ा अनीता के साथ। शीला जी बोनमिया से साथ दे रही है और वे कहती है अभी वे कीर्तन में जाने वाली है लालमाची। और चूंकि शुक्रवार को रक्षाबंधन है तो इसलिए उन्होंने एक गीत मांगा है अपने भाइयों के नाम और उनको याद करती है। विशेषकर एक भाई है जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मनु मकुन, जो उनकी मृत्यु हो गई है। तो आपको कहेंगे सहानुभूति, लेकिन बाकी सब भाइयों के नाम, जीवन मकुना है, प्रेमचंद मकुना है, उन सब के नाम आप अगला गीत जो है डेडिकेट करके उनसे अपना प्यार जो है दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि कितना प्यार आप उनसे करती है। तो चलिए फिल्म अनजाना का गाना। और सभी भाइयों बहनों के नाम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में यह गाना आप लोगों के नाम।

सुहाना सफर सुहाना सफर। जी दोस्तों, यहाँ पर कई लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं और कल्याणी जी ट्रियोले से साथ है दे रही है हमेशा की तरह, थैंक यू इसके लिए। और आप फिल्म वो कौन थी का गाना सुनना चाह रही है, विशेषकर यहाँ गाना आपकी चार बेटियों के नाम श्वेता, हर्षिता, हर्षिना, श्रेष्ठा, नितिशा, पति वीरेन है और छोटा नातीन है, दुआऊ परिवार है ट्रियोले से, और सभी सुनने वालों के नाम, एमबीसी टीम के नाम थैंक यू। और जो लोग इस गाने को पसंद करते हैं उनके नाम लग जा गले।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, हमारी तो मुलाकात यहाँ पर रेडियो मनोरंजन की लहरों पर हो रही है अभी से लेकर 2 बजे तक. एंड ऑफ कोर्स यू कैन सेंड योर डेडिकेशन ऑन 5250-6200 पर, या फिर फोन कर सकते हैं आप लोग 4028070 पर. और फ्लक्स से निर्मला जी साथ दे रही हैं और आप सुनना चाह रही हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ों में फिल्म जब प्यार किसी से होता है का गाना. तो चलिए यह गाना आपके नाम.

0: खाना सफर खाना सफर
1: जी दोस्तों, पिछली देर सैम्पियर से गायत्री जी साथ दे रही है और आपकी मांग है फिल्म गुमराह का गाना, और यही गाना जाएगा भाभी मीरा के नाम। उनकी बेटियां हैं गिरीशा मेधा, कत्रबोण की बहन अमृता, उनकी बेटियां नेहा, शीति, दिव्या, बेटी सुधी।

धीर कमलेश बहुसुधा। साथ ही साथ यह गाना जाएगा खासकर हमारे लिए, थैंक यू जी आपने इस गाने को हमारे नाम डेडिकेट किया, थैंक यू इसके लिए। और जितने भी सुनने वाले हैं आपके नाम यह गाना कि आप आए और हम खुश हो जाए, तो यह गाना आप सभी लिसनर्स के नाम जो हमारे कार्यक्रम को एंजॉय कर रहे हैं।

जी दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, थैंक यू इसके लिए। और यहाँ पर राघव गुप्ते शर्मा जी साथ दे रही है, ऑफ कोर्स आप की फरमाइश है फिल्म भैजू बौरा का गाना। और यहाँ एक प्यारा सा गाना है जो इस गाने में सावन की बातें हो रही है, बचपन की बातें हो रही है, और सावन का महीना तो समाप्त ही होने वाला है, तो आप इन सभी यादों को समेटे हुए इन पलों को आप याद कर रही है। और यही गाना जाएगा विशेषकर आपके भाई जयप्रकाश के नाम, भाभी नम्रता है, नेफ्यूज हैं युधिष केशव, साथ ही साथ आपकी सभी सहेलियां हैं, वीना रामफल है, नंदिनी उखलू है, और जितनी भी बचपन की सहेलियां हैं उनके नाम, विश्वानी ढूकी भी जी हैं, तो चलिए उन सब के नाम यह गाना।

दोस्तों, जीवन में बस इतना याद रखना कि जब जब जिंदगी नीचे की ओर जाए, थोड़ा सा हौसला बरकरार रखेगा। कुछ ही दिनों की बात है और कुछ ही दिनों की बात ही होती है। हर चीज कुछ ही दिनों की बात होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही बात कॉमन रखिएगा, कुछ ही दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। त्रियोली से धीरज जी साथ दे रहे हैं और वे उन्होंने अपनी प्यारी गुड़िया बहना खुशबू के नाम एक प्यारा सा गीत डेडिकेट वे करना चाह रहे हैं। और उनकी बहना जो है फ्रांस में रहती है, तो उनकी याद करते हुए यह गाना आपके नाम फिल्म है मेरी अदालत। और सभी भाई और बहनों के नाम यह प्यारा सा गीत।

जी दोस्तों, नवीन जी मोताई ब्लॉन्ड से साथ दे रहे हैं और आप आशा जी की आवाज़ में यहाँ प्यारा सा गाना सुनना चाह रहे हैं। फिल्म है कर्तव्य।

0: सिखाना सफर, सिखाना सफर।
1: जी दोस्तों, टेक्निक की प्रॉब्लम की के कारण यहाँ गाना जो है यूं ही समाप्त हो गया। और यहाँ पर कौन साथ दे रही है? वीना जी हैं ओसेनाल से, और आप एक रक्षाबंधन वाला गाना, रक्षाबंधन के उपलक्ष में एक गाना सुनना चाह रही है, और यही गाना आप अपने भाइयों के नाम डेडिकेट करना चाह रही है, विशेषकर पूरे चंडू परिवार के नाम। और साथ ही साथ यहाँ पर एक प्यारा सा मैसेज आया है सेबास्टोपोल से, करुणा जी हैं और आप कहती है कि बहुत बेसब्री से मैं सैटरडे का इंतज़ार करती हूँ आपका प्रोग्राम सुनने के लिए। एक सप्ताह कॉलेज में स्टूडेंट्स को टीच करने के टायर्डनेस के बाद आपका प्रोग्राम फ्रोएल का काम कर देता है। थैंक यू इसके लिए जी। तो आपको कहेंगे बों कुराज, आप जो हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, बों कुराज आपको। और आपने मांगा है फिल्म आ जाई बहार फ्रॉम राजकुमार जी, मूवी राजकुमार। ओके, लेकिन अभी थोड़ी देर में आपका गाना बजवाएंगे। किसी ने कुछ मांगा था ये गाना, लेकिन वो गाना जो है हमने चला दिया था, इसलिए उसका नाम जोड़ना था। कोई बात नहीं, अभी देखेंगे। और यहाँ पर वीना जी, आपके नाम हम यहाँ गाना डेडिकेट करते हैं, तो चलिए यहाँ गाना आपके नाम, ठंडारी मेरे भैया।

जी दोस्तों, न्यू ग्रोव से प्रीतम जी अपनी प्यारी पत्नी कविता के नाम फिल्म संगम का गाना डेडिकेट करना चाह रहे हैं। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, तो यह गाना आपके नाम। और 1 बजे के समाचारों के बाद हम मिलेंगे। और करुणा जी 1 बजे के समाचारों के बाद हम आपका गाना ज़रूर बजवाएंगे। अभी के लिए एंजॉय दिस वन।

0: चलिए सुंदर संक्षिप्त समाचार आपसे गीता जी। नमस्कार।
1: नमस्कार निर्मणि, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस में पूरी तरह से मॉरिशस की स्वामित्व वाली पहली ईंधन वितरण कंपनी का आगमन हुआ है। फिलिन नाम के इस नए ब्रांड का स्वामित्व बंचन ग्रुप के पास है और ये उसकी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड के माध्यम से संचालित होगा। इसका आधिकारिक शुभारंभ कल शाम बोपलों स्थित लावांचो जीसुखो में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड ने नवंबर 2025 में 2.5 बिलियन रुपए से ज़्यादा की राशि में एंजन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण किया था। आज सुबह से ही नेटवर्क के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर नए ब्रांड फिलिन के रंग और पहचान दिखाई देने लगी हैं। बंचन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। 37 पेट्रोल स्टेशनों के नए रूपों में बदलाव के अलावा समूह की सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड ईंधन भंडारण के लिए 5 नई टंकियों के निर्माण में 1 बिलियन रुपए का निवेश भी करेगी। इस निवेश से देश में ईंधन भंडारण की कुल क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने भंजन ग्रुप की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय समूह देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में पहली बार मॉरिशस के पास 100% मॉरिशन स्वामित्व वाला ईंधन वितरण नेटवर्क होगा। उनके अनुसार ये साबित करता है कि मॉरिशस की कंपनियों के पास देश की आर्थिक मजबूती और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक जानकारी, तकनीकी क्षमता और विशेषज्ञता मौजूद हैं, खासकर मॉरिशस में ईंधन वितरण के क्षेत्र में। रक्तदान करना यानी किसी की जान बचाने में योगदान देना। श्रीबेल फाउंडेशन आज बोबासा में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। ये आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय की ट्रांसफ्यूजन ब्लड सर्विस और ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर रॉयल रोड सेंकिया मिल बोबासा एहतियामत के सामने आयोजित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 200 से ज़्यादा पॉइंट खून एकत्र करना है। और विदेशी खबरों में इटली और स्पेन में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है। कुछ ही हफ्ते पहले यूरोप में भीषण गर्मी की लहर चल रही थी और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस दौरान जंगलों में आग भी लगी हुई थी। दोनों देशों में मौसम को लेकर तत्काल चेतावनी जारी की गई है क्योंकि यूरोप को अब और तेज तूफानों का सामना करने की तैयारी करनी पड़ रही है। अटलांटिक महासागर से आई एक डिप्रेशन के कारण उत्तरी और मध्य स्पेन के कुछ इलाकों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक गिर गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। कुवा डे लोरेट गली क्यूपिप में 97 साल की 97-year-old की श्रीमती दमवंती गोवर्धन, पैदाश नाम दामादाव सिंह और जो दमवंती से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज शाम 4 बजे उनके बेटे देवेंद्रनाथ सिंह गोवर्धन के घर कुवा डे लोरेट गली क्यूपिप से उठाकर बिकारा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 4 PM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, एक बार फिर से वार्म वेलकम टू सुहाना सफर कार्यक्रम जो रेडियो मनोरंजन पर हो रहा है अभी। और हम अभी गीतों का कारवा जारी रखते हैं और यहाँ पर जो है हम कविता जी को, करुणा जी को नहीं भूले हैं। आपका गाना आ रहा है करुणा जी, आपने गीत मांगा है फिल्म राजकुमार से, और साथ ही साथ प्रकाशवती जी बैजम

से साथ दे रही है। और प्रकाशवती जी, जो गाना आपने मांगा है वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका नाम हम राजकुमार फिल्म के गाने में जोड़ रहे हैं यहाँ पर, और आशा करते हैं कि आपको यह गाना ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए एक बार सुनते हैं लता जी को।

जी दोस्तों, यहाँ पर सरिता जी गुडलाइन से साथ दे रही हैं और आप जो हैं ये गाना मेरे पूरे परिवार अर्थात आप फिल्म जॉनी आई लव यू का गाना मांग रही हैं अपने पूरे परिवार के लिए, सभी रेडियो टीम के स्टाफ के लिए। तो चलिए यहाँ गाना आपके नाम।

0: जी दोस्तों बेलवेडेर से जीवंती जी साथ दे रही हैं और आप कहती है कि हमारे कार्यक्रम सुनकर आप जो हैं बहुत ठीक हो जाती है और अपने फिल्म संबंध का गाना मांगा है लेकिन जो गाना मांगा है वो नहीं मिल रहा है लेकिन फिल्म संबंध का ही ये गाना हम आपके नाम डेडिकेट करना चाह रहे हैं और यही गाना जाएगा पूरा सुहाती परिवार पुत्र दो आमलेट के खम्बुजन परिवार पंडुलास का ओके और यही गाना जाएगा ललिता दीदी के लिए हरीश जी बोबासैन के नाम और साथ ही साथ यहाँ पर छोटी जी जो हैं छोटी जी पोलों जी से उन्होंने यहाँ गाना डेडिकेट किया ललिता जी के नाम हरीश जी के नाम और पूरे तीन कोरी परिवार के नाम लाल माती की करमली परिवार के नाम तो चलिए यहाँ गाना आप सब के नाम
1: अंधे

का ट्रोबोनस से जो है बबुआ नंतुआ जी अपनी दुकान में काम कर रहे हैं तो आपको कहेंगे बोंकुराश, यहाँ गाना आपके नाम और आपके परिवार के नाम।

जी दोस्तों, यहाँ पर रनीता जी का मैसेज आया है फिकम फ्लैक्स से, और आप कहती है कि हमेशा हमारे जो गाने हैं वे अच्छे होते हैं, आपने फिल्म बैरा का गाना मांगा है सभी रेडियो मनोरंजन टीम के लिए, आपके आपके परिवार वालों के लिए, साथ ही साथ पति राज है, बेटे अंकुश हैं, अंतिश हैं, बहू अशीमा है, मनीषा है, पोती हिमेशा है, अध्या है, छोटे जो है लड्डू गोपाल है, और जो है श्रावण मास समाप्ति होने वाला है, तो यहाँ गाना आप सबके नाम और आपकी जो जितने भी लोग यात्रा कर रहे हैं उनकी यात्रा शुभ हो।

जी दोस्तों, आशा करते हैं कि प्रभु का दर्शन जो है जल्द से जल्द हो और आपकी पूजा जो है सफल हो जाए। दोस्तों, एक दिन जिंदगी तुम्हें शांत रहना सिखा देती है। जो चीजें पहले तोड़ देती थी उस पर मुस्कुराना सिखा देती है। फिर इंसान लोगों को बदलने के बजाय खुद को समझने लगता है। जो जैसा है उसे वैसा देख आगे बढ़ने लगता है। फिर हर बात वो दिल से लगाना छोड़ देता है। जो जैसा समझे उसे वैसा समझने देता है, क्योंकि वो जा

जाता है सबको खुश करना यहां उसका काम नहीं अपनी शांति से बढ़कर यहां कोई इनाम नहीं इस दुनिया को फिर अलग नजरिए से देखना सिखा देती है एक दिन जिंदगी तुम्हें शांत रहना सिखा देती है और दोस्तों यहां पर मधुरी जी और परी जी साथ दे रही हैं और उनकी मांग है फिल्म आपकी कसम का गाना ऑफ कोर्स किशोरदा एंड लता जी वंस अगेन तो चलिए सुनते हैं करवते बदलते रहे

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। जी दोस्तों, सैटरडे वाइब्स वीकेंड वाइब्स तो शुरू हो चुका है और यही मौका होता है कि इस पल को खास बनाए, इस पल को एंजॉय करें, इस पल को चेरिश करें, क्योंकि वीकेंड में कभी कभी समय नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो ज़रूर इस वीकेंड को चेरिश कीजिए और ऑफकोर्स अपनों के नाम। और रिश्मा फ्लैग से देवयानी जी साथ है दे रही हैं, आप सुनना चाह रहे हैं फिल्म मदर इंडिया का गाना और यही गाना जाएगा खासकर आपकी नातिन है दिव्या, पूरे छेदी परिवार, देवधारी परिवार और कितने लोगों को लाइन नहीं मिली है उनके नाम जाएगा। रेहाना जी हैं नोत्रदाम से, साथ ही साथ अनीता लाल जी हैं, सुदेवी जी मुक्का से हैं और जितने भी लोगों को लाइन नहीं मिली है यहाँ गाना आपके नाम। घूंघट नहीं खोलूंगी, चलिए एंजॉय कीजिए।

जी दोस्तों, यहाँ पर जो है एक मैसेज आया है और अनीता जी मोदालबे से हैं। आप कहती हैं कि आपके दोस्त का

जन्मदिन है तो सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, लेकिन यहाँ पर दोस्त का नाम नहीं लिखा है आपने, पता नहीं एक नाम है यहाँ पर करुणा और सभी दोस्तों के लिए, तो शायद उनमें से एक हैं। तो यहाँ जो है फिल्म आई मिलन की बेला का गाना उनके नाम, और जितने भी लोग आज अपना हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहे हैं उनके नाम यह गाना जाएगा। एंजॉय योर डे एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डे ऑफ योर लाइफ।

0: जी दोस्तों, वो बात से हरीश जी का फोन आया और आप कहते हैं कि मौसम का तकाजा है बदलते मौसम में, बदलते मूड। यहाँ पर जो गाना मांग रहा है वे है फिल्म हमराही का गाना, एंड ऑफ कोर्स यहाँ गाना जाएगा प्यारी सी अनु के नाम। और आप कहते हैं उनसे, मुझको अपने गले लगा लो,
1: मुझको

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, सचिन जी जो हैं साथ दे रहे हैं पॉपलमू से, और आपने ये फिल्म हीरो का प्यारा सा गाना मांगा है, तो चलिए यह गाना आपके नाम, जस्ट एंजॉय इट।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, देखते ही देखते अब दो घंटा जो है समाप्त ही होने वाला है और एक अंतिम गाना रह गया है यहाँ पर। और एक हमारे कॉलर हैं जो फोन करते हैं, गाने मांगते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उनका नाम हम लाइव ना लें। तो चलिए, फिल्म रहना है तेरे दिल में का गाना आपके नाम। आपने मौसम के हिसाब से यह गाना मांगा है, तो चलिए यह गाना आपके नाम और जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है उन सब के नाम यहाँ गाना जाएगा। और हमने भरसक कोशिश की है कि सभी का फ़ोन ले, लेकिन जिनका नहीं हो पाया हम क्षमा चाहते हैं। तो साथ एवं प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अब अगले सप्ताह। अनीता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार गीता जी के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार। मॉरिशस में पूरी तरह से मॉरिशस की स्वामित्व वाली पहली ईंधन वितरण कंपनी का आगमन हुआ है। फिलिन नाम के इस नए ब्रांड का स्वामित्व बंचन ग्रुप के पास है और ये उसकी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड के माध्यम से संचालित है। इसका आधिकारिक आरंभ कल शाम बोपलॉन स्थित लावेन्यू जु सुख में किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भी मौजूद थे। बेटा ऑयल टर्मिनल लिमिटेड ने नवंबर 2025 में 2.5 बिलियन रुपए से अधिक की राशि में एंजन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण किया था। आज सुबह से ही नेटवर्क के सभी 37 पेट्रोल स्टेशनों पर नए ब्रांड फिलिन के रंग और पहचान दिखाई देने लगी हैं। भंजन ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने भंजन ग्रुप की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये स्थानीय समूह देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता में योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि 100 वर्षों में पहली बार मॉरिशस के पास 100% मॉरिशन स्वामित्व वाला ईंधन वितरण नेटवर्क है। रक्तदान करना यानी किसी की जान बचाने में योगदान देना। श्री बेल फाउंडेशन आज बुबासा में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही हैं। ये आयोजन स्वास्थ्य मंत्रालय की ट्रांसफ्यूजन ब्लड सर्विस और ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के सहयोग से किया जा रहा है। ये रक्तदान शिविर रॉयल रोड सैंकियामिल बोबासें एहतमौत के सामने आयोजित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य 200 से ज़्यादा पाइंट खून एकत्र करना है। और विदेश खबरों में ब्रिटेन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल का एलनीनो पिछले 100 से ज्यादा वर्षों में सबसे अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली रूप ले सकता है।

0: प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहने का अनुमान है, जो आधुनिक जलवायु रिकॉर्ड में अब तक का उच्चतम स्तर है। और इटली तथा स्पेन में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई है। कुछ ही हफ्ते पहले यूरोप में भीषण गर्मी की लहर चल रही थी और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस दौरान जंगलों में आग भी लगी हुई थी। दोनों देशों में मौसम को लेकर तत्काल चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: इतिहास के झरोखों से
4: नमस्कार श्रोताओं। इतिहास के झरोखों में न झांकेंगे तो आज को जिएंगे कैसे? कभी कभी हम अकेले बैठते हैं तो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं ना, जो इतिहास बन चुके होते हैं। और तो और जब परिवार के साथ बैठते हैं तो कितनी कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं, अपनी एल्बम ला के दिखाते हैं, फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि देखो 10 साल पहले तुम कैसी दिखती थी, 20 साल पहले इसकी शादी थी, हमने ये किया वह किया, उसने नाचा उसने गमट किया। तो श्रोताओं, इतिहास जो है ना, हर पल का वर्तमान जो होता है वो अगले ही पल इतिहास बन जाता है, क्योंकि जो आ रहा है वह अगले पल वर्तमान हो जाता है और जो वर्तमान है वह दूसरे ही पल इतिहास हो जाता है। कुछ सदियों पुरानी होती हैं बातें, कुछ सालों पुरानी होती हैं, कुछ क्षणों पुरानी होती हैं और कुछ समय पुरानी होती हैं।

लेकिन इतिहास के जो झरोखे हैं ना, ये व्यक्ति को ज़रूर कुछ याद दिलाते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम में हम ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं जो इतिहास के खिड़कियों से, झरोखे मैंने खिड़कियाँ, उससे झांक झांक कर कहते हैं, पढ़ो मुझे, समझो मुझे, देखो मुझे, पहचानो मुझे और याद भी करो मुझे। श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 4028070 पर, और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं RM3 रेडियो मनोरंजन पर। तो इतिहास के झरोखे से कार्यक्रम में आज हम जिनकी बात करेंगे वे हैं भारतीय गीतकार शैलेंद्र। वे कवि भी थे, गीतकार भी थे, और तो और फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम पर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई, उसको गीत भी दिए, और यही फिल्म अंततः उनके दुख का इतना बड़ा कारण बनी कि वे मृत्यु को ही प्राप्त हो गए। आप कहेंगे कि मैंने इतिहास के झरोखे से आज शैलेंद्र जी को ही क्यों याद किया है। श्रोताओं, शैलेंद्र जी 30 अगस्त 1923 को पैदा हुए थे, तो अगस्त के महीने का इतना बड़ा कवि और फिल्म जगत का इतना बड़ा गीतकार, जिसे लता, जिसे उस ज़माने के राज कपूर सभी लोगों ने सराहा, और उनके कुछ गीत तो इतने प्रचलित हुए कि आज भी रशिया हो या भारत हो, सबकी ज़बान पर हैं, मेरा जूता है जापानी और मैं आवारा हूँ। तो श्रोताओं, ऐसे गीतों का जन्मदाता शैलेंद्र अपने आप में विशेष था। बड़ा ही सरल तरल भाषा में बात करता था, कविता उसकी मानो एक नदी की तरह बहती हुई चलती थी, लेकिन जैसे नदी ठंडा पानी देती है, जीवन देती है, ठीक ऐसे ही शैलेंद्र के गीत भी इतने आसान होते थे, लोगों की बातचीत और भाषा में होते थे, कि लोग जब उसको गाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वे दिल तक उतर जाते हैं। तो 30 अगस्त को ये व्यक्ति उस समय पैदा हुए थे जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, 1923 ना, तो आप समझ सकते हैं 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, और 1923 में तो बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन जोरों पर था। तो ये रावलपिंडी, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ के रहने वाले थे, और इनके पिता मूलतः बिहार के रहने वाले थे। तो श्रोताओं, शैलेंद्र जी की चर्चा आगे करेंगे, इस गीत को सुनते हैं पहले।

0: श्रोताओं, जीवन सपनों के सहारे चलता है, क्योंकि सपने न देखें तो जीवन में पैर कैसे आगे बढ़ाएंगे। मन में सोचते हैं कि इस पैर को आगे बढ़ाना है, तभी ना पहला पैर आगे बढ़ता और पीछे वाला भी उठ के आगे बढ़ने का प्रयास करता है। तब एक आगे बढ़ता है, एक ठहर कर उसको सहारा देता है। तो श्रोताओं, शैलेंद्र भी, उनके माता पिता बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और शैलेंद्र को गीत और संगीत के संस्कार अपने माता पिता से मिले थे, क्योंकि इतना बढ़िया गीतकार और कविता लिखने वाला सदियों में मिलता है। और कहते हैं कि सूर्योदय के साथ ही घर में पिता भजन गायन करते थे और माँ भक्ति रस में डूबी मधुर वाणी में कुछ अपने भजन गाती थी। तो शैलेंद्र ने एक जगह पर लिखा है, सबसे पुरानी स्मृति याद तब की है जब अलस सुबह नींद खुली थी, जाड़े के दिन थे, रजाई में लिपटा मैं बिस्तरे पर बैठा था, पिता फौज में थे, सवेरे ही तैयार होकर परेड में पहुंचना होता था, स्नान करने जा रहे थे और गा रहे थे, अब कहाँ जाए गोरे लीनो हाथ पकड़ के। माँ भी अच्छा खासा गा लेती थी, चक्की पीसते हुए, चक्की जिसे हम लोग जाता कहते हैं, काम करते हुए उनका यह गीत हंस पूछे जनकपुर की नारनाथ कैसे गज के फंद छुड़ाए। तो वे कहते हैं कि मेरा गीत और संगीत के साथ पहला परिचय अपने माता पिता की इन मधुर आवाज़ों के साथ ही हुआ था। लेकिन शैलेंद्र के पिताजी का स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं रहता था, इस कारण फौज की नौकरी से वे त्यागपत्र देकर अपने बड़े भाई के पास मथुरा चले गए थे। आपको यह बताना चाहती हूँ कि शैलेंद्र पढ़ाई में उस जमाने में बहुत ही होशियार थे, यहाँ तक कि जब वे परीक्षा में 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी उन्होंने, तो प्राचार्य उप प्राचार्य के बच्चों से भी उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। तो इस बात से उप प्राचार्य बहुत ही प्रसन्न हुए थे और वे 5 रुपये नहीं दे पा रहे थे, केवल 3 रुपये उनके पास थे, 2 रुपये उनके सहपाठी विनय कुमार जैन के पिता जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने दिए। वास्तव में कीचड़ में कमल खिल रहा था, तो शैलेश की जो प्रतिभा थी उसे कोई रोक नहीं पा रहा था।
1: इतिहास के झरोखों से

राधा ना भी बोले तो भी जहां प्रेम होता है वो तो हो ही जाता है। शैलेंद्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। झांसी में, जो उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है, प्रशिक्षण के दौरान स्थानीय स्टेशन मास्टर भजन लाल के घर आने जाने लगे। वे अब भजन लाल की 7 बेटियां थी। इन 7 बहनों के 6 भाई भी थे। शैलेंद्र मन ही मन स्टेशन मास्टर की 4th बेटी शकुंतला से प्रेम करने लगे। और उस जमाने में आपको पता है ना, प्रेम का इजहार करना कितना कठिन होता था। अब मुंबई जाकर उन्होंने शकुंतला से अपना प्रेम का इजहार किया, लेकिन शकुंतला ने इसे अस्वीकार कर दिया। उसे तो पता भी नहीं था कि ये उसको देखता है। बल्कि शकुंतला ने एक जगह पर लिखा, मुझे रत्ती भर भी इस बात का पता न लगा कि कोई गुपचुप मुझे निहारा करता है और मेरे प्यार में बावला सा गीत लिखा करता है। क्योंकि प्रेम पत्र में शैलेंद्र ने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, मैं आपको सुनाती हूँ, आप भी आनंद लीजिए। कोसों की दूरी है फिर भी क्षण में पास पहुँच जाऊँगा, जब जब याद करोगी मोहिना तब तब पास चला आऊँगा। लेकिन शकुंतला विवाह के लिए तैयार नहीं थी, पर पता नहीं दोनों परिवारों में क्या बातचीत हुई कि जैसे पुराने ज़माने में बड़े लोग विवाह निश्चित कर देते थे, तो बस उन्होंने शकुंतला के लिए जैसे ऑर्डर किया कि नहीं, आपका विवाह 2 अप्रैल 1948, तब देश आज़ाद हो चुका था, तो दोनों का विवाह संपन्न हो गया। अब कठिनाई शुरू हुई, क्योंकि शैलेंद्र तो उनको मायके में छोड़ के मुंबई आ गए थे। अब मुंबई में अभी शैलेंद्र के पास घर नहीं, पैसे नहीं, अभी सब का उनको इंतज़ाम करना था। तो उनकी एक कविता है, नई नई शादी है, वो कविता उन्होंने लिखी, मैं आपको सुनाती हूँ। ये कविता केवल शैलेंद्र का दुख नहीं बयां करती, उन सब लड़कों का है जो आगे बढ़ने के लिए अपना देश अपनी जगह छोड़कर आगे बढ़ते हैं और पीछे उनकी पत्नियां उनकी यादों में होती हैं। वे लिखते हैं, नई नई शादी है लेकिन बटुए सी दुल्हन को लेकर सिर्फ 4 दिन साथ रह सका। सोचा था ढूंढूंगा कहीं मकान, नहीं, बस एक कोठरी ही काफ़ी है। दोनों सुख से साथ रहेंगे जैसे किसी घोंसले में कपोत की जोड़ी, कपोत माने कबूतर, पिजन। मुझ जैसे ये लाखों हैं जो मांग रहे हैं रोजी, रोटी, कपड़ा, बोनस, ओ महंगाई, मांग रहे हैं जीने का अधिकार स्वदेशी सरकारों से। किंतु सुना है जीने का अधिकार मांगना अब गुनाह है, गद्दारी है, गद्दारी के लिए जेल गोलीबारी है। तो श्रोताओं, इस कविता को सुनकर देखिए, आज भी वह समस्या ऐसी की ऐसी है। आज भी युवा

0: रोजगार मांग रहा है, जीने की सुविधाएं मांग रहा है, तब ना घर बसाएगा। आप सोचिए, कविता 1948 के आसपास की कविता है। तो ये कविता केवल शैलेंद्र की आत्मकथा या उसके मन या उसके जीवन का सच्चा आईना नहीं, वरन हमारे समाज का दर्पण है। कितने वर्ष हो गए आज़ादी मिले, लेकिन अभी भी अभाव, दुख, शोषण, बेरोजगारी आज भी बरकरार है। कभी कभी वे गीत लिखते थे, सुनाते भी थे, और कहते हैं, काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहां को सुनाना, कोई ना मिले तो अकेले में गाना। कविराज कहे, ना ये ताज रहे, ना ये राज रहे, ना ये राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सके ना कोई ये खजाना। तो श्रोताओं, सचमुच लोग कहते हैं ना कि जो रचनाकार है, जो कवि है, जो सृजनशील है, उसको कौन लूट सकता है, उसकी संपदा तो नित्य प्रति बढ़ती ही रहती है।
1: इतिहास के झरोखों से

श्रोताओं, ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ है कि आज भी यदि कोई रशिया में जाता है तो वहाँ के लोग इस गीत को गाना बहुत पसंद करते हैं। और भारत में या विदेशों में हिंदी पढ़ने वाले लोग, हिंदी समझने वाले, बॉलीवुड से प्यार करने वाले इस गीत को बार बार सुनना पसंद करते हैं। मैं आगरा गई थी जहाँ पर विदेशी बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए आते हैं, जब वे कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं तो इस गीत को ज़रूर वे लोग गाते हैं। तो आप देखिए, शैलेंद्र का लिखा ये गीत इसने दिलों पर राज किया और कितना सरल सहज भाषा में है। मैं यही आपसे कह रही थी कि इतिहास के पन्नों का यह जो व्यक्ति है, यह जो कलाकार है, इसके प्रतिभा को कोई रोक नहीं पाया। और जानते हैं ना, हीरा कीचड़ में भी अपनी चमक दिखाता है, बस जौहरी की नज़र पड़ने की देर होती है। जिस समय भारत का पार्टीशन हुआ या विभाजन हुआ, ये 15 अगस्त 1947 की बात है, देश के दो टुकड़े हो गए। देश ने बहुत भारी विभीषिका झेली। जो लोग पाकिस्तान में थे, उन्होंने उनको बहुत ही बुरी तरह से मारकाट मचाई। और क्योंकि ये भी, इनका घर भी वहीं रावलपिंडी में था, तो वे लिखते हैं, हमारे देश की तकसीम के वक्त जो हुआ, कल्पना में भी उस जैसा खूनी कांड मैं सोच नहीं सकता था। मैंने लाशें देखी थी, लाशों जैसे लोग देखे थे। और जब ये सब कुछ उन्होंने देखा तो कवि मन था ना, गीतकार मन था, झट से उनके मन से निकला, जलता है पंजाब हमारा प्यारा, जलता है भगत सिंह की आंखों का तारा। श्रोताओं, इन पंक्तियों को जब अभिनेता निर्देशक राज कपूर ने सुना, वे तो हैरानी हो गए और उन्होंने शैलेंद्र को अपनी फिल्म आग में गीत लिखने के लिए निमंत्रण दे दिया। शैलेंद्र ने राजकुमार को यह कहकर ठुकराया कि मैं पैसों के लिए नहीं लिखता, कोई ऐसी बात नहीं है जो मुझे आपकी फिल्म में गाना लिखने की प्रेरणा दे, मैं क्यों लिखूं? राज कपूर ने इतना ही कहा, आपकी मर्जी, लेकिन मेरे घर और हृदय के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। 1949 में उनकी पत्नी गर्भवती हो गई और दोनों बहुत खुश थे। लेकिन शैलेंद्र इस बात से दुखी भी थे कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं कि वे अपनी पत्नी को उसके मायके झांसी बेच सकें। तो ये सारी चीज़ें उनको तंग कर रही थी और खुद केवल 150 रुपये महीने में घर चला रहे थे। तब इसलिए 1949 में मई या जून के महीने में राज कपूर के पास पहुँचे और उनसे कहा कि देखो, मुझे 500 रुपये की ज़रूरत है और मैं आपकी फ़िल्म के लिए गीत भी लिखूँगा। ये था जौहरी, जिसने हीरे को परख लिया था। आप सभी जानते हैं 1949 में 500 रुपये अगर हम देखें तो आज के 60-70-75 हज़ार के बराबर रहे होंगे। लेकिन राज कपूर पहचानते थे, उन्होंने झट से शैलेंद्र को 500 रुपये दे दिए। शैलेंद्र ने अपनी पत्नी को सम्मान सहित भेजा और वे राज कपूर से बड़े प्रभावित हो गया और दोनों बहुत ही गहरे दोस्त बन गए। शैलेंद्र ने राज कपूर की फिल्म बरसात में दो गीत लिखे, बरसात में हमसे मिले तुम और दूसरा था पतली कमर है। और बरसात फिल्म बहुत कामयाब हुई और इस फिल्म के सभी गीत बेहद लोगों ने प्यार से अपनाए और आज भी सुने जाते हैं।

श्रोताओं, शैलेंद्र ने जब गीत लिखने शुरू किए तो बस फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा, और राज कपूर जी और शैलेंद्र दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि अब जो भी फिल्म होती, यहाँ तक कि राज कपूर ने उनसे कहा कि अरे यार रेलवे की नौकरी छोड़ो, और 1950 में 2-3 साल में ही नौकरी छोड़ के पूरी तरह से वे गीत लेखन में लग गए। शैलेंद्र को उस समय रेलवे की नौकरी से केवल 200 रुपये मिलते थे या 150 रुपये, और राज कपूर ने उन्हें कहा कि देखो चिंता मत करो, मैं तुम्हें 500 रुपये महीना दिया करूँगा, बस अब बाहर की फिल्मों में गीत लिखने, कवि सम्मेलनों में जाने की उन्होंने आज़ादी मांगी। उन्होंने कहा कि देखो मैं करूँगा आपके लिए फिल्मों में काम, लेकिन आप मुझे बाहर जाने से रोकेंगे नहीं। और वे खुश थे बहुत शैलेंद्र, क्योंकि नौकरी के साथ ये प्रतिभा वे अपनी नहीं चमका सकते थे। और 1951 में राज कपूर की फिल्म आवारा आई। इस फिल्म ने देश विदेश में बड़ी सफलता प्राप्त की, और इस फिल्म का शैलेंद्र का लिखा गीत आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ मानो इतना लोकप्रिय हुआ कि व्यक्ति व्यक्ति के मुँह का गीत बन गया। और ये जो आवारा शीर्षक की फिल्म थी, सोवियत संघ में तो इसकी बड़ी धूम मची, और मैंने आपको बताया ना कि आज तक इस गीत को लोग वहाँ पर गुनगुनाते हैं। और तोल्स्तोय की विश्वविख्यात रचना युद्ध और शांति के साथ साथ 100 से अधिक रूसी पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद करने वाले, 57 ईयर्स तक रूस में रहने वाले मदन लाल मधु ने इन पंक्तियों के साथ लेखक को वर्ष 2005 में बताया था कि शैलेंद्र के दो गीत आवारा हूँ और मेरा जूता है जापानी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी रूसियों के दिलों में बस गए थे। जब भी वे किसी हिंदुस्तानी को मॉस्को की सड़कों पर देखते तो ये गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार करते थे, और आज भी यह परंपरा वहाँ पर है। जब भी कोई सेमिनार हो या लोग वहाँ जाते हैं तो वे लोग इन गीतों से उनका स्वागत करते हैं। और तो और लेखक को भी मौका मिला था वहाँ जाने का, और जिस समय नेहरू जी वहाँ गए थे वहाँ

0: पर भी जो बुलगागिन लोगों थे उन्होंने आवारा हूं वाला मुखड़ा गाकर उनका स्वागत किया था। तो आप देख सकते हैं कि उनका ये जो गीत था देश की सीमाओं से दूर जा चुका था और चुनौतियों को वे स्वीकार करते थे। इसीलिए अपने कविता संग्रह को भी उन्होंने कहा न्योता और चुनौती, यह उन्होंने शीर्षक दिया था। अर्थात चुनौतियों से न डरने वाला यह शैलेंद्र, इनके एक और विशेषता मैं बताना चाहती हूँ कि शैलेंद्र जी का हैंडराइटिंग या हस्तलेख बहुत ही सुंदर था। इनके बारे में लता मंगेशकर जी ने लिखा कि शैलेंद्र जी का गीत जब भी मुझे मिलता था मैं बताना चाहती हूँ कि शैलेंद्र हमेशा मुझे अपने हाथ से ही गीत लिखकर देते थे और उसे मैं पढ़कर आसानी से गा लेती थी। उनकी राइटिंग साफ और सुंदर थी, इस कारण मुझे कभी भी उनके गीतों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देखिए लता जैसा व्यक्ति जिसने इतने सुंदर सुंदर गीत दिए उन्होंने भी शैलेंद्र जी के हस्तलिखित लेख की बहुत ही प्रशंसा की है। तो श्रोताओं हमारे साथ एक श्रोता जुड़ने लगे हैं, हम उनको लेते हैं, देखते हैं वे आज शैलेंद्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्कार जी, कैसी हैं?
1: सब ठीक हैं जी।
0: हाँ,
1: मैं आपका प्रोग्राम हर शनिवार को सुनती हूँ।
0: आपका बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ती हैं।
1: और आज का तो बहुत तब थी है, सुंदर सुंदर गाने चुने हैं अपने, और क्या कहने शैलेंद्र।
0: हाँ बिल्कुल,
1: बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
0: बहुत धन्यवाद।
1: हाँ जी, ऐसे ही प्रोग्राम आते रहिए, हम सुनते रहेंगे।
0: बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी हैं और जुड़े रहिए और सुनते रहिए।
1: हाँ जी,
0: ओके जी, ओके, शुभ दिन, शुभ दिन। चलिए श्रोताओं, एक गीत आपको और सिखा सुनाते हैं।

सचमुच प्यार से रास्ता तो क्या जिंदगी कट जाती है। याद कीजिए कितने साल बीत जाते हैं बच्चों पति और घर के साथ रहते रहते एक दिन अचानक याद आता है कि ओ इतने साल बीत गए। कोई कहता है 40, कोई कहता है 50, कोई कहता है 25, कोई कहता है 10 साल, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, वक्त रुकता नहीं। पर यदि प्यार हो तो ये साथ और वक्त पता ही नहीं चलता, कब बुढ़ापा भी आ जाता है और हम मित्रवत हो जाते हैं। तो श्रोताओं, 50 और 60 का ये जो कवि था, इसने धूम मचा दी थी। श्री 420 के गाने जागते रहो, सीमा, चोरी चोरी, बूट पॉलिश, मुसाफिर, यहूदी, मधुमति, उजाला, अनाड़ी, जिस देश में गंगा बहती है, कितनी फिल्में मैं आपको गिनाऊं। सचमुच कमाल कर दी थी उन्होंने। और 60s में शैलेंद्र के जीवन में अनेक खुशियां भी आईं। उन दिनों वो अनेक गीत लिख रहे थे और उस समय एक गीत लिखने का अब 4000 रुपया लेते थे। शैलेंद्र के जीवन में अनेक रातें अमावस भरी थी। सचमुच बहुत कष्ट उन्होंने सहे थे। नाम दाम यश कीर्ति अब सब मिल रहा था। 1959 में यहूदी फिल्म का गीत यह मेरा दीवानापन है के लिए उनको सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ था। और 1960 में तीन कारणों से हम भुला नहीं सकते, अनाड़ी फिल्म का गीत सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी के लिए उन्हें फिर से फिल्म फेयर अवार्ड प्राप्त हुआ। इसी वर्ष उन्होंने अपना मन चाहा 2 मंजिला घर मुंबई में बनाया, जिसका नाम रखा रिमझिम। अब तो 2 मंजिला, अब तो बड़े बड़े गीतकार एक्टर डायरेक्टर उनके तो बड़ी बड़ी हवेलियां, क्या मान लो 20-20 स्टोरीज की बिल्डिंग्स हैं। और तीसरी बात जो सबसे प्यारी सी बनी, 1960 दिसंबर में रेणु का मेला आंचल उपन्यास बहुत चर्चित हुआ और एक तीसरी कसम कहानी रेणु जिन्होंने लिखी थी उससे इनकी मुलाकात हुई। बस इन्होंने सोचा इतनी प्यारी कहानी है, इतना प्यारा रोमांटिक सीन है उसमें, तो क्यों ना इस पर एक फिल्म और गीत लिखे जाएं। बस इसमें वे जुट गए थे।

सचमुच भाई, जिंदगानी के सफर में आप अकेले नहीं हैं, लेकिन इतिहास के झरोखों में जरा मुड़ के तो देखना ही पड़ता है। मुड़ के ना देखें तो अपना भविष्य कैसे बनाए भाई? इतिहास के पन्नों को पढ़ के तो पता चलता है कि हमारे पास कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे गीतकार थे, और सचमुच जो गीत उन्होंने लिखे ना, ये उनके अपने जीवन के अनुभव थे। और आपको बताना चाहूँगी कि उनको भी रशिया जाने का मौका मिला 1962 में, उनको विदेश यात्रा का पहला मौका, और वे राइटर सम्मेलन में दूसरे एफ्रो एशियन राइटर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, और वहाँ वे रशियन लोगों से भी मिले। लेकिन शैलेंद्र ने अपने जीवन में गरीबी का समय बहुत ज़्यादा देखा था, इसीलिए आम आदमी की पीड़ा को बहुत समझते थे। और 1958 में जब वे वहाँ पहुँचे तो

0: भारत के कवि नाम से एक पुस्तक छपी हुई थी। अब उन्होंने जब उस पुस्तक को थोड़ा देख, कवि थे ना, रचनाकार थे, तो पुस्तक पर नज़र और पुस्तक मिली, जब उन्होंने देखा कि उसमें पंत जी हैं, निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, दिनकर है, अली सरदार जाफरी कवियों को देखा, अचानक उनकी नज़र पड़ी, अरे वाह, उनकी भी दो कविताएं उसमें थी, एक थी 15 अगस्त और दूसरी थी जन्मभूमि। अब जिस संपादक ने इसे संपादित किया था, चलिशेव थे उनका, उनकी बड़ी इच्छा थी कि भाई मैं इन कविताओं को लेखक के सामने भी इसकी चर्चा करूं। शैलेंद्र जी ने जब ये कविताएं अपनी छपी हुई देखी, श्रोताओं बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि चलिशेव ने रशिया में इनका अनुवाद कर रहा था। शैलेंद्र जी 2 दिन मॉस्को में रहे, वहाँ के साहित्यकारों से मिले, तो वहाँ के साहित्यकारों ने उनके जो 2 गीत थे, आवारा हूँ, आवारा हूँ गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, और मेरा जूता है जापानी, सिर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, पूरे सोवियत रूस में इतना लोकप्रिय था कि वे ही देख के हैरान थे। और मदन लाल मधु जो वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, भारतीय थे लेकिन वर्षों से वहीं रहते थे, उन्होंने अपने एक वर्णन में लिखा है कि फिल्मी दुनिया में गीतकार के रूप में बहुत नाम कमाने तथा सफलता पाने वाले कवि शैलेंद्र भी 2 दिन के लिए मॉस्को आए थे। उनके साथ कोई गोष्ठी नहीं हो सकी थी क्योंकि उनका कार्यक्रम पहले से ही इतना व्यस्त बना हुआ था कि वे कठिनाई से उसे पूरा कर पाए। मुझे याद है उस समय सोवियत टेलीविज़न के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल ने उनको राज कपूर के साथ जोड़कर कई फिल्मों के लिए रचित उनके गीत सुनवाए थे, दृश्य दिखाए थे, उनके साथ भेंट वार्ता टीवी पर दिखाई गई, भारतीय फिल्मों में गीत संगीत नृत्य के महत्व की चर्चा हुई और गीतों के बारे में कहा गया कि फिल्म की कहानी या पटकथा अथवा विषय वस्तु की गहराई, उसके मूलभूत सार अथवा तत्वों को उभारने वाले शैलेंद्र के गीत बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध हुए हैं। तो श्रोताओं, अपनी इस विदेश यात्रा के बाद वे 1962 में भारत लौटे। आपको याद होगा उनका गीत, लाख लुभाएं महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है, आ अब लौट चले। सचमुच ये शैलेंद्र के भीतर कहीं था कि अपना देश अपना ही है।
1: इतिहास के झरोखों से

0: की नजर है।
1: श्रोताओं, जिंदगी को मस्ती में जीने वाला और प्रशंसा की, सम्मान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला यह जो कवि, गीतकार, बॉलीवुड से जुड़ा हुआ जो कहता है कि या अब लौट चले क्योंकि अपना घर फिर अपना ही है, बहुत ही खुश थे भारत लौट के और तीसरी कसम पर उन्होंने सोचा कि इसको बनाया जाए।

राज कपूर को हीरामन और हीराबाई की भूमिका के लिए उन्होंने वहीदा रहमान को चुना गया था और पटकथा लेखन का काम नवेंदु घोष को दिया गया। तीसरी कसम बैलगाड़ी की रफ्तार से धीरे धीरे बनने लगी। 7-8 महीने के अंदर ये फिल्म बनी, लेकिन पैसों की कमी, कलाकारों की समय पर डेट्स न मिलने के कारण 5 साल इसको लग गए और फिर इस फिल्म को प्रदर्शित करने के लिए कोई वितरक भी नहीं मिला। राज कपूर की पहल पर इस फिल्म को दिल्ली में रिलीज तो किया गया, लेकिन श्रोताओं, राज कपूर स्वयं भी प्रीमियर पे आए थे पर कहते हैं कि ये फिल्म दर्शकों ने नकार दी। श्रोताओं, इस बात का धक्का शैलेंद्र को बहुत ज़्यादा लगा और कर्जे के कारण, और थोड़ा उन्होंने इसको, बहुत संवेदनशील थे, महसूस भी किया और कहते हैं कि बस इसके बाद उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया और फिर उसके बाद 14 दिसंबर 1966 को इस सब की तैयारी धूमधाम से हो रही थी और ये गीतकार हमको छोड़कर चला गया। तो श्रोताओं, अगली बार फिर किसी और झरोके से झांकेंगे, तब तक इस गीत को सुनिए और अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ संध्या।

0: पौने छः की ऊंचाई में दोपहर के ठीक 3 बजे है। गीता जी से सुनते हैं संक्षिप्त समाचार, आइए उनको सुनते हैं। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को हमारा नमस्कार। आज सुबह से भंजन ग्रुप के 37 फिलिंग स्टेशनों पर नया लोगो फिलिन दिखाई दे रहा है। ब्रांड की नई पहचान का अनावरण कल मापू स्थित लावोंचर जिसुक में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। भंजन ग्रुप ईंधन वितरण नेटवर्क का स्वामित्व रखने वाली पहली 100% मॉरिशन कंपनी है। इसने अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑयल टर्मिनल के माध्यम

0: माध्यम से नवंबर 2025 में इंडियन पेट्रोलियम मॉरिशस का अधिग्रहण करके इस क्षेत्र में प्रवेश किया। आज रोजिल स्थित सगैतोंजीवाल स्टेडियम में फायर फाइटर्स डे के अवसर पर 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया। मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज द्वारा आयोजित एक समारोह में कई महानुभाव, दमकल विभाग के मुख्य अधिकारी और सम्मानित दमकल कर्मियों के परिवारों की उपस्थिति में उनकी वर्षों की सेवा, समर्पण और अनुकरणीय आचरण को मान्यता दी गई। इस शनिवार 22 अगस्त से हरेक संचालक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़कर 100 हो जाएगी। ये उपाय इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड बोर्ड की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद द्वारा कल अनुमोदित नए प्रावधानों में शामिल हैं। संचालकों को इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड से परमिट प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी। ये प्रावधान इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड पिलग्रिमेज अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 में शामिल हैं। और विदेशी खबरों में, चीन ने इस साल विदेशी पर्वतारोहियों के लिए माउंट एवरेस्ट के उत्तरी हिस्से सहित तिब्बत की सबसे ऊंची चोटियों के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए हैं। चीन द्वारा लगाए गए इस प्रतिबंध के कारण दुनिया भर के पर्वतारोहियों के अभियान और बुकिंग रद्द करनी पड़ी है। चीन द्वारा ये प्रतिबंध तिब्बत के शिगात्से के पास 52 सेकंड तक चले एक आतिशबाजी की घटना के बाद शुरू हुई जांच और विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को परमिट जारी करने में हुई भ्रष्टाचार की जांच के बाद लगाया गया है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। कुछ ही देर में शोक समाचार। पिछले में बेलिया में 84 साल की 84-year-old की श्रीमती देवंती रतिया, पैदाइश नाम हलकोरी और जो कृष्णावती से ज्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 9:30 उनके बेटे राजा राम रतिया के घर पिछले में बेलिया से उठाकर बुशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमरो एट 9:30 AM। शोक में डूबे हुए लोगों के प्रति हमारी गहरी हमदर्दी है।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: आज की चर्चा।
3: नमस्ते, आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको के स्वागत बा। आज हमनी के दुगो मेहमान हवन जा आज की चर्चा कार्यक्रम में भाग लेवे खातिर। जे लोग हमनी के जो ई मौसम चलता सूखा के मौसम, ओकर पर चर्चा करियन जा। और ई खातिर फारे के अधिकारी हमने संगे हवन, प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर श्री प्रताप नंद किशोर जी। प्रताप जी नमस्ते।
4: नमस्ते जी।
3: और साथ में फारे जे लोग के सहायता करेलन जा उमे से एगो किसान हमने संगे हवन जे वाकवा से हवन, श्री प्रेमचंद जीतन जी। प्रेमचंद जी नमस्ते।
4: नमस्ते।
3: तो ये दोनों हमने के मेहमान आज हमने के बतायन जा कैसे ये सूखा के जो मौसम चलता ओकर सामना करल जाए। सबसे आगे तो नंद किशोर प्रताप जी, हमने ये जानने चाहब जा कि फागे जो अक्सर हमने के किसान लोग के प्लांटेशन रोपाई के सलाह देते रहेला, हमने टीवी पर आपके बहुत प्रोग्राम देखिला जा, तो अभी जब हमने के देश में एगो ड्राई सीजन सूखा के मौसम चलता सुखारी मारता, तो कैसे ये सब प्लांटेशन हो बस की प्लांटेशन तो चाहिए होते रहे के, तब फागे के अब एकर में कौन भूमिका है?
4: हाँ, फागे के देखा हमने कैसे किसान लोग के हमने तो उन लोग के हित में काम करी लग
3: जा। जरूर।
4: हाँ, तो उन लोग रोपाई करी लग जा किसी फागे एक के खेती नहीं दिखी ला जा, पर हमने जितना सब्जी बा फल और फूल के ई के थी प्रचार करी ला जा, जानकारी दे ला जा खेत में दे, पर हमने के जितना खेती बाड़ी एगो चीज आवश्यक है, पानी
3: जी। पानी सबसे नहीं आवश्यक,
4: सबसे आवश्यक पानी नहीं रही तो कैसे सब जा रोपाई करे। हाँ। क्योंकि हमने जानी ला जा कितना हमली के सब्जी में रेखा उदाहरण के दौर पर हमने जब एथी रोप अप जा कैसे हुआ था मेलन मुलंदु उमें लगभग 90% पानी है
3: जी।
4: तो इसे ही हमने के भाजी में सब देखभर 50-60% 80% तब पानी कहाँ से मिलेगा।

0: हमने के माटी से मिली, माटी में जब बरसात होला, बरसाती मौसम में, तो हमने जानत है जाहिर देखा इस साल बोलत हुआ जा एलनीनो इफेक्ट बा, तो उतना बरसात नहीं होता। और कोई सोचत हुआ जा बरसात होता, पर देख देखा हमने के जलाशय नहीं भरा था, हमने के नदी में उतना पानी नहीं बा, और नीचे पानी बहोर में उतना पानी नहीं मिला था। तो इस सब से तब हमने समस्या होल बा, सरकार एगो पाबंदी डाल दिले बा, जहाँ जहाँ इरिगेशन जोन है, इरिगेशन ऑथोरिटी है, हौजा जितना हमने के सिंचाई के दौर पर घटा दिले हो जा। हे देखा एगो उदाहरण देला सुलिचित में, हौजा गुतागुत है, आगे पाँच दिन पानी मिला था लुलू के जो थे इंजा सिंचाई, अभी सिर्फ तीन दिन चार घंटा हो गल बा, तो घट गल बा। तब अब फागे कौन सलाह है देखा हमने के छा दे के, तब हमने हे देखा कोनो किसान लोग एक बीघा दो बीघा कोनो पाँच छः सात बीघा रोपाई करे लग जा, तो एगो चीज़ हमने बया है देखा हमने के छा लाए वो प्लानिंग विकास में करे के, सब वो पाँच बीघा में नहीं से कब्जा रोपे, क्योंकि हे देखा पाबंदी रहा गल बा, उतना पानी नहीं मिला था, नहीं मिला था, सिंचाई नहीं होता। तो है जानत है जा अभी ढेर जना कदुआ रोप ले जा, बैगन रूपा गल बा हो जा, अभी मुलंदो और कोई डाल दे लेवा माटी में, अभी बताया जा दो तीन बीघा एक को नहीं रोपे, अथी कर दे एक बीघा इस मास, तब दूसरा मास में दो बीघा तक लिया। तो ऐसे ही हमने खोजते जा जितना कमती पानी बा ओके चाहला इस्तेमाल करे के, और हो जा बोली गुतागुत दलागल बा। पर और जगह में जानी ना जा हमने के बेलमा इलाका में तो दुदूस बा पालमा हौजा ज्यादा लोग ओवरहेड इरीगेशन करे लंगा, माने कि पानी ऊपर से मिलेला, पर हम नहीं जानी ना जा पानी कहाँ चाहे ना हमने के जड़ी के, जड़ी द्वारा हौजा से आप सोबे होके हमने के सगरो पत्ता तना में सगरो जाला। तो यही खातिर हमने बोली ला जाहिर देखा जहाँ पानी चाहिना थी विदा करे के हौजा हमने के जरिया, तो ये हमने के हरदम बोली ला जा हाँ है तो इरीगेशन जोन में एक स्थापित भाई, तो हौजा बोला था जा गुतागुत इस्तेमाल करे के। पर एक दूसर चीज है देखा गुतागुत बा, तो हमने के छाला कमती पानी एवापोरे हुई के, तो ऊ से अथी करे खातिर हमने के छाला मल्चिंग, माने कि कोनो पत्ता घास मल्चिंग छाला डाल दे के, तब हमने के पानी ठंडा रही और उतना हमने के कैसे पानी
1: एवापोरे नहीं हुई।
0: तो ई एगो दूसर रहती है। अब एगो तीसरा सलाह जोन बा हमने रेखा हमने के माटी में हरदम बोली जा फीमिया कंपोस्ट डलते रहेगी, ऊ तो बहुत अथी अच्छा अथी करेला हमने के माटी के। पर एगो चीज़ है ना जाने के इस सब कंपोस्ट हम के फीमिया कौन सी ऊ एगो बोली ला जा अंग्रेजी में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, माने कि ऊ ज्यादा पानी अपन में समा देवेला, तब जस जस तब ऊ पनिया सकेला हमने के जड़ी द्वारा हमने पत्ता बगल जाए। तो ई हमने तब बोली ला जा रेखा और कोई बजा नहीं मिला था कंपोस्ट फीमिया आगे, हाँ एथी होता ढेर गाय के, पर जाने ला अब अन्य प्रकार के हमें कंपोस्ट और फीमिया मिला था मुर्गी के घोड़ा के सब बा। और ई हमने जानी ला जा सरकार हे रेखा हम यहाँ योजना है स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड जहाँ कारत अथी करे लंजा लिखाई उन लोग कंपोस्ट देवे लंजा 75% ऊ अथी एगो प्लान दे दी बोल जा सिर्फ 25% छाना चुकाए के हर साल मिला था। तो यही बोलती जा जितना ज़्यादा यहाँ कारत बा अप्लाई करे लंजा मिलेला हमें जाए जाएला खेत में बोले जा हाँ ये काम करा था। तो ये छाना रखले रहे कि अब एगो दूसर चीज़ है देखा अभी तो खुला मैदान में हमें के भाई प्रेमचंद जीतन हवन तो उन लोग जानी ला जा 25 एक बीघा 2 बीघा अब घर पर हमने रोपाई करे ला जा घर पर छत पर ढेर जना रोपाई करे ला जा किचन गार्डनिंग करे ला जा। तो हौजा भी हमने के जो एथी बा कंटेनर में चाहेला फीमिया डाले के तो जानी ला जा बिक्री होला चारों बगल मिला था अब आगे बढ़ते जा नहीं मिला था अभी देखा जाए जा मिला था तो ऊ छाला इस्तेमाल करेगी। अब एगो दूसर चीज एगो हमने के नवा अथी कैसे बोले प्रकार के ऊ कंपोस्ट नहीं है एगो हाइड्रोजेल और कोई बोलिया जाए लामूस आग्रोस्त को सब ऊ एगो कैसे बोलिया जाए दो तरह के एगो है रासायनिक पदार्थ एगो पाउडर फॉर्म में है दूसरा है एगो अभी नवा बा और कोई ऑर्गेनिक करेलन जा

0: माने कि रासायनिक पदार्थ नहीं इस्तेमाल करेल जा तो एगो ईएफ पॉलीमर आल मॉरिशस में भारत से तो वो का करेला हमली जब वो में पानी डाल देला जाए वो पाउडर बा तो वो कैसे लामूस लिखान वो ज़्यादा लगभग 10-20% ज़्यादा उमें पानी समा जाला तब वो माटी में डाल देबा अपन कंपोस्ट में डाल देबा अपन कंटेनर में डाल देबा तो गते गते पनिया छोड़ेला तो हमने के हरदम नहीं चाहना सिंचाई करके कि जब बताएं पाबंदी दरा कर बा घर पर एथिकत हुआ तो वो सकेला एक सप्ताह में 2-3 दिन सिंचाई कर बा बस
1: और ये हाइड्रोजल जे जुन अभी बोल ला लामूस ये कहाँ पर सकी जनता ये खरीदारी करे
0: नहीं जहाँ जहाँ बिक्री होला रासायनिक पदार्थ बा
1: वहाँ पर मिली
0: बा बा तो दो गो वर्शन में बताएं एगो पाउडर फॉर्म में वो रासायनिक पदार्थ है अब हैला तनी ग्रैनुलर लिखन में जोन बोली ऑर्गेनिक है तो वो दोनों में मिला था तो हमने बोलती जा रेखा हैजा भी एगो आज की चर्चा में एगो प्रोग्राम कर ली जा तो बतलाई जा कैसे एगो डेमोन्स्ट्रेशन दे ली जा तो वो बा हमने बोल ली जा मम्मी के मंडी में बिक्री होता ज़्यादा तक ढेर जना जाना थे जा इस्तेमाल करते हैं जा और कोई सकेला नहीं जाना थे जा ये प्रोग्राम द्वारा
1: जरूर
0: हमने संगे संपर्क करिए जा हमने बोल दे अब जा सब मिले रहे देखा जहाँ जहाँ बॉस बा कोऑपरेटिव के मॉरिशस कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर फेडरेशन लग 20 से ज़्यादा शाखा बा मॉरिशस में जा मिला था और जहाँ जहाँ दुकान बा रासायनिक पदार्थ बिचाला हमी के खाद हौजा मिली
1: फार्मर सर्विस सेंटर सब में
0: हाँ हौजा मिली हौजा या हमने इसे संपर्क कर हमने बोल दियो अब जा कहाँ मिला था हाँ। सक बजा ओके खरीदारी करे
1: जरूर बहुत बढ़िया और अभी हमने के प्रताप जी बतावत हवन कौन कौन उपाय बा ई जो सूखा के मौसम चला था ओकर से निपटे खातिर आप कितने ऐसा कदम के ऐलान कर लो ओकर में बा कमती बीघा जमीन में प्लोताशो करे के फिर आप बोलते हो कि गुतागुत के चाहे सहयोग लेवे के कॉम्पोस्ट के इस्तेमाल करे के और फिर अभी हाइड्रोजेल के भी आप चर्चा करत हवा और हमने संगे एगो किसान हवन श्री प्रेमचंद जीतन जी आप एगो किसान हवा हमने के बोला तो हर प्लोताशो कौन ची पर होवेला कौन ची के रोपाई करत हवा कितना बीघा में आपके प्लोताशो होवेला और अभी कैसे चला था आपके प्लोताशो
2: हमारे को सुपरफिशी बस 50 PS 50 PS ओकर में सब लेगिम फैन बोलन से फाइन हर्ब्स सेलरी पोहो बाजिलिक पेसी है सब लेगिम वन में चाहला पानी
1: हाँ पानी के बिना तो नहीं भी होई
2: रेगुली एगो सेलरी बोल भाई प्रताप से बोलनी एगो सेलरी में जितना राशिन बा एगो पोहो में जितना राशिन बा सब पानी खोजेला तब डेवलप हुई अब है फसलों है गुतागुत के फसलों से बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा था हमने के कि गुतागुत पड़े प्री बहुत बेनिफिक बा जो पनिया माटी में जाता और रासिनवा लेवता सींचता तो हमने के अच्छा फेई अच्छा सुंदर लेगिम देवता और ये है सिंचाई नहीं हुई गुतागुत ये ओवरहेड इरिगेशन कर तो जो पानी गिरता वो पतुआ में और पत्ता की अभिमय कर दी था लेकिन माता नहीं छा रही और हाई फसों में हमने के फागे कूदलत वीनी आवा जा सीखा जा कैसे कर टेक्निक उकर खाकोदमा उकर पानी कैसे जला कैसे उकर फेगी याशो होला ये सब तब बनाओ सिखावता उकर पर प्लीज अभी हमने के सामुदायिक कुलची है जो ईद देवता टैंक दिलू समुदाय कुछ तो हमने के टैंक दिलू फागे तो हमने के सब टेक्निक भी प्लांटे अच्छा ची निकाली तो बोलू के प्रॉफिट वालों के अच्छा ची
1: जरूर चली जरूर तो जैसे दिक्कत है जा जब हमने के खाली हमने के देश में नहीं बल्कि विश्व भर में ये जो सूखा के मौसम चलता मौसम परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के जो नेगेटिव असर और विपरीत प्रभाव पड़ता ओकर से निपटे खातिर हमने के देश में किसानों के मदद करे खातिर एक तो फागे बा और फिर कितने ऐसा सुविधा देवल जाता जहाँ पर किसान लोग सकियन जा अपन प्रोत्साहन करे और मॉरिशस के जनता के नियमित रूप से ओकर फल ओकर सब्जी ओकर फूल मिलते रही ये विषय पर हमने के चर्चा अभी जारी रही फिलहाल ले जा एगो छोटा सा विराम।

0: की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने चर्चा करत है जा कैसे सुखारी के मौसम में रोपाई यानी प्लांटेशन करल जाए, कौन कौन सलाह देवल जाता सरकार की ओर से, खास तौर पर फागे की ओर से। फागे मतलब कि फूड एंड एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन यूनिट। और हमने संगे हवन प्रताप नंद किशोर जी, और साथ में हमने संगे एगो किसान भी हवन भाई प्रेमचंद जीतन जी। हमने के थोड़ा नंद किशोर जी आप ये बोला कि अभी हमने के भाई नंद किशोर हमने के भाई प्रेमचंद जी बोलन कि फागे के ओर से उनका थोड़ा मदद मिलल बा, तो फागे कौन कौन रूप में किसान लोग के मदद करेला, कौन कौन ऐसा सहयोग देवा था वजह।
1: हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल करलन, कितना सहयोग भाई हमने के प्रेमचंद जीतन बोलन कि एगो चीज हमने हरदम ले ला जा प्रशिक्षण ट्रेनिंग रोज देख बजा हमने के जहाँ जहाँ शाखा हो मापू जेब फ्लाक जेब सैंपिया जेब प्लेजांस जैसा होगी। अभी उतन में हमने के जो स्कूल बा वो खुला था तो सगरो हमने प्रशिक्षण देला ट्रेनिंग तो एगो पर अभी जोर देवत है जा है जहाँ थे जब बरसात कमती आवता हमने के पाबंदी डराल बा। बस एगो चीज हम तब जोर देवत है पाबंदी नहीं दलाल बा, नहीं छैना सिंचाई करे के सब्जी के
0: जी।
1: नहीं दलाल बा। हाँ। पर हमनी के छैना जाने के कमती पानी बा

0: हिला जो कमती पानी बा अच्छा से इस्तेमाल करेगी। और एगो चीज हमने हरदम बोलीला जा पानी है देखा बोली जलाशय में अथी बा नदी में बा तो सब अपन जो हाइड्रोपोनिक्स बा ग्रीन हाउस अपन घर पर कोई यहाँ अथी है वॉचमैन को गोदाम है तो हौ से सब जा रेन वाटर हार्वेस्टिंग मानी कि पानी जमा करे ई पानी सब जमा करे अपन माटी में एगो सब जा एगो टैंक लेकर कोट दे एगो नहीं दसन बगल मॉरिशस में हो गल बाई से। अब दूसर चीज हमने के जो कैसे भाई जीतन बोला हमने जितना सिस्टम है उमें है योजना माने कि 50% घुमा दे ला जा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कितना तो हर पाइप्स लगी कितना तो हर टैंक लगी ये सब 50% हमने घुमा दे ला जा सिर्फ हम यहाँ चाहे आई के एप्लीकेशन फॉर्म भरने में ये हमने के और अभी बजट पारित होला तो जितना हमने के पैसा और मिलल तो हमने कितना स्कीम बा लगभग 15 स्कीम बा सहायता दे ला जा तो ई बोलती जा हरदम मनी से संपर्क कर जा जितना हमके दफ्तर बा आव जा सब और हमके वेबसाइट में सब जानकारी हमने प्रोग्राम देते रहला कैसे बोला माटी के मोल पर एगो चीज अभी हम बोलती हे रेखा हमने के तुदुदुस इलाका में हमने के भाई जितन जिक्र करलन गुतागुत सिखलन अपनावत हुन ये अच्छा बा एगो चीज हमने खोजनी से इस साल अपनाए के होजा तुदुदुस में जानेला हमने के होजा खेती वाला प्याज और हाँ। कौन प्याज है टूपी ढेर जना खोजेलन जाओ उन लगभग मैं 6 महीना जो फसल करने पर रह जला तो होजा एगो चीज हमें बोली अपनाए के गुतागुत काहे आगे वही प्याज के जो बीज बा ओकर हमने जब फसल करत हली जा जो ओवरहेड है ऊपर से पानी हाउ एगो दूगो खतरनाक बीमारी ट्विस्टर डिजीज ट्विस्ट माने कि ट्विस्ट हो जाला ओकर पत्ता अब एगो दूसरा स्टैम्फिलियम ब्लाइट तो उ जे पानी ऊपर से दल बा ओकर फूल में गिरी पत्ता में गिरी हवे बीमारी फैले लगे।
1: अच्छा।
0: पर इस साल हे रेखा हौ जो हमने के किसान होन भाई बागेलू वो हमने के सुनलन एक साल आगे सिर्फ 5 लीबर बिया ओके मिलल बीमारी खतरनाक रह हमने गहने जा ओकर खेत में है सब सिस्टम डाल दे ली जा इस साल 50 लीबर 25 किलो प्याज पैदा करी बहुत अच्छा बा और हम भी क्या कर ली जाए देखा फागे तब हम भी किसान लोग के हौजा लेके गए ली जा देखा आज MBC द्वारा ये प्रचार करा था माटी के पोल में वो प्रोग्राम हो गल जल्द से जल्द और हम लिखो था जहाँ हमने के अवसर बा चारों बगल 16 अवसर बा उ लोग के भी ठहरा जाए कि देखे के गए ला जा देखे बोला था जा तो ये सब हमें रेखा हरदम बोली ला जा एगो प्रशिक्षण सब जा एगो क्रॉस में आई एगो दूसर हमने के खेत में होला खेत अनफर्म थायल बोला जा या हमने के जितना मॉडल फॉर्म बा मापू फ्लाक हौजा हमने के डिमॉन्स्ट्रेशन प्लट बा हमने ज्यादा अभी ये थी ध्यान देव थे जा कैसे कमती पानी से हम सकब जा रोपाई करे
1: जरूर
0: तो ई हमने के हरदम चाहे अब एगो दूसरा चीज हम तो बताए चाहे सिंचाई करे के पर चाहना जाने के और जगह मॉरिशस में बा कैसे कुद्दू या मिताज बेलरीव इलाका में हौजा एक को सिंचाई नहीं होला माने कि रेनफेड उ लोग अथी कर जा पानी आई तब उ लोग के आलू ढेर आलू रोपाला अभी देख बात सुसु ढेर रोपाल बा हौजा ऐसे गोभी फूल गोभी तो हौजा उ लोग ऐसा हमने के देखा लैंडस्कोप द्वारा 2 साल होला 1 बीघा नहीं 2 बीघा उ लोग के 150 बीघा जमीन देवा अगर बा तो हमने खोजा था जा ऐसे ही और 50 बीघा भी अथी बा लीस हो वाला बा तो उस सब से हमने के चाहना किसान के का करे के हम यहाँ आए जा माटी बा हरदम बोली ला जा एप्लीकेशन फॉर्म करा जा सब जा कुछ ना कुछ और हो जा बिना सिंचाई द्वारा सकब जा रोपाई करे होता इस साल फसल हौजे ही शुरू हो गया बा आलू अभी फसल होता गाजर के फसल होता तो हम ही देखा था जा और इलाका कैसे लालुआ में बा मालेगा में नुवेल दे कुवैत में उतना सिंचाई नहीं छैला करे के जहाँ छैला सिंचाई करे के हौजा किसी ने पाबंदी नहीं डाल बा पर कमती छैला इस्तेमाल करे के अब एक दूसरा चीज अभी लीची के एथी पुराई होता पुरी निजा

0: भाषाओं होता त एगो चीज हमने जानी ला जा पानी आवश्यक है त ओके जितना जना स्थापित करेला जा हमने के बगीचा एगो चीज हमें सलाह हरदम दे ला जा चारों बगल कुछ ना कुछ विंड ब्रेक सगवा कटहर रोप दे कसिया रोप दे फिलाओ रोप दे ये सब रोप दे बा तब क्या होला कैसे बोली एवापोवे जब अथी हमें के हवा होला तो वो पानी नहीं एवापो हुई और हमें के बगीचा में ऐसा सलाह देव जा हाँ जानी ना जा घास वो भी पानी चाहिए तो हौजा बोली ना जाए देखा अब तब बिक्री होता हमें के स्कीम में बा ब्रश करते माने वो घास सक बजा काट दे जब काट दे ब्रश करते से वो ही का हो कोपोस होई लगी तब तोहर जितना बगीचा में तोहर गांची के जरी द्वारा खाना मिला था इमिद रही और एगो कुवा और एगो चीज तब बोला था घास हाँ घास हरदम बोला जा हाँ पानी घीते हुआ पर कब कभी कभार है ना हो जाए छोड़ दे के और घास हमें के अच्छा माने कि पर्यावरण के जाने ला जा बुलावे ला जा अच्छा जो हमें के कीड़ा है मधुमक्खी सियाफीद अन्य प्रकार के हमें के जो अच्छा कीड़ा है जो अच्छा काम करे ला जा तो हरदम चाहे नहीं बोले थे जाके रोपे के चारों बगल सकब जा रोप दे तब एगो चीज ढेर जना करत हो जा बोले थे जा नहीं छेना करे के ओकर चारों बगल हरदम हे देखा कछिया बोलनी ये थी ये सब के गांछी है पल्हा उल्हा के गांछी है तो और कोई क्या करे वो काट के जरा देवे लन जा यह विषय तो ही नहीं अच्छा तो हाउ छेना रखले रहे के
1: फूल में मधुमक्खी
0: मधुमक्खी तो ई छेना अथी और ये हमने हे देखा भाई प्रेमचंद एगो स्कीम में अवन चांबा वागिकल्चर
1: अभी चर्चा कर लन
0: चर्चा कर लन वो हम भी रही हैं उजा शुरुआत में शुरुआत में जब हमने के बाहर से रीनियन आइलैंड फ्रांस से लोग गईलन जा सिखैलन जा खेत में गईली जा देखे हाउ जो रिलेशन बात तोहर कौन चीज रोपले हवा और भीतर कौन चीज बा और एगो चीज बा है देखा घास कैसे बोली हमें के हरदम छा सोचे के देखा मिनिमम तिलेज बोली जा करे के हरदम नहीं सोचा जाए बगीचा बा स्थापित करके जेबा जा मशीन डाल दे नहीं जड़ी हमने के केला के गांछी जानी ला जा हौजा कोट द हवे गड़िया और चारों बगल नहीं छाना कोरे के जी कोट दे बता माटी सकबा जा लाल माटी लौकेला तो लाल माटी लौकी तो ऊ ज्यादा पानी खोजेला
1: अच्छा।
0: और पानी है बापो हुए उजाला यही बोलती जाए हाई वाला सोच समझ के मशीन छाइना डाली के सोच समझ के चाहिला डाली के तो उ लोग हरदम बोल ला जा हम यहाँ आइए जा हम बोल दे अब जा कैसे छाना दरी काटे के कहाँ काटे के ताकि तू लोग के जो काम बा आसान हो जाए
1: जरूर। और अभी प्रेमचंद जी आप चर्चा करत रहला कि आपके थोड़ा सहयोग मिलल बा फागे के ओर से जो सहयोग आपके मिलल कैसन सहयोग मिलल थोड़ा विस्तार से हमी के बतावा
2: ओकर तकनीक सिंचाई के 100% विकास और जैसे बोला था पनिया जाए जाए कोदमा में और गुता गुद जब आवा था तो पन्या बहुत बेनिफिक बहुत लोगों के और स्कीम बा कौन एगो मशीन किन बता ओकर में ओकर तेवया घुमावेला अभी भाई पता बोलन है कि 50% ग्रांट मिलेला ऐ सब फैसिलिटीवन है हमके जो फैसिलिटी मिलल बाटे मुझे थोड़ से बोलनी कि एगो टैंक मिलल पानी के कि ओकर से अब ओकर कोदमा करके बहुत फसल गल एगो लावांताज जला बहुत मुझे अब एगो प्लांटे के बोलवा जा कि एगो टैंक पान एगो टैंक दिलो खोज ओकर मोते खोज ओकर कोदमा खोज ओकर ये निकाल जाए आलो दस कई फसलों में बहुत अंकुआजमेंट मिल रहा निके फागे बगल से अभी सामना एक चेयर बगल से ऊपर बगल से ढेर अंकुआजमें मिला था और जो कु टेक्निक मिलेगा
1: तो सेव कर ले हवा
2: हाँ हाँ जो कु टेक्निक मिलला अभी जो टेक्निक मिला था बैठा थोड़ा में ये सब नहीं जानते अभी जो टेक्निक मिला था नुवो नुवो नुवो दफे और हमने एग्रीकल्चर में हरदम से अडाप्टे रहे कि नुवो नुवो टेक्निक कौन से नहीं तो प्लांटे जी करते रही जो आगे
1: करते
2: वो
1: नहीं अच्छा रही
2: नहीं अच्छा रही
1: और अभी मौसम भी देखा था मौसम बदलने जाता आगे ऐसा मौसम कहाँ रहा
2: एगो एग्जाम दे रखते हैं एगो तांता में वाकवा में दिन ओकर तांपे गाचुए ठंडा ओकर तांपे गाचुए ठंडा पानी तो बरसे लेगी में तो होई

0: अभी टेम्परेचर एकदम सेंस हो
1: अभी
0: नहीं बहुत ठंडा फजीर के उतना ठंडा नहीं बा और पानी के गिलिए मिला था नहीं मिला था अब तो हाइस अब कहीं वो अलते नाचिक खोजेंगे कैसे अलते नाचिक खोजेंगे फागेम की टेक्निक दे होता किसी किसी का करके
1: और आप जो खुद फागे से ये टेक्निक सीखला को ले ला और बोला था कैसे कैसे आपके सहयोग मिले आवता हर तरफ से आप किसान लोग के कौन सलाह देबा किसान भाई लोग के ये सूखा के मौसम में
0: कौन से ही दूलों के देव हम पहुँचते हैं भाई लोग फागे हम के कू देवता गाछी जाके लवताज निकाले के
1: इको गाछी है कुछ पे करे के नहीं बा
0: कुछ पे करे के नहीं है वहाँ पर जाइए रेजुमे बा कबू कबू उतन में मिलेला बहुत इंटरेस्टिंग एगो तिलेतन निकाल के जब जाइब वहाँ कुछ सीख कर अब वहाँ अप्लीके कर बंकारों में तो हर कातिर बहुत बेनिफिट है बहुत बेनिफिट है और हम पाते लोग अंकुआज करम जा टेक्निक सीख टेक्निक अप्लीके कर उपगाइ
1: आजकल बोलल जला कि मेहनत चाहिए करके जीवन में लेकिन चाहिए स्मार्ट रह के इतना ऐसा मेहनत करा जहाँ पर आप उतना थकबा भी नहीं ढेर नहीं परी कपार फाचिगे करके लेकिन आपके काम भी बहुत अज्जोली से हो जाए तो ये विषय में हमने के चर्चा अभी जारी रही हमने संगे हवन श्री प्रेमचंद जीतन जी और श्री नंद किशोर प्रताप जी आप फागे के प्रिंसिपल रिसर्च ऑफिसर हवा और आप एगो किसान हवा जे फागे से जितना सहयोग मिला था और से लाभ उठावा था और इस विषय में हमने की चर्चा अभी थोड़ा देरी में जारी रही फिलहाल ले जा एक छोटा सा ब्रेक

0: आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सबको के एक बार फिर स्वागत बा। आज का हमी के देश में सूखा मारा था और ऐसन में पानी के कटौती लागू कर देवल गल बा। हमने के सौभाग्य बा कि ई थोड़ा दिन में थोड़ा बहुत पानी मिलने आवता, लेकिन आगे चल के सखी जस्ती सूखा हो जाए, सूखा पड़े लगी। और ई विषय पर बात करे खातिर कि कैसे प्लौतिया लोग के, कैसे किसान लोग के मदद करल जाए, उन लोग के कौन कौन टिप्स देवल जाता फागे के ओर से, हमने संगे हवन श्री नंद किशोर प्रताप जी फागे के ओर से, और फिर एगो किसान जे फागे के जितना भी सलाह बा, जितना भी ओकर प्रशिक्षण बा कू देवल जाता, ओकर से लाभ उठा के हमने के बतावत हवन कैसे उनकरा सुविधा हुआ था। तो अभी प्रेमचंद जी थोड़ा घरी आगे हमने के फागे के अफसर श्री प्रताप जी बोलत रहलन कि कौन कौन कदम चाहिए उठाए के, और उकर में कॉम्पोस्टास के भी चर्चा होल। गुतागुत के बात तो आप करला, अब एक कॉम्पोस्टास के बारे में थोड़ा बोला, आप कैसे एक एम्प्लीमौते करेला, कॉम्पोस्टास के बारे में कौन सलाह देबा हमने के किसान भाई लोग के, एगो किसान के हैसियत से।
1: कृषि भाई प्रताप जी बोलन, कॉम्पोस्ट कितना एपोता होगा भाभी, और जो पत्ता सूखल बा, जो गाछी काटा जाए या जो घास के बाद सब डाल देबा एगो एगो बीन में, हाउ कॉम्पोस्टा बहुत रिस ऑर्गेनिक हो जाए, रिस ऑर्गेनिक। और ओकरा लेके जब दलबा माटी में तो मटिया तो आर रिस पोजिशन आर अच्छा रही। अब जैसे हमने हमने के कौनसे मिलल बा कि जीरो बजट, जीरो बजट का बोले चाहता कि ओकर में जी फीमिये गाय के गोबर डालब से, गाय के गोबर डलबा ओकर में फैचिलीजा सकप से नहीं डाले, सहमति सुन जस्ती लेता ले, जस्ती नहीं मन लेगी मिली। और कहाँ मिली, कहाँ मिली गोबर, अभी तो जिस बिगा में मिलेला कहीं जाके आने के, तो अभी वो प्लान बा फागे बगल से कि कैसे करके प्लीटर वो डिस्ट्रीब्यूट करी प्लांट है लोग के कौन कौन पॉइंट में, तो ये तो बहुत अच्छा रही कि हमने के आपात फैसिलिटीज़ नहीं सेवी करब सा, आपात पेस्टिसाइड नहीं सेवी करब सा, जीरो बजट से देगी खूब अच्छा रही। और
0: जीरो बजट और डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब आपके कुछ किन्नी के नहीं चाहिए, आपके ऐसने मुफ्त में मिली, ये बोले कुछ था
1: ए जे फागे जे डिस्पोजिशन लोग था आके डिस्ट्रीब्यूट करके सब जे को पॉइंट रही कहाँ पर हमने सबसे जाके ले। अच्छा। कि हमने के पड़ जाके बिगा आने के और प्लांट है कुछ लेनो बा लोग जिप्सी रही तीन लेसी बोलते, अब जे फागे जो है जिस पोजिशन ले जाके यहाँ पर तेल तेल पे जिस भी गए तो ये तो बहुत लाभवंताज बा। हमने तो बाकवा से बिगा ढेर दूर नहीं बाटे नुक, हमने तो सबसे जाके लाने में हर जो इनिशिएटिव ले के बा लोग के बहुत अच्छा बा। हम ऐसे कहते हैं फागे के जे ऐसे रही तो पेस्टिसाइडो कमती रही, फर्टिलाइजरों कमती रही, लेगिम्स अच्छा रही।
0: जरूर
2: हाँ, कैसे भाई जितन बोलन है जन कॉन्सेप्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, हमने मुफ्त में हो जन कैसे बोलते हैं हमने के फीमिया नहीं मिला था गोबर, ये हमने आनत है जा हमने शुरुआत कर दे हैं जा मापू उदय फार्म में हो जा उत्तर प्रांत में एक बगल हमने जाए ला जा छोड़ दे ला जा हो जा सिर्फ किसान लोग अपन एथी आने ला जा कंटेनर लेके चल जालन जा, हर तीन चार सप्ताह में अभी चालू फिर से करब जाए क्योंकि देखते है जा सुखारी मौसम में बाहर जाए वो दूसर ग्रुप बा दागुछिया में उ लोग भी हम के अथी संपर्क कर लन जा, हौजा भी बारह गो किसान बा, बारह गो किसान के सहायता देवत है जा, तो ऐसे ही जो सेवा है देवत है जा मुफ्त में। अब बोलती कब छैला सिंचाई करके, ढेर हाँ। जना देखबा दस ग्यारह बजे बारह बजे हो जाते जाने ना जाए वापसों ज़्यादा, तो दो बखत सकबा जा सिंचाई करे सवेरे लगभग नौ से आके और शाम के तीन बजे से बाद में, और हम के रोपाई अब नहीं जब जा हमने ट्रांसप्लांटे करे जो पौधा थे दिन के

0: हमके छाना शाम के ज्यादा जस्सी अच्छा शाम
1: जब ठंडा रही हाँ,
0: ठंडा रही तब उ जल से जल सकी इति बढ़े लगी। और एगो चीज बा हमने हरदम इ त बहुत प्रशिक्षण दिली जा जाना था जामनी के जितना किसान बा पकड़लन जा जितना बोली जा आगे हमने जातनी जा दरी काट के फीमिया में हो जा बिया गिरा दे होते जा तो बहुत हमने जोरदार प्रशिक्षण कर लीजा। आज नर्सरी स्थापित होकर बा कोई घर पर सीतरे में इति करे लंजा तो बीज हौजा गिरा के तब ट्रांसप्लांटे करे लंजा हैजा काहे बोला थे जा एगो ट्रांसप्लांटेशन शॉक मिल जाला उ गांचा के है एगो इति लताप के जो बोला था लंजा हौजा हमने डालत हैं जा बीज बड़ा हो जाए तो हो जा हमें कबाड़ के दूसरा बगल जाते अब नहीं सीतरे में बा सिर्फ घिंच द अपन इतनी जरी में डाल दा तो हाई टेक्निक जानते हैं जा अपना दे बचा ये तो बहुत प्रशिक्षण कर दी जाए तो ये सब भी देखा हमने के हमने चर्चा करी ला जा आर्थिक चर्चा माटी के मोल लगे ला हमें प्रशिक्षण दे ला जा खेत में जाए ला जा पर हई जितना चीज बोला था जा लिखित रूप में डाल दे ले जा तो ये हमने एगो पॉम्फ्ले हमने के दफ्तर में बा सकबा जा जो पॉम्फ्लेट बा यह एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर माने कि कैसे चाहे ना हमने के कमती पानी से और जितना टेक्निक अभी चर्चा कर ली जा इस सब इमेबा इमेबा तो हम बोलती जा जितना जाना हमने के दफ्तर से संपर्क जानते जा हम शुरुआत ही से बोली पानी आवश्यक हाँ आवश्यक है तो जितना कमती पानी बा हमनी सकब जा जितना नवा नवा टेक्निक बा हमनी सकब जा इस्तेमाल करे वो कमती पानी तो यही बोलती जा हरदम हमनी फागे हरदम है जा है जा हम की दफ्तर में या जा हम के मॉडल फॉर्म में या जा ये देखा हम के मॉडल फॉर्म जितना टेक्निक बा ड्रिप इरीगेशन मल्चिंग कॉम्पोस्टर सगरो ये देखा हमने के जो फ्लैक मॉडल फॉर्म में ढेर जाना आवत हो जा बोलती जा है देखा सिर्फ एगो फोन कर दे बा सकबा जा आई देखे एगो सिर्फ बोलबा जा
1: आई बा जा फोन करके
0: हाँ
1: तब एगो दात चाहिए लेवे के एगो बखत चाहिए
0: लेके हाँ हमने बोल दे बाब जा आरु कैसे बोल जाए जा ओपन है कभी भी सोचबा जा आई के सिर्फ एगो कैसे बोल जाए जा एगो अपॉइंटमेंट ले लिया हमने के कर्मचारी हम जा बा सगरो लेके चल जितना टेक्निक बा जितना अभी बतलावत है जा हम के मोबाइल फॉर्म में बा। और एगो दूसर चीज हमें तो जानते हैं जा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्मार्ट एग्रीकल्चर अति करत है जा सस्टेनेबल माने कि बिजली चाहे ना हमने के जो अथी बा वाटर पंप चला के अब हमने के जो नीति बा सोलर वाटर पंप हो गल बा हमने के जहाँ जहाँ मॉडल फॉर्म में बा हमने के रिसर्च स्टेशन में बा वैज्ञानिक जो नीति बा हो जा सगरो इस सब तरह के हमें डाल दिले जा अब जानत है जा सगरो बिजली नहीं चला हमें के ग्रीन हाउस बा अब तब जब नाम बोल दे ग्रीन हाउस हमने शेल्टर्ड फार्मिंग करी ला जा जाने जा एफिशिएंस वाटर एफिशिएंसी इरिगेशन एफिशिएंसी हमने खुला मैदान में करब जा गुतागुत पर हमने जब ग्रीन हाउस माने के ढाक देव जा प्लास्टिक डाल देव जा हौजा हमने के जितना पानी बा कैसे हमने इस्तेमाल माने की ढेर अथी जान नहीं होला तो ई है वाटर यूज एफिशिएंसी हौजा 40-50% से हमने कम पानी इस्तेमाल करी ला जा एक बीघा जमीन हौजा रोब खुला मैदान में शेल्टर्ड फार्मिंग करब हाइड्रोपोनिक करब कोनो चीज करब हौजा जो कमती पानी बा उ 40-50% हमने जो पनिया बा कर एफिशिएंस बढ़ जा रहा तो यही बोलती जा है अब एगो दूसरा बड़ा स्कीम अभी लॉन्च हला हमने के मिनिस्टर डॉक्टर अविन बुलेल मंगलवार के प्रेसिजन फार्मिंग प्रेसिजन फार्मिंग उ आर हमने जाते जा कमती पानी से ना इस्तेमाल करके ऐसा ना ऐसा टेक्निक है देखा माटी में डाल देव जा एगो उपकरण बा 300 मीटर जान जाब जा कब पानी कमती बा कब छाना पानी डाले के और वो डिजिटल है हमने एथी नहीं बा एआई भी इस्तेमाल करब जा जहाँ तक हमी एआई तो वो नवा स्कीम ई बजट में आला 2 मिलियन रुपी एक जना के सोसाइटी बा तो कोऑपरेटिव बा अकेले आवा जा सकबा जा वो योजना पर प्राप्त कर ली तो ई होता जानत है जा और बगल ई पर काम करत हो जा ज्यादा लालुआ गई जा हो जा हमने के नौजवान है देखा और कोई बोल रहा नौजवान नहीं बा हमने देख ली जा ट्रेनिंग दे ली जा पर उन लोग

चेत नाउ लोक सिस्टम बा डिजिटलाइज कर दे लांजा ते ई अच्छा बा लोग हाँ सब जितना टेम्परेचर तापमान ह्यूमिडिटी मिल जाता है जा सिर्फ एनालिजे करके

0: डिसीजन फार्मिंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तब हमने सकब जा और हमने के कौन जब कमती पानी से ज्यादा चाइना हमने के पैदावार करेगी
1: जरूर। तो जैसे सुनत हो वजह आज भले ही हमने के देश एगो संकट के ओर बढ़ता सूखा के ओर बढ़ता लेकिन फागे के ओर से कृषि मंत्रालय के ओर से उस सब सुविधा देवल जाता उस सब तकनीक अपनावल जाता जेकर से कमती पानी से सकल जाए प्लांटेशन करे और ये बात पर कितने गतिविधि चलता प्रशिक्षण चलता और MBC तक यहाँ बाही आप लोग के जन काम होता ओके जनता तक पहुँचावे के एगो जो जागरूकता अभियान बा उ चलावे के कहे कि जैसे पानी के कटौती के घोषणा होल त सब कोई सोचे लगल कि अब प्लांटेशन कैसे हुई एगो धरला एगो बेचैनी हो गल किसान लोग में जनता लोग में भी कि अब लेगिम कमती रही तो अब कौन दशा रही आगे चल के। लेकिन देखत है जा ये कार्यक्रम में आप जो बात बोला था वह और हमने के भाई किसान श्री प्रेमचंद जी भी बतावत हुआ कैसे ये सब टेक्निक के अपनाते हुए प्लांटेशन सुचारू रूप से जारी रही भले ही थोड़ा संकट बा लेकिन ओकर उपाय भी आप लोग बहुत अच्छा से ढूंढत हुआ जा। अब हमने के थोड़ा अंत तक पहुँचत है जा हमने के बोला प्रताप जी कि कैसे आपके बुझाता ये जो संकट के समय सूखा के समय बा ये जस्ती लंबा जाए कैसे चली और एक सामना करे खातिर आप लोग पूरा तैयार हो जा।
0: हाँ लगभग देखते है जाओ 3 महीना से केला जाए बहुत जा एल नीनो इफेक्ट तो अभी अगस्त में है जा सितंबर अक्टूबर नवंबर तक ये 3 महीना अभी ज़्यादा हमने के छाना ध्यान दे के जितना पानी बा कमती पानी बा ओके कैसे छाना ज़्यादा देर लेके जाएगी नहीं देखा जलाशय कमती पानी होता पानी आवा था कभी कभार पर उतना नहीं भरा था तो यही बोल दीजिए बहुत ध्यान दे के हमने के जो एथी बा कमती पानी हाँ सकब जा जन जन टेक्निक बोल लीजा चाहे ला अपनाए कि अपना ही बजाए देखा अभी जाते हैं जा 2-3 महीना से उतना बरसात नहीं होता पर मंडी में हमने के जाना चाहे सब्जी बा फूल गोभी बा गोभी मिला था सुसु मिला था बैगन मिला था ये सब मिला था तो ये हमने तब हम के किसान लोग जितना हमने सलाह देवत है जा प्रशिक्षण पकड़त हुआ जा ये हमने चाहना हरदम हम संगे संपर्क कर बजा हमने तू लोग के आगे लेके जाप जा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई प्रेमचंद जी आपको कैसे बुझाता कैसे बा भविष्य अभी आगे चल के
2: जैसे तू बोला फागे विजिट कौन बनावेला जे कोई रीजन फ्लाक में बा एगो सेंट बा रिसेस कांगारो ओ लोग वहाँ पर बा सिस्टम सोलर सिस्टम ला पोंप अवेक सो एगो ओकर इरिगेशन आलो हम जन बोलती आदमी लोग के जे लोकाजो में जाके आल विजिटे ओकर से लाभ लिख उठावा जा इतना फासिल बा सिस्टम सोले एगो इन्वेस्टमेंट बा बेगो प्लांटे एगो इन्वेस्टमेंट ऊपर फिर एगो इन्वेस्टमेंट एगो लॉन्ग टर्म के
1: राइट
2: काल पानी कमती रही काल पानी जैसी रही उकोने उन फिनी फैन इन्वेस्टमेंट ऊपर ऊपर
1: तैयार
2: रहा
1: कोनो भी मुश्किल आए ओकर सामना करे खातिर तैयार रहा
2: प्लांटेशन तो होती रही जहाँ जहाँ लवता चाहिए लवता द्वारा मिलता
1: और आपको कैसे बुझाता ये जो सूखा के समय चलता आगे चल के एगो किसान के हैसियत से आपके कैसे बुझाता कैसे रही आगे के दिन
2: ये सुखाड़ी कोची नहीं रही ओकर सोल्यूशन मिलते होता
1: तो
2: हमने चाहे लाभ निकाले कि जब जब जब हमने के जब कौनसे मिला था टेक्निक मिला था फागे बगल से उन लोग के रिसर्च बगल से तो हमने कहीं लगातार निकलते रहे कि अब हमने सोचते रहे चाहिए पानी नहीं बरसता हाथ जोड़ नहीं तो उसी तरह नहीं छा रहे और लिस्ट वाला टिक नुवो नुवो टेक्निक हमने नुपुर कौनसे करी थी
1: जे सब कदम के पालन कर बा उठाई बाई सब कदम त आगे के भविष्य के धरला हमने के एगो ई बात के आश्वासन बा कि कोनो समस्या ऐसा नहीं खड़ा हुई
2: ऐसा समस्या ही तनी गपशप से पास करे
1: जरूर
2: किसी भाई तपता बोलन किसी लोग की रिसर्च हुई थी बटे
1: और प्रोग्राम के आखिर में जाते जा श्री नंदकिशोर प्रताप जी कौन सलाह देबा आप अंत में।
0: हाँ अंत में हेरेखा हम बोला टेक्निक बा बहुत से टेक्निक अभी चर्चा कर ली जा बा कमती पानी इस्तेमाल करब जा हमने के जितना कुछ बा उजाई के माने कि फसल अच्छा सकेला हुई हमने चाहना हमने अब जा हमने हरदम बोली ला जा हे देखा पानी हाँ

0: सक पर हमने के छा ऐसा टेक्निक हमनिया बा सकबजा आई देखा भाई जितन अच्छा बोलन अलन हमने के जो फ्लैक मॉडल पर ढेर जाना होते हो जा जाए क्योंकि एगो मॉडल बा सच्चे की जितना चीज बोलत हैं अभी कंपोस्टाज मल्चिंग सोलर ड्रिप इरीगेशन कितना चीज हो जा बा सकबजा देखे और बिक्री हो रहा है नहीं सोच बजा जा सिर्फ इधर जा चीज देखे कि नहीं हो जा से बिक्री और एगो चीज बा हो जा रासायनिक पदार्थ नहीं इस्तेमाल करी ला जा
1: केमिकल्स नहीं बा
0: जी चार साल हो गल हो जा रासायनिक पदार्थ पर सब चीज जितना बा हमने के किचन गार्डन बा हो जा हमने के अरुई बा हमने के बतात बा हमने के मयोग बा हमने के रोजेल बा हमने के एथे शेल्टर फार्मिंग बा पिताया बा सब बा हो जा मिला था तो ऐसे बोलती जा हमने नहीं सोचा जा पानी नहीं बा तो नहीं सकब जाए थी करे हमने के सकब जा फसल जोन बा बरकरार सकेला रहे ई सकब जा बोले पर टेक्निक छैना अपना के
1: जरूर और अंत में कुछ जोड़ बा जीतन जी
2: कुआजिक रा प्लांटे लोके कि है नुवो टेक्निकन से एप्लीकेशन करा जा और प्लांटे के तन चाहे प्लांटे के हमने के काम हो प्लांटे के प्लांट अप सा हां नवा नवा टेक्निक चाहिए आप कर के
1: जरूर और जैसे सुनत हवा भले ही सूखा के समय आवता चला बा पानी के कटौती शुरू हो गल बा फिर भी फागे आप सब किसान लोग के सहयोग देवता कदम कदम पर नवा नवा टेक्निक आपके प्रस्तावित करता और आप एगो स्मार्ट फार्मिंग की ओर सकबा बढ़े और हर एगो जो नवा टेक्नोलॉजी बा ओके आप लोग अपनावत हवजा और एक मॉडल भी रखत हवजा जेकर से आप लोग सकबजा प्रेरणा लेवे और इस सूखा के जो मौसम बा ओकर अच्छा सकबजा सामना करे। आज के इस कार्यक्रम में फजीर फजीर भाई प्रताप जी आप अल बहुत बहुत धन्यवाद भाई जीतन जी आपके भी बहुत धन्यवाद और हमने के जितना भी श्रोता लोग हवजा आप सबको एक आपके ध्यान खातिर धन्यवाद। आशा करते जा इस कार्यक्रम से आपके लाभ जरूर होल होई और आप सकबा फागे जाके ई पॉम्फले भी ले लेवे और ई पॉम्फले में आप लोग के टिप्स देवल करबा कैसे इस सूखा के मौसम के सामना करेंगे। आप सबको एक बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
3: You're listening to RM3 Radio।

0: ये सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना के साथ। आपको नमस्कार टीना।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। आज सुबह से बंजन ग्रुप के 37 फिलिंग स्टेशनों पर नया लोगो फिलिंग दिखाई दे रहा है। ब्रांड की नई पहचान का अनावरण कल मापू स्थित लवांचो जिसत में प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में किया गया। बंजन ग्रुप ईंधन वितरण नेटवर्क की पहली 100% मर्चेंट कंपनी है। उसने अपनी सहायक कंपनी बेटा ऑल टर्मिनल के माध्यम से नवम्बर 2025 में इंजन पेट्रोलियम मर्चेंट्स का अधिग्रहण करके इस क्षेत्र में प्रवेश किया। और इस शनिवार 22 अगस्त से प्रत्येक संचालक के लिए हज यात्रियों की न्यूनतम संख्या 50 से बढ़कर 100 हो जाएगी। ये उपाय इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड बोर्ड की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद द्वारा कल अनुमोदित नए प्रावधानों में शामिल है। संचालकों को इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट

0: अंडरसी परमिट प्राप्त करने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करनी होगी। ये प्रावधान इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट फंड पिलग्रिमेज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2026 में शामिल है। आज रोजल स्थित सर गाय तोंजुवा स्टेडियम में फायर फाइटर्स डे के अवसर पर 100 से अधिक दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया। मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज द्वारा आयोजित एक समारोह में कई महानुभावों, दमकल विभाग के मुख्य अधिकारी और सम्मानित दमकल कर्मियों के परिवारों की उपस्थिति में उनकी वर्षों की सेवा, समर्पण और अनुकरणीय आचरण को मान्यता दी गई। विदेश में ब्रिटेन के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस साल का एलनीनो पिछले 100 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली रूप ले सकता है। प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहने का अनुमान है, जो आधुनिक जलवायु रिकॉर्ड में अब तक का उच्चतम स्तर है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को भाई संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है प्रोग्राम गीत गाथा देश की में। संगीत से भरपूर और साथ ही साथ प्रेरणादायक प्रोग्राम गीत गाथा देश की, जिसके जरिए आप अपने देश के बारे में ज्यादा जानते हैं, ज्यादा सीखते हैं और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं। आज इस क्विज के जरिए हम एक ऐसे गांव को ढूंढ रहे हैं, उस गांव के बारे में हम आपको अनेक टिप्स समय समय पर देते रहेंगे और आप अंदाजा लगाकर हमें फोन करके बताएं या तो मैसेज करके बताएं कि हम किस गांव को ढूंढ रहे हैं। मैसेज करने के लिए फोन नंबर 5250-6200 व्हाट्सएप के जरिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अगर आप फोन करना चाहें तो 402-4870। और जो पहला संकेत हम आपको देते हैं, जो पहला टिप, जो पहली पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं, समुद्र तट पर स्थित ये गांव, समुद्र तट पर स्थित ये गांव जो हम ढूंढ रहे हैं वो इल डी फ्रांस के इतिहास से और हमारे लोकल साहित्य से गहरा नाता रखता है। समुद्र तट पर स्थित एक गांव को ढूंढ रहे हैं जो इल डी फ्रांस के इतिहास से और हमारे लोकल साहित्य से गहरा नाता रखता है। हम किस गांव के बारे में बात करें, आपका जवाब ऑन 52 50 62 00।

कश्मीर तो पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन हम कश्मीर को नहीं, हम मॉरिशस में एक जगह को ढूंढ रहे हैं, गांव को ढूंढ रहे हैं। और जो पहला संकेत हमने आपको दिया, समुद्र तट पर स्थित वो गांव, इल डी फ्रांस के इतिहास और हमारे लोकल साहित्य से गहरा नाता रखता है। और इस पहले संकेत, इस पहले टिप, इस पहली जानकारी को सुनते

आजाम सुब्राती ने मैं फोन किया फ्रॉम अमोरी और उन्होंने कहा व्यूगों पर साथ ही साथ उमा जी ने भी सेम टू सेम आंसर दिया व्यूगों पर जी नहीं व्यूगों पर नहीं है सो हम आपको देते हैं दूसरा संकेत इस गांव की जनसंख्या इस गांव की पॉपुलेशन 2022 में 2022 में 7123 की थी लेकिन इस गांव के दो भाग हैं जो अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं अब इस दूसरे संकेत से आपको कुछ और भी जानकारी मिल गई होगी और अगर आप समझते हैं कि आपके पास सही जवाब है तो आप हमें मैसेज कीजिए ऑन 5250 6200

कई जो मनोरंजन की लहरों पर गीत गाथा देश की, आज हम एक ऐसे गांव की गाथा गा रहे हैं, सुना रहे हैं, जो समुद्र तट पर पाया जाता है, जो समुद्र तट पर स्थित हैं, जो इल डी फ्रांस के इतिहास से और लोकल हमारे इस साहित्य के बहुत ही सुप्रसिद्ध उपन्यास से गहरा नाता रखता है। दूसरा संकेत जो हमने आपको दिया कि इस गांव की जनसंख्या 2022 में 7123 की थी। हमने आपको ये भी बताया कि इस गांव के दो भाग हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जो चौथा संकेत हम आपको देने वाले हैं, अभी आपने सुना ऐ सागर की लहरें, ये गांव अपने समुद्र के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है और इस गांव का जो प्यारा सा नाम है, सुनहरा नाम है,

ये बहुत ही खूबसूरत बालू से आया है यानी कि द वेरी ब्यूटीफुल सैंड जो उस गांव के तट पर पाया जाता है उसके कारण उस गांव को ये नाम दिया गया सो अगर आपको पता चल गया है कि हम किस गांव के बारे में बात करें तो आप हमें मैसेज कीजिए या तो हमें कॉल कीजिए 1422 पर उमा जी ने कहा सुयाक जी नहीं हम सुयाक की बात नहीं कर रहे हैं थैंक यू फॉर योर मैसेज

0: बहुत बहुत शुक्रिया इस खेल में इतनी रुचि दिखाने के लिए। चलिए हम मिलते हैं हमारे श्रोता से। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सरोजनी जी।
1: मैं
0: सरोजनी
1: बोल रही हूँ
0: गांव बुआ से। सो आप हमें बताएं हम किस गांव को ढूंढ रहे
1: हैं?
0: पॉइंट डेसनी पॉइंट डेसनी में बर्ग पॉइंट रेगाट और पॉइंट डेसनी। आपने कोशिश की लेकिन सही जवाब नहीं है। हमने कहा कि इस गांव की जनसंख्या 2022 में 7123 की है। अब हम ये नहीं मानते हैं कि पॉइंट डेसनी और पॉइंट रेगाट में इतने सारे लोग रहते हैं। अ बिट डिफिकल्ट ना। लेकिन आपने बहुत अच्छी कोशिश की, इसके लिए सरोजनी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे हाथ गौबा के हमारे सभी सुनने वालों को हम सलाम करते हैं। धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: आपको भी। धन्यवाद। जय मॉरिशस।

कुछ समय पहले भाई परमेश्वर जी ने हमें फोन किया जो इस समय टैक्सी में हैं और वे काम कर रहे हैं वो रहने वाले हैं कॉलोनी मास पावे के और उन्होंने कहा गौसा बिजी साबला जी नहीं

0: बहुत ही रोचक क्विज चल रहा है रेडियो मनोरंजन के लहरों पर. हम एक गांव को ढूंढ रहे हैं और चलिए आपको ले चलते हैं, मिलवाते हैं इनसे. हेलो सूर्यदेव जी, नमस्कार. सूर्यदेव जी नमस्कार. सूर्यदेव जी की आवाज नहीं आ रही है.
1: शिवाज बेटा.
0: हाँ अब ठीक है.
1: मैं कहता हूँ बिलमो.
0: बिलमो आप कह रहे हैं. बिलमो आप कहाँ के रहने वाले हैं?
1: लालमाची.
0: लालमाची के रहने वाले. सो आपके हिसाब से हम बिलमो की बात कर रहे हैं. हमने कहा समुद्र तट पर स्थित ये गांव ओके यानी कि बिलमोर ठीक है, जो इल डी फ्रांस के इतिहास से और हमारे लोकल साहित्य से गहरा नाता रखता है. आपने हमारे साहित्य में बिलमोर के बारे में कुछ सुना है? आपने पढ़ा है?
1: जानता हूँ, ऐसे जाता हूँ. बिलमोर ही है हमारे पास.
0: हो सकता है कि हो
1: जाना चाहते थे बरसात के बारे में.
0: हो सकता है कि हो बिलमोर के बारे में कुछ लिखा गया हो, लेकिन हम जिस गांव को ढूंढ रहे हैं नहीं नहीं वो बिलमोर नहीं है. लेकिन सूर्यदेव जी ने आपने बहुत कोशिश की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप सुनते रहें और फिर से फोन करें, हम अवश्य आपसे बात करेंगे. तो सूर्यदेव जी बहुत बहुत धन्यवाद. जय मॉरिशियस. जय मॉरिशियस. थोड़ी देर में हम आपको एक अलग संकेत देंगे.

मापू गांव में ट्रांसफर होने से पहले मापू गांव में ट्रांसफर होने से पहले रिवर जुरांग पा का जिला परिषद उस गांव में पाया जाता था।

0: उमा जी ने हमें मैसेज किया है और उन्होंने कहा है घोंगुब, शुक्रिया साथ देने के लिए उमा जी, लेकिन घोंगुब सही जवाब नहीं है। जो जो लेटेस्ट संकेत हमने आपको दिया कि मापू गांव में ट्रांसफर होने से पहले रिविया जोंगपा जिला का जो जिला परिषद है, जो हेडक्वार्टर्स हैं, उस गांव में पाए जाते थे और ये ट्रांसफर हुआ 1933 में। हम किस गांव के बारे में बात कर रहे हैं, चले हम इनको सुनते हैं। हेलो,
1: हेलो, जय मॉरिशस संजय जी।
0: जय मॉरिशस आशा जानू जी फ्रॉम कॉटेज, बताएं आपके पास जवाब क्या है।
1: देखिए संजय जी, दिमागी कसरत दो जवाब दे रही है, मैं दोनों दे सकती हूँ?
0: नहीं, सिर्फ एक ही दे।
1: ओके, तो पॉजिटिव फ्लक।
0: पॉजिटिव फ्लक। आप रहती हैं कॉटेज, और कॉटेज कहाँ पर पाया जाता है, किस जिले में? रिविया जोंगपा में। और आपके यहाँ पहुँचने से पहले जो बस गुजरता है वो मापू डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स के सामने से गुजरता है ना? और लेकिन जो जो जो पहले हेडक्वार्टर्स होते थे वो वहाँ पर नहीं होते थे, मापू में नहीं होते थे, कहीं और होते थे, और वो हेडक्वार्टर्स पॉजिटिव फ्लैक में नहीं होते थे, उस गाँव में होते थे। सो कोई बात नहीं, आपने भाग लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर में एक और संकेत हम देंगे आपको।
1: ओके जी,
0: जय मॉरिशस।
1: ओके,

मछुआरों का ये गांव मॉरिशस के उत्तर पूर्व में पाया जाता है और वहां से इल डोम्ब का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। ये गांव और भी ज्यादा टूरिज्म की ओर विकसित होने लगा है।

0: बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इतनी रुचि दिखाने के लिए। चलिए हम मिलवाते हैं आपको आजम से। आजम अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम संजय भाई,
0: कैसे हैं? सब ठीक तो हैं?
1: ठीक है, ठीक है।
0: आप कहाँ के रहने वाले हैं आजम जी?
1: हम
0: ओगई के रहने वाले हैं, यानी कि रिवर जोंपा ही के रहने वाले हैं। और वहाँ पर कितने सालों से रहते हैं?
1: बचपन से
0: रहते हैं। तो हमने कहा कि मापू जहाँ पर हेडक्वार्टर्स पाए जाते हैं रिवर जोंपा के, वहाँ पर जाने से पहले 1933 में वहाँ पर जाने से पहले रिवर जोंपा के जो ज़िला परिषद था वो उस गांव में था। तो आपके हिसाब से हम किस गांव के बारे में बात करें?
1: शायद
0: पॉइंट देलास्का। आजम जी, आपने बहुत कोशिश की लेकिन पंतिलास्कर नहीं है,
1: ठीक है,
0: कोई और गांव है। लेकिन आपने भाग लिया आजम जी, हमें बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आप भाग लेते नहीं। ओके
1: ओके, थैंक यू।
0: जय मॉरिशियस।
1: जय मॉरिशियस।

आपके फोन कॉल्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दो व्यक्तियों ने हमें सही जवाब दे दिया है, एक तो हैं मालती जी और दूसरे हैं मोहम्मद भाई। जो अगला संकेत हम आपको दे रहे हैं, इस गांव में एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी पाया जाता है, इस गांव में एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल भी पाया जाता है जहां पर इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी बीमारियों का इलाज किया जाता है और जिसको 1882 में खोला गया।

4:46 प्रोग्राम गीत गाथा देश की। आज हम एक गांव को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में अनेक संकेत हमने आपको दिए। चलिए हम इनसे मिलते हैं।

0: बताइए आप, हम किस गांव के बारे में?
1: वो गांव है सैंट फेलिक्स।
0: सैंट फेलिक्स?
1: हाँ।
0: सैंट फेलिक्स में एक हॉस्पिटल है, आप यकीन के साथ कह सकते हैं?
1: है एक छोटा अस्पताल
0: एक हॉस्पिटल जहाँ पर रेस्पिरेटरी डिजीज का इलाज होता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि सर्विक्स में इस प्रकार का हॉस्पिटल पाया जाता है, लेकिन हो तो छोटा सा होगा।
1: वो आसपास में।
0: कोई बात नहीं सत्यानंद जी, आपने कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय मॉरिशस।

समय आया है कि हम आपको आखिरी संकेत दें. बहुत सारे फोन कॉल्स वेटिंग पर हैं, लेकिन हम आपको संकेत दे ही देते हैं. इस गांव का एक प्रमुख मोन्यूमेंट है सैन जेरों शिपरक की मोन्यूमेंट. ये शिपरक जो 1744 में हुई और जिसमें 168 लोगों की मृत्यु हुई थी और जिसका जिक्र लेखक बेरनार्ड दे सेंट पियर ने किया था अपनी पुस्तक पोले वियाजनी में.

0: हमारे श्रोता लाइन पर वेट कर रहे हैं। अब तो इतने सारे संकेतों के बाद, इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बाद आपको सही जवाब मिल ही गया होगा, लेकिन हम दाद देना चाहेंगे मालती जी को जिन्होंने सबसे पहले ही सही जवाब दिया। उसके बाद मोहम्मद शाकिल ने भी हमें सही जवाब दिया। चले हम इनसे मिलते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते संजय जी।
0: नमस्कार उमा जी, आप इंक्वायर से बोल रही हैं?
1: हाँ,
0: आप बताएं, आज बहुत कुछ सीखने को मिला इस गाँव के बारे में?
1: जी हाँ, बहुत कुछ सीखने को। वैसे तो बहुत हिस्टोरिकल विलेज है,
0: हाँ,
1: पर आज तो बड़ा मुश्किल पड़ा।
0: आप बताएं हम किस गांव के बारे में बात करें?
1: पुतुदो विलेज।
0: पुतुदो विलेज, पुतुदो के दो भाग हैं, एक है विलेज और एक है
1: पुतुदो
0: हैमलेट।
1: हैमलेट, यस।
0: हाँ, पुतुदो विलेज और पुतुदो हैमलेट।
1: Yes.
0: समुद्र तट पर पाया जाता है और जो इल डी फ्रांस के इतिहास से जुड़ा है, और पुत्र दो क्योंकि वहाँ का जो बालू है वो सोने के समान है, पुत्र दो। और मापू गांव में ट्रांसफर होने से पहले रिवेजोंपा का जो जिला परिषद था वो पुत्र दो में पाया जाता था, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी पाया जाता है जहाँ पर इन्फेक्शियस डिजीज बीमारियों का इलाज किया जाता है,

0: और जो 1882 में खोला गया था और साथ ही साथ मछुआरों का ये गांव आजकल टूरिज्म में बहुत विकसित हो रहा है और वहां पर पाया जाता है सैन जेगों शिपरक की एक मोन्यूमेंट ये मोन्यूमेंट ये शिपरक जो 1744 में हुआ था और जिसमें 168 लोगों की मृत्यु हुई थी और जो बेनार्डो दे सैंपियर की पुस्तक में है पुली वर्जिनी में और इस गांव के समुद्र में एक और जहाज डूबा था दैट वाज ले कावालिये 1860 में जहां में 23 लोग मर गए थे सो इतना कुछ आज पुत्रदो के बारे में सीखने को मिला सो उमा जी आपने बहुत सारे मैसेजेस भेजे और आखिरकार आपने सही जवाब दिया ही
1: धन्यवाद और इसके बदले में मुझे बहुत जानकारी मिली इसके लिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ
0: जितने भी लोगों ने भाग लिया आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद इस प्रोग्राम में रुचि रखने के लिए उमा जी आप ऐसे ही इसी देश के बारे में सीखते रहें लोगों को बताते रहे उमा जी फिर से मिलेंगे
1: जरूर
0: जय मॉरिशस So, आज जिस गांव के बारे में हम आपसे पूछताछ कर रहे थे पुत्रदो और पुत्रदो में रहने वाले हमारे तमाम सुनने वालों को हम करते हैं सलाम जितने भी लोगों ने भाग लिया आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद एक ऐसा ही रोचक प्रोग्राम लेकर हम हाजिर होंगे आपकी सेवा में अगले शनिवार को थोड़ी देर में पूनम जी आपकी सेवा में हाजिर होंगे हमें आज्ञा दें धन्यवाद नमस्कार जय मॉरिशस

0: पुराने नगमे। पांच बजकर आठ मिनट हो चुके हैं। नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ पूनम, आपके फेवरेट प्रोग्राम पुराने नगमों में। कैसी हालचाल है, क्या तबियत शब्बित है, हमें भी बताइए 5491294 पर। और आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारे गानों का सिलसिला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आइकॉन के ऊपर जिन्होंने बॉलीवुड का स्टाइल बदल के रख दिया। आवाज़ दमदार और हटके उनका स्टाइल और अंदाज एकदम ऐसा जैसे कि अपन का स्टाइल होता है ना, यस वो वाला। जी हाँ, हम आज बात करने जा रहे हैं जैकी श्रॉफ की, यानी जग्गू दादा की। तो आज उनके शानदार गानों के साथ उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी फिल्मी करियर के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें करेंगे। एंजॉय कीजिए अपने गानों को और हमें मैसेजेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा 5250620 पर। एंजॉय कीजिए अपने गाने।
1: RM3 Radio

0: पुराने नगमे।
1: 5:14 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ और इस समय आपका साथ दे रही है पूनम। हम बात कर रहे हैं आज जैकी श्रॉफ की। जी हाँ, जैकी श्रॉफ का जन्म हुआ 1 फरवरी 1957 को मुंबई में, यानी कि इंडिया में, भारत में। उनका असली नाम है जय किशन काकू भाई श्रॉफ। मुंबई के तीन बाती इलाके में उनका बचपन बीता और वहीं से लोगों ने उन्हें प्यार से कहना शुरू किया जग्गू दादा। कहने को तो वो एक स्लम एरिया था जहाँ पे कह ही नहीं सकते कि उनकी जो पर्सनालिटी थी एकदम उस तरीके से हो सकती थी जैसे रॉयल प्रिंस की होती है। उनकी शुरुआत से ही उन्हें एहसास हो गया था कि उनमें कुछ खास है, चाहे वो बार बार ऑटोग्राफ के लिए खुद से ही साइन करते थे घर में बैठ के, या कह लीजिए कहीं ना कहीं जाके अपनी फ़ोटोज़ खिंचवाते रहते थे और स्टाइल देखते रहते थे और उस ज़माने की हर मूवी वो देखते थे। और कहते हैं कि जब मैं मूवी देखता था तो एहसास होता था क्या मेरी पर्सनालिटी कभी बॉलीवुड की एक बड़ी सी स्क्रीन पर आएगी। और यही साधारण सी शुरुआत और साधारण सी सिर्फ अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस से, लेकिन पर्सनालिटी को उन्होंने बनाया और कहा कि अब मेरा टाइम आ गया है वहाँ जाने का जहाँ पे नॉर्मली लोग पहुँच नहीं पाते। जी हाँ, वो बॉलीवुड की एक बड़ी सी स्क्रीन। जो इन्जॉय कीजिए उनके गाने और ये एक बहुत ही प्यारा सा गाना है आप सबके लिए।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:22 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम पुराने नगमों के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ की। फिल्मों से पहले जैकी श्रॉफ ने मॉडलिंग शुरू की और मॉडलिंग में काम करना शुरू किया। फिर एक दिन देवानंद साहब ने उनको कहा कि 1982 में एक प्यारी सी मूवी बनानी है, तो उसका नाम रखा स्वामी दादा और उसमें एक छोटा सा रोल उनको दिया गया। लेकिन उन्होंने ऐसा धमाका किया कि 1983 में जब सुभाष घई ने उन्हें हीरो मूवी के लिए लीड रोल में ऑफर किया और कहा कि तुम ये करने जा रहे हो सिर्फ स्वामी दादा मूवी देखने के बाद, तो उनको उन्होंने ऐसा गाना गाया और फिर वो गाना था तू मेरा जानू है, लंबी जुदाई जैसे गानों के साथ बॉलीवुड को मिल गया एक नया हीरो। और वो हीरो ने ऐसा कमाल किया कि आज 40 साल हो गए, 40 साल में भी सब अगर किसी दादा की बात करते हैं तो वो बोलते हैं जग्गू दादा, यानी कि जैकी श्रॉफ साहब।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: पाँच बजकर 29 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, और आप सभी के बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं क्योंकि सबको जैकी श्रॉफ के ऊपर जो ये प्रोग्राम चल रहा है वो सुनने में अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पर। चलिए बात करते हैं जैकी श्रॉफ की। तो जैकी श्रॉफ को सिर्फ रोमांटिक हीरो समझना बहुत ही मुश्किल हुआ क्योंकि उन्होंने एक्शन, रोमांस, फैमिली ड्रामा, विलन एंड सपोर्टिंग रोल सब कुछ किए हैं, जैसे कि हीरो, कर्मा, राम लखन, त्रिदेव, परिंदा, सौदा, गर्दिश, 1942, अ लव स्टोरी, रंगीला, बॉर्डर और देवदास जैसी 250 फिल्मों का सफर तय किया। जैकी श्रॉफ ने जो उनका अंदाज था वो बहुत ही अलग था, और उन्हें सोचने का और उनको एक्ट करने के साथ साथ उनको पता नहीं कौन सा ऐसा स्टाइल सूझा कि उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो मैं प्रोड्यूसर भी बनूंगा। और रिसेंटली उन्होंने बहुत ही बड़ी मूवी प्रोड्यूस की और जो कि पूरे मॉरिशस में भी चली और पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में चली, और उन्होंने जिस तरीके से उसे प्रोड्यूस की बहुत ही अच्छी रही। तो कहते हैं ना कि एक पर्सन हो उसके अंदर सारे रंग हो, तो उसमें हमारे क्या नाम आता है। यस, हमारे को अभी एक मैसेज आया कि मुझे जग्गू दादा का एक नाम बहुत पसंद है और वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं, हे बिड़ू क्या हाल चाल है। तो बस बिड़ू के जो सफ़र था शुरू हुआ और जैकी श्रॉफ ने जिस तरीके से बॉलीवुड में अपना नाम किया स्लम फैमिली से निकल के, उसकी तो कोई बात ही अलग ही है। तो इन्जॉय कीजिए उनका ये गाना।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:35 हो चुके हैं और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जैगी श्रॉफ की गोरिया रे गोरिया ले मेरा दिल चुरा के ले जा। बट ऐसा तो कहते हैं ना कि हीरो ने यानी कि हमारे जैगी श्रॉफ दादा ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तो सारे ही हीरोज़ की जो रियल उस टाइम बॉलीवुड स्टार्स थे उनकी ही नींद चुरा ली। जैगी श्रॉफ ने अपने दौर के लगभग हर बड़े नाम के साथ स्क्रीन शेयर की। अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही खास तौर पर खूब जमी और जैसे राम लखन मूवी हो गई, परिंदा हो गई, इसका शानदार एग्जाम्पल तो है ही है। साथ में एक्ट्रेसेस में अगर बात करें तो मीनाक्षी शिशाद्री, माधुरी दीक्षित, डिंपल कपाड़िया, श्रीदेवी, जूही चावला, मोनिशा कोहिराला, उर्मिला मातोंडकर जैसे कई नाम शामिल है। और अगर मेल स्टार्स की बात करें तो अनिल कपूर साहब, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, नाना पाटेकर और नसरुद्दीन शाह जैसे बड़े कलाकारों के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की, जहाँ पर वो कभी साइड रोल बनते, कभी मेन लीड बनते, कभी कहते कि हाँ बस मुझे मूवी कर

0: करनी है और इन स्टार्स के साथ काम करना है. कई बार उन्होंने पैसे लिए नहीं, कभी बहुत ज़्यादा मांगे, तो ये शायद जग्गू दादा ही कर सकते थे क्योंकि उनको एहसास था कि स्क्रीन क्या है, मेहनत क्या है. मेहनत के साथ चलते हैं तो क्या क्या ज़िंदगी में मिल पाएगा. बहुत सारे अप एंड डाउन्स के साथ कहीं नहीं रुके, जब जब गिरे तो उन्होंने कहा मुझे उठना आता है. और ऐसे ही बने हमारे जग्गू दादा.
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: 5:44 हो चुके हैं और हम बात कर रहे हैं जैकी श्रॉफ की। इतनी सारी बातें करने का दिल है पर क्या करें, समय की एक लिमिट होती है, बस हम जो एक घंटे में बात कर सकते हैं वही कर सकते हैं। तो फिल्मों से अगर अलग बात करें जैकी श्रॉफ की फैमिली लाइफ की, तो उनकी पत्नी का नाम है आयशा श्रॉफ, उनके दो बच्चे हैं जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ। और आज टाइगर जो हैं बॉलीवुड के जाने पहचाने एक्शन स्टार्स में से शामिल हैं, यानी पापा का स्वैग अपनी जगह और बेटे का अपनी जगह, और मदर जो टाइगर की मामा है यानी कि जैकी श्रॉफ की जो पत्नी है, उनका प्रोडक्शन का जो स्वैग है अपना ही अलग है, क्योंकि प्रोडक्शन में वो इतनी ज़्यादा जा चुकी हैं कि अब उनको रोकना बिल्कुल मतलब अब हाथ में नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी उनकी प्रोडक्शन हाउस जो मूवीज़ बना रहा है, बहुत ही आला दर्जे की उनकी मूवीज़ बनती है। 1989 में जब परिंदा मूवी का जब मूवी बनी थी, तो जैकी श्रॉफ के करियर की बहुत ही खास फिल्म बनी। इस परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। और मज़ेदार नहीं बल्कि बहुत ही प्यारी बात यहाँ पर है कि जब स्टेज पर गए तो छोटा सा टाइगर उनकी गोद में था। इसके बाद 1942 लव स्टोरी और रंगीला में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिले, यानी स्टाइल के पीछे एक्टिंग भी उतनी ही सॉलिड और साथ में पूरे फैमिली का सपोर्ट भी पूरा, कहते हैं ना, जुड़ा हुआ था। और उन्होंने कहा चिंता मत कीजिए, हम आपके पीछे हैं।
2: RM3 Radio.

0: RM3 Radio.
1: चार दशक से ज़्यादा बॉलीवुड में बिताने के बाद भी जैकी श्रॉफ रुके नहीं. लीड हीरो से करेक्टर रोल्स और विलन तक उन्होंने कभी रोल्स की लेंथ को अपनी पहचान नहीं बनाया. और 2026 में वो भी फिल्मों में एक्टिव हैं. फिटनेस हो, योगा हो, फार्मिंग, नेचर से उनका बहुत ज़्यादा लगाव है. कहते हैं उम्र बढ़ती है लेकिन जग्गू दादा की उम्र नहीं बढ़ती. बिड़ू का अंदाज आज भी वही है. मैं थी आपके साथ पूनम. आपने इन्जॉय किया पुराने नगमे, इन्जॉय कीजिए इस गाने को. मुझे दीजिए इजाज़त. इसके बाद आप सुन पाएंगे विस्तार से समाचार.

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बंजन ग्रुप ने 2.5 बिलियन रुपए से ज्यादा रकम में एंजन मॉरिशस की सारी गतिविधियां खरीद ली है। अब से एंजन मॉरिशस के बजाय कंपनी फिलिन के नाम से कार्यरत। प्रधानमंत्री के मुताबिक ईंधन का ये वितरण नेटवर्क 100% मॉरिशन है, जिससे अर्थनीति में उद्योगों के भरोसे की गवाही मिलती है। होम सोलर परियोजना के दूसरे चरण से अंगे तक के 400 परिवारों ने उठाया लाभ। मौके पर मंत्री पत्रिक सियावादन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया। गुलामों की संपत्ति को याद करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय गुलामी संग्रहालय ने ट्रांस इंटरनेशनल पत्रिका का दूसरा संस्करण आम किया। इस बार महिला गुलामों पर जोर दिया गया। विदेश में टिकटॉक को चुकाना पड़ेगा $400 मिलियन। 13 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों की जानकारियां लेने के लिए। अरब समाचार विस्तार से। फिलिन बंजन ग्रुप की नई कंपनी है। उसने 2.5 बिलियन रुपये से ज़्यादा रकम में एंजन मॉरिशस की सारी गतिविधियां और साइंटिस फ्यूल स्टेशन खरीदे हैं। ग्रुप ईंधन को स्टॉक करने की परियोजना में 1 बिलियन रुपये निवेश करने का मकसद रखता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक ईंधन का ये वितरण नेटवर्क 100% मॉरिशन है, जिसके जरिए मॉरिशन भारत और देश की अर्थनीति में उद्योगों के भरोसे की गवाही मिलती है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने बेटामैक्स और मैरीटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल के मामलों पर भी बात की। ज्यादा जानकारी रजनी पीकर के साथ।
1: फिलिन ये भंजन ग्रुप की सहायक कंपनी बेटा ऑयल

0: टर्मिनल लिमिटेड का नया ट्रेडमार्क है। शनिवार की सुबह से पूर्व इंजन की 37 फिलिंग स्टेशनों के लिए नई पहचान। मैंजन ग्रुप ने 2.5 बिलियन रुपए से अधिक की रकम के लिए इंजन द्वारा संचालित फिलिंग स्टेशनों को खरीदा है। इसके अलावा मैंजन ग्रुप ने मॉरिशस में ईंधन भंडारण की राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के वास्ते भी के निवेश निर्धारित किए हैं। मैंजन ग्रुप के CEO विक्रम मैंजन ने कहा, मौजूदा इंजन के पहले ही 37 फिलिंग स्टेशन हैं। इसके साथ साथ स्टोरेज टैंक भी हैं। करीब 35,000 टन की स्टोरेज टैंक्स हैं, चाहे हवाई अड्डे में हो या बंदरगाह में। आज यहाँ टेक ओवर किया है तो देख रहे हैं कि ये काफी नहीं है, क्योंकि आज अगर मॉरिशस के सभी स्टोरेज टैंक को जोड़े तो केवल 4 सप्ताहों के लिए ऑटोनोमी है। ये काफी खतरनाक भी है, इसीलिए 5 अतिरिक्त टैंक्स में निवेश करने के बारे में सोच रही है, जो करीब 25,000 टन है, 1 बिलियन रुपए लगा रहे हैं। भोपाल स्थित लावांचा जीसीक में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम तथा व्यवसाय की दुनिया के अन्य कई महानुभावों की उपस्थिति में इस नए ट्रेडमार्क का अनावरण किया गया। प्रधानमंत्री के अनुसार ईंधन वितरण का ये पहला मॉरिशन नेटवर्क है जो देश की अर्थव्यवस्था में मॉरिशन कंपनियों का विश्वास दोहराता है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने इस बात पर जोर दिया कि अहम सेक्टर में एक प्रमुख उपलब्धि है। उन्होंने कहा,
1: Today's event marks the birth of the first fully Mauritian-owned fuel distribution network.
0: आज की गतिविधि पूर्ण रूप से मॉरिशन फ्यूल वितरण नेटवर्क का जन्म का प्रतीक है। ये काफी महत्वपूर्ण भी है। एक ऐसा सेक्टर है जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफी अहम है। ये एक शक्तिशाली प्रतीक भी है। मॉरिशन ठेकेदारों का विश्वास दर्शाता है, जैसे श्री बंजन को अपने देश पर है। ये दर्शाता है कि स्थानीय उद्योगों के पास न केवल महत्वाकांक्षा है बल्कि आर्थिक ताकत भी है, टेक्निकल विशेषज्ञता और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों के मैनेजरियल क्षमता में सफल निवेश करने की कटिबद्धता भी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बेटामैक्स मामले पर भी बात की, जिसमें मॉरिशस की ओर भेजे जाने वाले पेट्रोल पदार्थ सप्लाई संबंधी कॉन्ट्रैक्ट के रद्द किए जाने के सिलसिले में सरकार को मैंजन ग्रुप के लिए 2021 में 5 बिलियन रुपए से अधिक का निवेश करना पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2023 में मैरिटाइम एंड मर्केंटाइल इंटरनेशनल में करीब 30 बिलियन रुपए के पेट्रोल पदार्थ सप्लाई के एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच का भी उल्लेख किया।
1: I cannot refrain from referring to the persecution of the Banjan Group by the last government.
0: पिछली सरकार की तरफ से बंजन ग्रुप के खिलाफ उठाए गए कदमों की भी चर्चा करना चाहेंगे। अक्सर उसे तंग किया जाता था, उसका अपमान किया जाता, उसके विरुद्ध कदम उठाए जाते। राजनीतिक बदले की भावना थी। पिछली सरकार संबंधी गैर जिम्मेदाराना हरकत से देश की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ गई और इसके परिणाम स्वरूप टैक्स चुकाने वालों को 5 बिलियन रुपए से ज्यादा बेटामैक्स मामले के नुकसान के रूप में चुकाए गए। अब पूरी जनता मर्केंटाइल एंड मैरिटाइम ग्रुप घोटाले को देख रही है। ये 30 बिलियन रुपए से ज्यादा की लागत के कॉन्ट्रैक्ट से संबंध रखता है।
1: The whole population is now witnessing the unfurling of the mercantile and maritime group scam relating to a contract of more than 30 billion rupees by the blatant manipulation of the tendering process.
0: इसके अलावा डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने भारतीय सरकार को भी आभार प्रकट किया, जिसके साथ इसी सप्ताह मॉरिशस में ईंधन मुहैया कराने के लिए एक समझौता तय हुआ है। इस समारोह के दौरान संगीत का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। 2 कलाकारों ने फिलिंग शीर्षक का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।
2: और मंत्री पाथिक कासियावदेन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया है। सीबी एनर्जी सभी रिन्यूएबल ऊर्जाओं की जिम्मेदार संचालन कंपनी होगी। मिसाल के तौर पर फोटोवोल्टाइक पैनल्स के आयात और स्थापना के लिए इसके जरिए होम सोलर प्रोजेक्ट को तेजी से चलाया जा सकेगा। मंत्री पाथिक कासियावदेन आज औंगेटा में थे, जहाँ 400 परिवारों को 2B चरण से फायदा हुआ। इस परियोजना के लिए UNDP और दूसरे साझेदारों की मदद मिली है।

0: ज्यादा जानकारी हम बाद के बुलेटिन में आपको देंगे। कल गांगोब में आजसू और एफसीसी के मिले जुले सहयोग से एक कार्रवाई चलाई गई और मुजफ्फर लाल मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल शक्की मुर्जिम से पूछताछ नहीं की जा रही है क्योंकि वो क्लिनिक में भर्ती है और इस पर ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: शुक्रवार को फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के मुख्यालय लाई गई ये गाड़ियां उसी जगह पर मौजूद थी जहां उसी दिन घोंघुब में मुजफ्फर लाल महमूद को गिरफ्तार किया गया था। मूस के नाम से जाने जाने वाले संदिग्ध इसी गाड़ी से उतर रहे थे, तभी पुलिस अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी के अंदर से अधिकारियों को कुछ मात्रा में गांजा और 45,000 रुपए नकद मिले। जिस अपार्टमेंट में वे रह रहे थे वहां से कोकीन और मेथामफेटामाइन बरामद की गई। घर में मौजूद महेश सुजो नाम के एक व्यक्ति को भी इस कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। उसे आज वीकेंड कोर्ट में पेश किया गया। वहीं मुजफ्फर लाल महमूद को क्लिनिक से छुट्टी मिलने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा जहां वे भर्ती हैं। 32 साल के संदिग्ध जिन्हें चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बताया गया है, फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की उस जांच के सिलसिले में तलाशे जा रहे थे जिसमें कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया है। मुजफ्फर लाल महमूद का पहला भी कानून से सामना हो चुका है। पिछले मार्च में उन्हें एक अन्य मनी लॉन्ड्रिंग की जाँच के सिलसिले में FCC ने गिरफ्तार किया था। ये मामला एक लग्जरी कार की खरीद से जुड़ा था। एक साल पहले भी उन्हें बड़ी मात्रा में नकद पैसों के साथ पकड़ा गया था जिसमें कुछ रकम विदेशी मुद्रा में थी। जहां तक जब्त की गई चार गाड़ियों का सवाल है, उनके खिलाफ संपत्ति वसूल करने की कार्रवाई की जा सकती है।
0: जैसे कि हम बता रहे थे, मंत्री पत्रिका सेवादन ने सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की एक नई शाखा की शुरुआत का ऐलान किया है। CEB एनर्जी सभी रिन्यूएबल ऊर्जाओं की जिम्मेदार संचालन कंपनी होगी। मिसाल के तौर पर फोटोवोल्टाइक पैनल्स की आयात और स्थापना के लिए। इस पर ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: यहाँ अगुएता में NLSD परिसर के हर घर में पहले से ही अपने सौर पैनल लगे हुए हैं। हर घर में 4 सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। इससे 400 परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। ये परिवार हर महीने अपने बिजली के बिल में 400 रुपए से ज्यादा की बचत कर सकेंगे।
2: Solar panel, elle est pas une économie pour nous-mêmes. Quand tu peux rester avant, bien tu peux venir bien cher, plus ou moins 1000 roupies. Tu peux bien être difficile pour nous.
3: Je suis payé l'électricité assez cher, 800, 900. Tout dépend des foyers. Mais quand on est à nouveau là, mais on a quand même une ici. Et là, un congé à police qui va l'indispecter, qui a un peu plus bénéficié, même pas de solaire dans la maison là-haut.
1: होम सोलर परियोजना के जरिए CEB लोगों को देश के ऊर्जा परिवर्तन में ज्यादा भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। CEB के कार्यवाहक महानिदेशक संजय समन कहते हैं,
4: Je pas juste ban bénéficiaire en programme gouvernement. Je aussi ban acteur dans transition énergétique nous pays. Chaque fois, je installation produire électricité grâce à soleil. Je peux aussi aide pour diminuer nos dépendance le ban combustible fossile.
1: इस परियोजना को कई साझेदारों का सहयोग मिल रहा है। इनमें UNDP भी शामिल है जो इस परियोजना के लिए $30 मिलियन की आर्थिक सहायता दे रहा है। इसकी रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव अलका भाटिया कहती हैं,
5: The solar panels that have been installed on your houses prove that the transition to renewable energy is not something out of reach and only for big institutions. It starts on our rooftops, in our communities, and in our everyday life.
1: सरकार हर साल 3,600 घरों में सोलर पैनल्स लगाने का लक्ष्य रखती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मंत्री पत्रिका सेवादेन ने CEB की एक अलग कंपनी बनाने की घोषणा की है।
6: Nous pour créer une subsidiaire CEB qui pour consacrer juste à l'énergie renouvelable. Ce travail, c'est mettre pas nous. Parce que dans les 5 ans, 6 ans à venir, Maurice Bizin au moins a 80 000 lacas inéquipés avec panneaux photovoltaïques. Là, nous en a 12 000 pour l'instant. Mon demande CB qui a partir quelques mois là, prend une mesure pour qu'il y ait un pot de panneaux lui-même.
1: होम सोलर प्रोजेक्ट का उद्देश्य 2035 तक मॉरिशस के ऊर्जा मिशन में रिन्यूएबल ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% करने की देश की योजना का हिस्सा है।
0: गुलामों के व्यापार और संपत्ति को याद करने की

0: राष्ट्र दिवस के एक दिन पहले अंतर्राष्ट्रीय गुलामी संग्रहालय ने ट्रांस इंटरनेशनल पत्रिका का दूसरा संस्करण नाम किया। इस बार महिला गुलामों पर जोर दिया गया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अरियाना मारी ने उल्लेख किया कि वो औरतें में बेनाम जरूर थी लेकिन कि वो औरतें बेनाम ज़रूर थी लेकिन उन्होंने ताकत दिखाई और उपनिवेशन के दौर में मजबूत ढाल की तरह अपनी छाप छोड़ दी है। 12 रबी उल अव्वल को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत के मौके पर हस्बे दस्तूर जश्न किया जाता है। मुशस्मी खुदा के आखिरी नबी की मिलाद 40 से ज़्यादा सालों से सिद्दीकी नस्लों की वजह से और ख़ास है। हर साल की तरह मौलाना शाह अनस सिद्दीकी ईद मिलाद नबी के सिलसिले में आज सुबह मुर्शिद तशरीफ लाएं, हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया।
1: सर शिव सागर बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर मौलाना शाह अनस सिद्दीकी का खैर मकदम किया गया। मंत्री शकील मोहम्मद और कई दूसरे अहले दीन मौजूद थे। अपनी आमद पर उन्होंने फिर से मुर्शिद जैसे छोटे जजीरे में यौमुन नबी के मनाए जाने पर खुशी जाहिर की। एक ऐसा जश्न जो अमन और सॉलिडारिटी से मनाया जाता है।
2: आज तकरीबन 22-23 वर्ष से मैं फ़कीर यहाँ पर हाजिर हो रहा हूँ ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशियों में आपके साथ शिरकत करने के लिए। आज हमारे यहाँ माशाल्लाह हल्का कादरिया इशात इस्लाम में जिस तरह से सुन्नी मदरसा बोर्ड में और जिस तरीके से काम हो रहा है, उसे SNIT में काम हो रहा है, ये सब किस लिए हो रहा है? टू सेव आवर जनरेशन, हमारी नौजवान नस्ल को, हमारे बच्चों को बेहतरीन तालीम तरबियत और उनकी बेहतरीन रहनुमाई के लिए, ताकि हमारी नस्ल बच जाए। और अगर हमारी नस्ल बच गई तो यकीन करें हम अल्लाह ताला के यहाँ सुर्ख रू होंगे कि हमने ज़िंदगी में कुछ किया। अगर हम अपनी औलाद के लिए कुछ ना कर सके तो समझ लें आप कि हमने किसी चीज़ में कुछ नहीं किया। और माशाल्लाह काबिल, मेरा पैगाम में मोहब्बत है। हुजूर का मिलाद मोहब्बत से मनाओ और खुशियाँ मनाओ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी ज़िंदगियों में, दिलों में, घरों में खुशियाँ अता फरमाएगा।
1: मौलाना सिद्दीकी मंगल 25 अगस्त को फिनिक्स के अलीमिया कॉलेज में मिलादुन नबी के ख़ास मेहमान होंगे। वो अपने ठहराव के दौरान दीगर जगहों पर रूहानी प्रोग्राम करेंगे। सिद्दीकी ख़ानदान पिछले 40 से ज़्यादा सालों से मुशरस्मी ईद मिलादुन नबी के मौके पर आ रहा है और आप तीसरी नस्ल हैं।
0: आज शनिवार 22 अगस्त को रोज़ किस गायतों जवाब स्टेडियम में 100 से ज़्यादा दमकल कर्मियों को सम्मानित किया गया। यह समारोह दमकल कर्मी दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। इस समारोह का आयोजन मॉरिशस फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज की तरफ से किया गया था, जहां दमकल कर्मियों की कई सालों की सेवा, उनकी लगन और अच्छे आचरण के लिए उन्हें सम्मान दिया गया।
3: बेडाग वर्दी, एक शानदार ब्रेस बैंड और दमकल कर्मी एक ऐसे दिन के लिए एकत्र हुए जो उन्हें समर्पित था। 100 से ज्यादा दमकल कर्मियों को प्रेसिडेंट्स लॉन्ग सर्विस एंड गुड कंडक्ट मेडल से सम्मानित किया गया। साथ ही इस सम्मान के प्रथम और द्वितीय बार्स भी प्रदान किए गए। अशरफ मोहम्मद बक्सू कहते हैं, आज मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 39 साल तक देश की सेवा की।
4: C'est pendant des longues années au service de la nation, au service de la communauté.
3: ये समारोह भावुकता से भी भरा था, विशेष रूप से दिवंगत दमकल कर्मियों के परिवारों के लिए जो उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। राजकुमार रामरचा की पत्नी प्रतिमा रामरचा कहती हैं, आज हमें गर्व है, उन्होंने देश की सेवा की, चाहे वे आज नहीं हैं, उन्हें याद किया गया, सम्मानित किया गया। ये उन लोगों के साहस और समर्पण को सलाम करने का अवसर था जो अक्सर आपात स्थितियों में जीवन की रक्षा के लिए आगे आते हैं। चीफ फायर ऑफिसर अशोक रामद्यान कहते हैं, हम चाहते हैं कि सभी अफसरों में टीम स्पिरिट हो,

0: अनुशासन हो और किसी भी आपात स्थिति में हम तैयार रहेंगे। इलाकाई प्रशासन मंत्री रंजीव उचित कहते हैं, उपकरण मूल ढांचों में निवेश कर रहे हैं, बजट बढ़ाया गया है। ये सिस्टम यहीं पर नहीं रुकेगी, सभी दमकल कर्मी इस सेवा और देश के विकास में योगदान देते हैं। वर्षों की सेवा, बलिदान और साहस, वे पुरुष और महिलाएं जो हर दिन दूसरों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं।
1: बेहतर रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग करना, आज सुबह मुफ्त में फिनिक्स में मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। ये पहल स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय अभियान के सिलसिले में ली गई, जिसका मकसद जनता को स्क्रीनिंग करने की और सेहतमंद रहने की हिम्मत देना है। देश के कमर्शियल सेंटरों में ये अभियान चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द बीमारी का पता लगाया जा सके और इलाज शुरू किया जाए, क्योंकि मॉरिशस में असंक्रामक बीमारियां सबसे खतरनाक स्वास्थ्य चुनौतियों में शामिल है। विदेश में बच्चों की जानकारियों की रक्षा करने के लिए टिकटॉक को अमेरिकी सरकार को $400 मिलियन चुकाने पड़ेंगे। और ऐप और बाइटडांस ने 13 साल से कम उम्र वाले नाबालिगों की जानकारियां ली थी, जिसकी वजह से टिकटॉक पर मुकदमा चलाया गया। एल नीनो एक प्राकृतिक मौसमी घटना है जो पैसिफिक महासागर में समुद्री पानी के सामान्य से ज़्यादा गर्म होने के कारण होती है। इसका प्रभाव दुनिया के कई हिस्सों के मौसम पर पड़ता है। एल नीनो के दौरान समुद्री सतह का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हवाओं और बारिश के पैटर्न में बदलाव आता है। कुछ देशों में बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ हो सकती है, जबकि कुछ अन्य जगहों पर सूखा और गर्मी बढ़ सकती है। एल नीनो की वजह से अगला साल बहुत कुदरती आफतों के सिलसिले में रहेगा। देश विदेश की खबरों के बाद आइए मौसम का हाल सुनते हैं। हमारे इलाके पर हल्की हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज रात और कल सुबह देश भर में बादल के रहेंगे और रहकर वर्षा होगी, खासकर ऊंचे इलाकों पर और अन्य जगहों पर आसमान साफ रहेगा, खासकर कल सुबह के दौरान। कल दोपहर बाद के समय पश्चिमी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल छाए रहेंगे और रहकर वर्षा होगी। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तथा तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा हल्की एवं सामान्य रहेगी, जो पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। कल सूर्योदय 6:26 पर होगा।

तो इसी के साथ ही समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हम इम्बाओ चीन और लुडोविक का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचारों।

0: नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन की 12:30 बजे कल दिन की 12:30 बजे उनके बेटे श्री विक्रम बुबुआना के घर गनवा स्ट्रीट विलनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लानानियों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 नून। काशीपुर हनुमान मंदिर में काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मीनाजिया रोड काशी में काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मीनाजिया रोड काशी में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री भास्कर प्रसाद देवीदिन श्री भास्कर प्रसाद देवीदिन जो देविन महाराज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 बजे कल दिन के 12:30 बजे उनके बेटे पंडित अरवेश शर्मा देवी दिन के घर काशीपुर हनुमान मंदिर नंबर 120 मीनाजिया रोड काशी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालीन काशी की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 नून। अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में अस्टोरिया रोड गुडलैंड्स में 63 साल की 63 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अमिता चितामन पैदाश नाम जरी और जो अमिता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे कल दिन के 1 बजे उनकी उनके पति श्री मानन चितामन के घर अस्टोरिया रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बाहोश गुडलैंड की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। स्वस्तिका स्ट्रीट पुथोदो हमलेट में स्वस्तिका स्ट्रीट पुथोदो हमलेट में 70 साल की 71 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गर्गी सिबारू श्रीमती गर्गी सिबारू पैदाशी नाम उज गोबी और जो सांता नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे कल दिन के 1 बजे उनके पति श्री विद्यानंद सिबारू के घर स्वस्तिका रोड पुथोदो हमलेट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए स्वीरों स्पीतों की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 1 PM। पेटी शेमिन बेलेर्मी वैसे ये शोक समाचार हमने पढ़ ली है। केवल नगर बेलरीव में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रानी देसी सीबन जो आरती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी सोमवार 24 अगस्त को दिन के 10:30 बजे दिन के 10:30 बजे उनकी माँ श्रीमती चिंता सिपालक के घर केवल नगर बेलरीव से उठाकर दफनाने के लिए थ्वाइलू ओलिविया की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन ऑन मंडे 24 अगस्त एट 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: RM3 Radio.

0: नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 6:38 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ, और मैं हूँ इस समय आपके साथ पूनम। आज मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अपने परिवार में ठीक होंगे, खुश होंगे, और मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं जो हमारा हालचाल पूछते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच जो आप हमारा ख्याल रखते हैं, और उसी तरीके से हमारा दिल करता है आपका ख्याल रखना, चाहे वो मेंटली हो, चाहे आपको कहते हैं कि हम ये चीज़ें खाओ, वो चीज़ें खाओ, चाहे आपकी हेल्थ अच्छी बने। तो चलिए आज बात करते हैं, थोड़ा सा मूड को चेंज करते हैं और आपसे एक सिंपल सी बात पूछती हूँ। क्या जब बाहर आपकी किसी से लड़ाई होती है या झगड़ा होता है या कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, आपका मूड ख़राब होता है, तो क्या आप अपना गुस्सा उनके सामने निकाल पाते हैं या घर पर आकर अपनों के ऊपर निकालते हैं? ऑफिस का प्रेशर होता है या कि ट्रैफिक होता है, या आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या परिवार का कोई ऐसा सदस्य होता है जिसका गुस्सा आपका अपने सिर्फ परिवार वालों पर ही निकलता है, तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है? अगर आपका ऐसा होता है तो मुझे मैसेज कीजिए 5250620 पर, और हम बात करेंगे आज सिर्फ नई सोच में इसी चीज पर।
1: RM3 रेडियो।

0: नई सोच। 6:43 हुए हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ, जहां पे हम गाने ऐसे चलाते हैं कि हो सकता है आप तो बहुत ही प्यार से सुन रहे हो, पर जो न्यू जनरेशन है वो बहुत पुराने गाने नहीं सुनने का दिल कई बार करता है, क्योंकि ऐसा टाइम होता है जहां पर थोड़ी सी मस्ती मजाक हो। तो अगर हमारी बातें थोड़ी सी भी किसी न्यू जनरेशन के कान में चली जाए तो अच्छा होगा कि हमारे जो पुराने मित्र हैं, हमारे पुराने दोस्त हैं, चाहे आपके परिवार के वो ऐसे सदस्य हैं जिनकी बात ज़्यादा सुनी नहीं जाती, शायद उनकी बातों को भी वो सुनना शुरू कर दें। तो चलिए, गाने बहुत ही प्यारे चल रहे हैं यहाँ पर। तो अब मैंने आपसे पूछा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर का गुस्सा घर के लोगों के ऊपर उतारते हैं, तो कई बार आपने भी सोचा होगा कि प्यार से मैं ही पूछ सकती हूँ कि क्या आप भी ऐसा करते हैं, अगर किसी ने बाहर लड़ाई की और घर पर आते ही आप बोलते हो कि भाई, कोई आपसे घर में आके यही पूछता है कि आपका दिन कैसा रहा, और आप बोलते हैं अरे भाई अभी बात मत करो मुझसे और बाद में बात करेंगे, अभी मुझसे मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो, या थोड़ा सा गुस्सा कर देते हैं, तो क्या आपके साथ भी होता है? जो आपका मूड ख़राब होता है इतना ही कह सकते हैं आप कि आज थोड़ा सा मैं टायर्ड हूँ, थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, और ये पहले से ही कोड वर्ड बना लो। आप चाहते हैं जैसे अपनी वाइफ के साथ हो, अपनी मम्मी हो, पापा हो, उनको बोलो कि देखो बाहर मुझे बहुत सारी टेंशंस और प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी मैं ऐसी बात कर दूँ तो ये मत सोचना कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, हो सकता है शायद इस वक्त सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, और एक परिवार की तरह जो सपोर्ट मिल रहा है वो तुम ही दे सकते हो। तो ये कर सकते हैं जिससे कि उनको भी समझ आ जाएगा का थोड़ा सा आपका डे टफ रहा है और आपको उसके अंदर थोड़ा सा हेल्प चाहिए, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश करने के लिए। हो सकता है वो आपको चाय पूछ लें, हो सकता है आपको कुछ ऐसा खाने को दे दें जो आपकी पसंद का है, हो सकता है कुछ ऐसा क्विक में कुछ कह दें, बट अगर उन्हें आप बताएंगे ही नहीं कभी कि अगर मैं इस तरीके से रिएक्ट करूं, या लेडीज़ भी करें, तो क्या मतलब है इसका? तो आप एक कोड वर्ड रख लीजिए, अगर मेरा ऐसा रिस्पॉन्स रहे या मेरी ऐसा कोई रिप्लाई रहे तो प्लीज़ समझ जाना आज कुछ बाहर हुआ है। तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए जिससे आपके घर में भी बड़ा प्यारे से संबंध रहेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। इंजॉय कीजिए अपना गाना।
1: RM3 Radio.

नई सोच 6:50 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपनी ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। और आज हम बात कर रहे हैं कि अगर कहीं बाहर गुस्सा कोई हो जाए तो क्या हम उसको उस गुस्से को अपने घर पर आकर अपने लोगों पर उतारते हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा कई बार हम ऐसा ही करते हैं और ये सिर्फ घर पर नहीं होता, ये कई बार बॉस के साथ होता है। क्योंकि देखिए, सबका कोई ना कोई बॉस ज़रूर होता है जो लोग काम करते हैं, और ऐसा कोई नहीं है आज की डेट में जो काम ना करता हो। चाहे वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, दोनों की ही लाइफ में बॉस ज़रूर होता है। और कई बार बॉस हमें किसी बात पे झगड़ लेते हैं, गुस्सा कर देते हैं, पर हम वो उनका जो गुस्सा है सिर्फ अपने घर के लोगों के ऊपर नहीं उतारते। कई बार हम वही चिड़चिड़ाहट, जैसे ही बॉस ने कुछ कहा, हम अपने कलीग्स के ऊपर कह देते हैं और नाक चढ़ाते हैं कि अरे देखो, इसको तो इतना समझ नहीं है, उसने मुझे ऐसे कह दिया। बट बॉस ने अगर आपको कुछ कही है तो फिर कई बार हम कलीग्स पे भी अपना गुस्सा नहीं उतार पाते, क्योंकि हमें पता है कि वो नाराज़ हो जाएंगे। और वही गुस्सा आकर हम अपने घर के परिवारों के सदस्यों के ऊपर उतारते हैं, क्योंकि पता है कि यहाँ पर हमारा कहते हैं ना कुछ चलने वाला नहीं है। और वो बड़े होते हैं तो वो वापस रिटर्न हमको गुस्सा कर सकते हैं, और कई बार वो कुछ नहीं कहते सिर्फ इसीलिए कि ये बाहर से आया है या आई है, काम कर कर आई है। तो ऐसा जो रूखा बिहेवियर है उसको हम यही चाहते हैं कि उसको इतनी बड़ी घर के लोगों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। बस आप अपना मूड को थोड़ा सा हल्का रखा करें जब आते हैं, तो हो सकता है आप डिस्कस ज़रूर अपनी वाइफ से करें, अपने हस्बैंड से करें, बट जो बुज़ुर्ग पेरेंट्स हैं उस पर ना करें, क्योंकि उनके ऊपर वैसे ही हेल्थ के इश्यूज़ कई बार होते हैं, हार्ट के इश्यूज़, हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। तो आप जब घर में एंटर करें उससे पहले ही चाहें अपनी वाइफ को कॉल करें, हस्बैंड को कॉल करें, या किसी अपने ऐसे दोस्त को फ़ोन करें जो समझ सकता है आपके ऑफिस की सिचुएशन, और आप अपने मूड को थोड़ा सा ज़रूर संभालें, क्योंकि उसके इफ़ेक्ट्स तो आपको तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आपके घर के परिवार के सदस्यों में पड़ेंगे, और उसका इफ़ेक्ट जो होगा उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी या उनकी दवाइयों पर। तो हम यही चाहते कि आपके साथ कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन घटे तो हम हमेशा हल्का रहिए। इंजॉय कीजिए अपने गाने को। RM3 Radio.

0: नई सोच। 6:56 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम नई सोच के साथ में, और हम आपको बस यही बोल रहे हैं कि एक आदत जरूर ट्राई कीजिए, जब बहुत गुस्सा हो तो तुरंत जवाब मत दीजिए, थोड़ा सा पानी पीजिए, कुछ देर शांत रहिए, अपनी पसंद का कोई गाना सुनिए, बाहर घर से बाहर निकल जाइए, या घर में जब आप एंटर कर रहे हैं उससे पहले ही अपने उस मैटर को सॉल्व करके ही घर में एंटर कीजिए, क्योंकि जब आप आएंगे गुस्से के साथ तो गुस्से को साथ ही लेकर आएंगे और जो आपके परिवार वाले हैं उन पर गुस्सा उतरेगा। तो आपने तो वो शब्द बोल दिए बट उसके बाद जो उसका इफेक्ट रहेगा बहुत देर तक याद रहेगा। तो दोस्तों, बाहर का स्ट्रेस सिर्फ बाहर ही छोड़ने का, घर पे लाने का नहीं, क्योंकि घर वाले आपकी परेशानी समझ सकते हैं बट आपकी परेशानी नहीं है, आपके अपने हैं। और कभी मूड खराब हो जाए तो बस कह दीजिए आज थोड़ा सा परेशान हूँ, थोड़ा सा वक्त दे दो। इसका हमने आपको टिप दे ही दिया है कि आप पहले से ही अपने परिवार के साथ ये कोड वर्ड ज़रूर शेयर कर लीजिए। नई सोच में बस सिर्फ इतना ही, मैं आती आपके साथ पूनम, फिर हम नई सोच में अगले हफ्ते मिलेंगे, बट उससे पहले आपको इतना ही कहेंगे कि इसके बाद दलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे और हम एक घंटा टिकटॉक पे रहेंगे, उसके बाद आपके यहाँ पे प्रोग्राम्स के गाने और आपके मैसेजेस जरूर लेंगे। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस गाने को।
1: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज
1: की आवाज। नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 7:10 हो चुके हैं और इस समय जो लोगों ने रफ्तार पकड़ी है उसको थोड़ा सा थामते हैं, क्योंकि चलेंगे हम पुराने गानों के साथ, जहां पर बहुत ही मोहब्बत से हम एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करके लाए हैं जहां पे बात होगी रफ़ी साहब के गानों की, लता मंगेशकर, आशा भोसले और लगातार जितने भी सिंगर्स आए हैं आज तक, हम उनके सभी के गाने चलाएँगे और आपकी पसंद के भी गाने चलाएँगे। अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप कर सकते हैं 5250-6200 पर, और साथ में आपकी पसंद के साथ में आपके एहसास जो होंगे जुड़े आपके मैसेजेस के साथ, तो आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं किसके नाम पे वो गाना चलेगा तो बिल्कुल हम चलाएंगे। साथ में आज हम टिकटॉक पे भी जुड़े हुए हैं, साथ दे रहे हैं आपका, और आप सभी जो दोस्त हमारे साथ इस समय जुड़े हैं पहली बार टिकटॉक में मेरे साथ यानी कि पूनम के साथ, तो इन्जॉय कीजिए गानों को और आप हमारी प्यारी सी मोहब्बत को, और आप सब जो हमें इतना प्यार और इतना विश्वास और इतनी मोहब्बत देते हैं उसके लिए, सब के लिए हम आपको कहेंगे थैंक यू। और सभी का स्वागत है आप ही के प्रोग्राम दिलों की आवाज़, जहाँ पे चलेंगे पुराने गानों के साथ शुरुआत होगी और चलेंगे उसके बाद 90s तक। तो अपने मैसेजेस करना बिल्कुल मत भूलिए 5250-6200 के साथ।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: आप सभी का स्वागत है दिलों की आवाज़ प्रोग्राम में। 7:23 हो गए और बहुत ही प्यारा सा दिन है हमारा। चाहे हमें कह लें यहाँ पर तो रात है मॉरिशस में, पर हमारे साथ इस समय बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, जो कि टिकटॉक के थ्रू है। तो हम तो चाह रहे हैं कुछ पसंद के गाने उनके लिए भी चलाएं और कुछ पसंद के गाने आपके लिए भी चलाएं। तो पहला घंटा उन सब के नाम जो इस समय बाहर देशों से भी जुड़े हुए हैं और साथ में आप मॉरिशस से भी जो जुड़े हुए हैं। इस समय हमारा साथ दे रही हैं जेवीना, कृष्णा, ललित जी साथ दे रहे हैं, यूएसए से परी जी एंड उषा, मीरा, स्वेनल, देवान, नंदीवाला, वैनकूवर कनाडा से साथ दे रहे हैं, गुलशन जी हमारे मॉरिशस वाले, यस हम कैसे भूल सकते हैं आपको। साथ में भारती जी भी जुड़ी हुई हैं, फिया जी, इंद्रा एंड प्रकाश जी, संध्या एंड विकेश जी जो कि कनाडा से साथ दे रहे हैं, मयूरी, वर्षा, सल्फरिनो से प्रकाश जी और उनकी वाइफ मेधा जी, बहुत प्यार प्यार आपको हमारी तरफ से और हमारे इस प्रोग्राम को इंजॉय करने के लिए। पर आपको सिर्फ इतना ही कहते हैं, जब पुराने गाने चलते हैं ना तो जो खाना खा रहे हो वो अपने आप ऐसा डाइजेस्ट होता है कि ऐसे लगता है जैसे आत्मा में घुल रहा हो खाना। तो भाई ये गाने हैं ही ऐसे जिसको आपको मूड तो बनाना है, साथ में आपका एहसास भी जगाना है कि जो रात है ना बहुत ही स्पेशल होती है। अगर आप सुबह से थके हुए हैं तो ये टाइम आपका है, थोड़ा सा 2-3 मिनट 4 मिनट अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, क्योंकि सैटरडे का दिन है। कई लोग इस समय कहीं ऐसी जगह पे जा रहे होंगे जहाँ पे भाई सिर्फ सुकून चाहिए, तो आप बाहर जाने की जगह हमारे इसी प्रोग्राम में साथ जुड़े रहिए, इंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़ की आवाज़ दिलों की आवाज़।
1: 7:34 हो चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे थे अभी मुकेश की आवाज़ में राम करे ऐसा हो जाए। क्या गाना है, सभी के लिए ब्लेसिंग्स ही है इस गाने में और हम तो यही कहेंगे, हम भी विशेस करते हैं आप सबके लिए जो इस समय घर से बाहर निकल चुके हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, हो सकता है कोई पार्टी हो या कोई ऐसी मीटिंग हो या कोई ऐसे दोस्तों से मिलना हो, परिवार से मिलना हो, जहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना सुकून चाहिए, तो आप सुकून के लिए जा रहे हैं तो हंसते मुस्कुराते जाइए, फूलों के साथ जाइए और फूल लेते हुए आइए। भले वो आपको गुलदस्ता ना दे, हमारी तरफ से तो गुलदस्ता ही है, पर हो सकता है वो सिर्फ आपको एक प्यारी सी स्माइल दे दें और कहें भाई जहाँ जा रहे हो हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर आए। तो कई लोग इस समय वापस आ रहे होंगे तो उन सभी को कहेंगे रास्ता आपका है, प्यार आपका है, गाने आपके हैं और आपके साथ में जो बैठे हैं परिवार आपका है, तो बस आराम से गाड़ी चलाएं, बिल्कुल आराम से धीमे धीमे चलाएं, कोई जल्दी नहीं है, सैटरडे का दिन है, किस लिए जल्दी करनी है, भागना किस बात के लिए, हर वक्त भागना अच्छा नहीं होता, तो इन्जॉय कीजिए गानों को। साथ में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस समय एज एज साथ जुड़े हुए हैं, साथ में शीला बिको जी साथ में जुड़ी हुई है और एक बहुत ही प्यारा नाम है तहजीब जी साथ दे रही हैं, लेडी जैगवार, आयशा, अशोक मुंगर, दासी, अफीजा, फिज फेज, बी आर वेदना कथबोन से साथ दे रहे हैं और ललित जी साथ दे रहे हैं यूएसए से और बहुत ही प्यारे गानों की फरमाइश कर रहे हैं। सभी के लिए बहुत सारे गाने हमारी लिस्ट में हैं, पर इस समय हम जुड़े हुए हैं ये 1 आवर टिकटॉक के साथ और इसके 1 आवर जुड़ेंगे आपके फ़ोन कॉल्स और आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ। हम आपको इतना ही कहते हैं, गाने इंजॉय कीजिए, थोड़ा सा मूड रिफ्रेश कीजिए और गानों के साथ जुड़े रहिए।
2: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज़
1: दिलों की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। 7:45 हो चुके हैं और भागम भाग टाइम चल रहा है। आई डोंट नो क्यों चला जाता है जब हम ऐसे गाने चलाते हैं जहाँ पे हमारा दिल जुड़ा होता है, जहाँ पे हमारी रूह जुड़ी होती है, और वहाँ पे टाइम कहता है अरे चलो भाई चलो जल्दी जल्दी भागना है। तो भागिए मत, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है नंदा जी, जो कि अपने 3 बेटों के साथ, बेटी के साथ और हस्बैंड के साथ एक प्यारे से गाने की फरमाइश की थी, तो गणेश परिवार के लिए और पुनीता फैमिली के लिए, तो हम उनका गाना ज़रूर चलाएंगे। उसके साथ में आज टिकटॉक पे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, समायरा हुसैन, जावेद पटेल, संध्या डीटी, सानवी सोनाक्षी सोनाली और कवि प्रसाद मोहन, सुनंदा, राज शर्मिला, मीता एंड राम, सेतुल जी, ऋषि राम प्रसाद और राज यानी कि राजा जी। तो हम तो सभी को कहेंगे इंजॉय कीजिए अपने गानों को। साथ में आपको हम यही कहेंगे कि अगर आपको कोई मैसेज करना है तो हमारे को आप मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर, जहाँ पे हम चलाएंगे आपकी पसंद के गाने। पर अगर इस समय आप सैटरडे का दिन है और किसी को याद कर रहे हैं बहुत शिद्दत से, तो आपको सिर्फ उनको एक प्यारा सा मैसेज करना है, हेलो जी आप कैसे हैं, ठीक है। तो ये जब मैसेज जाता है ना, तो उस इंसान को एहसास होता है कि आप उसको किसी इंपॉर्टेंट टाइम में भी बहुत मिस कर रहे हैं। तो इन्जॉय कीजिए गानों के साथ में, और गानों के साथ में वो यादों को भी याद कीजिए जो कभी आपने बनाई थी किसी अपने के साथ। तो ये गाना आप सबके लिए।
0: RM3 Radio.

0: करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: ये सॉन्ग स्पेशली हमारे जाएगा कौन दोस्त जो किचन टीम है उनके लिए स्पेशली, और इसके साथ साथ जाएगा मामा माला लीना अंजू एंड ललित जी की वाइफ के लिए।

0: दिलों की आवाज।
1: 8:06 हो चुके हैं दोस्तों, आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज के साथ और मैं इस समय आपके साथ हूँ पूनम। तो बहुत सारे गानों के साथ में हम चले आते हैं आपका मूड बनाने के लिए। इस समय आप सुन रहे थे अभी आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में, और सुनील दत्त साहब और रेखा जी की जो सुनील दत्त साहब की पर्सनैलिटी और रेखा जी का जो चार्म था, वो अलग ही बनता था। किसी नॉर्मली कहते हैं ना कि उनकी जो पर्सनैलिटी है एक दूसरे को इतनी खतरनाक मैच करती थी, और उसके ऊपर ये वाला गाना बहुत ही खूबसूरत था। इन्जॉय कीजिए अपने गानों को और अपने पसंद के गानों को। कहते हैं ना कि जब आपको पसंद के गाने चल जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शहनाज जी, शारदा जी, डैड विजय जी, उनकी बिटिया ने उनके लिए गाना मांगा है। याजना यति के लिए संजीव जी साथ दे रहे हैं USA से, और एक ब्यूटीफुल सॉन्ग की फरमाइश की है, बिल्कुल हम चलाएंगे। रिहाना जी साथ दे रही हैं, बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है। चांदनी पुरुषोत्तम जी कविता मोचिदा से, और साथ में बहुत सारे लोग और भी जुड़े हैं। हमने अभी टिकटॉक तो बंद कर दिया क्योंकि हमें पता है कि आप फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप के थ्रू अपने गाने मांग रहे हैं, तो बिल्कुल हम चलाएंगे। अब आप कॉल कर सकते हैं, अभी लाइंस हमने खोल दिए हैं। इन्जॉय कीजिए अपने गानों को।
0: RM3 Radio.

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:19 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ में, और इस समय आपका साथ दे रही है पूनम। और मुझे पता है आप सभी जो इतने एक्साइटेड होते हैं इस प्रोग्राम के लिए कि दिलों की आवाज़ सैटरडे को चलेगा, वहाँ पे चलते हैं पुराने गाने, फिर लास्ट में हम चलाते हैं थोड़े से ऐसे जो गाने आपको सुकून के साथ थोड़ी सी मस्ती भी देते हैं, जिससे आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर रेस्ट करते हैं और सोते हैं। और इस समय कई लोग ऐसे होते हैं जो आज से ही, मतलब सैटरडे नाइट से ही प्लानिंग करने लग जाते हैं मंडे की, तो आप बिल्कुल टच मत करो कि मंडे को क्या क्या करना है। आप भले संडे मॉर्निंग से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सैटरडे जो है ना ये आपका अपना है, इसको एटलीस्ट अपने लिए रखिए। इसमें कोई काम नहीं, इसमें कोई प्लानिंग नहीं, इसमें सिर्फ रेस्ट चाहिए, थोड़ा सा मूड को पैम्पर करना है, अपने परिवार के लिए दीजिए, अपने लिए दीजिए। कुछ शॉपिंग करके आए हैं उसको थोड़ा सा निहारो, थोड़ा सा देखो। लोग कई लोग ड्राइव करते हैं, इतनी इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर आते हैं और बस भागते हैं। अरे उस गाड़ी में जहाँ पे जिसमें बैठे हुए उसको इंजॉय करो, इतना पैसा आपने खर्चा किया है पर आपको क्यों भागना है? तो भागिए मत, हर चीज़ के लिए भागने की ज़रूरत नहीं होती। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और गानों को इन्जॉय कीजिए। अपने थोड़े से अपने खुद के मूड को भी थोड़ा सा इन्जॉय करना चाहिए। तो इस समय हमारे साथ साथ दे रहे हैं बाबू अनंतवा जी, और बहुत ही प्यारे से गाने की फरमाइश की थी और हमने चला दी। किशोर कुमार की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त बीना जी, उमा जी, सीमा जी, और साथ में हमारे और बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं उनको पसंद आ रहे हैं पुराने गाने। साथ में एक प्यारा सा गाने की फरमाइश की है देवयानी जी ने, और कह रही हैं बस गाने का किसी भी गाने के साथ नाम जोड़ दीजिए क्योंकि गाने उनकी सभी पसंद के हैं। साथ में बीना जी के साथ में अभी एक और हमारी दोस्त जुड़े हुए हैं जो सिर्फ इतना कह रही हैं कि मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं कर रहा किचन में जाने का, गाने बहुत अच्छे चल रहे हैं और मेरा रेडियो बहुत दूर है, तो मैं बैठी हुई हूं यहां पर और गानों के साथ साथ अपनी चाय को एंजॉय कर रही हूं और बाद में डिनर देखूंगी। क्या बात है भाई, डिनर भी साथ साथ कर लीजिए, क्या टेंशन है। और पर फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको गाने सुन के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो एंजॉय कीजिए अपने गानों को।
0: RM3 Radio.

0: कमाल है दीपा, मुझे वहाँ अकेले छोड़ के चली क्यों आई?
1: क्यों, अच्छे खासे तो थे वहाँ, अब मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचान गई।
0: मैंने क्या किया?
1: उसका हाथ पकड़ते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई?
0: मैंने कहा उसका हाथ पकड़ा, उसने मेरा हाथ पकड़ा था।
1: बात एक ही हुई, अपना हाथ छुड़ा तो सकते थे, तुम्हें बढ़ावा दिया तभी ना उसकी हिम्मत पड़ी।
0: अरे हद है भाई, मैंने क्यों बढ़ावा दिया उसको, तुम सामने ही तो थी।
1: हाँ, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ना, सब मर्द एक जैसे होते हैं, कोई सुंदर सी लड़की देखी और पिघल पड़े, और गाना भी क्या चुन के सुनाया, रात कली ख्वाब में आई, कोई भजन वजन नहीं सुना सकते थे क्या?
0: अरे सुनो तो सही, दरअसल ये गाना मैंने तुम्हारे बारे में लिखा है।
1: मेरे बारे में?
0: हाँ, रात कली यानी तुम ही तो रात को हमारे लिए दरवाजा खोलती हो, तुम्हारे एक ख्वाब देखता हूँ और सुबह होते ही तुम्हें से आंखें चार होती हैं, है ना?
1: हटो चापलूस कहीं के।
0: सच दीपा, तुम्हारे लिए लिखा है, सुनो ना, सुनते ही समझ जाओगी। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
1: वाह वाह वाह वाह वा। उसके लिए तो जनाब सुर में गा रहे थे, और यहाँ रात कली एक ख्वाब में आई

0: दिलों की आवाज की
1: आवाज 8:36 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हैं अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ। और इस समय मैं हूं आपके साथ पूनम। श्रवण मास में कांवड़ उठाकर ढोल की तरंगों के साथ जो भोलेनाथ की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी आत्मा को परमात्मा से यूं ही जोड़ते रहिए। हम सभी को बोलते हैं हर हर महादेव, हर हर भोले बाबा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार, जो इस समय श्रवण मास की तरफ और गंगा तलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। और ग्लेन पार्क साइड जो है वहाँ पर बहुत सारे कांवड़ हैं और बहुत सारा गंगा तालाब में खाना है। सभी लोग बहुत खुश हो रहे हैं। हल्की हल्की बारिश भी है, थोड़ा से बादल भी, कहते हैं ना कि जो प्यार मोहब्बत दे रहे होते हैं वो कहते हैं कि चलो बूंदों के साथ ही बस आपको प्यार देंगे। तो इस समय हमारे साथ स्पेनल जुड़ी हुई हैं, साथ दे रही हैं ब्रह्मस्थान से नव युवक संघ, जो बॉयज़ हैं वो सभी कांवड़ को लेके जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि आप भोले बाबा का एक गाना ज़रूर चलाइए, तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। साथ में गायत्री जुड़ी हुई, गायत्री जी साथ दे रही हैं और कह रही हैं कि राखी आने वाली है और मैं सभी को कहती हूँ हैप्पी राखी। और जिनके भाई हैं तो उनको बहुत सारी बहनें प्यार दें, और जिनके भाई इस दुनिया में नहीं हैं या बहुत किसी दूसरी कंट्री में हैं उनको भी मैं इतना ही कहूँगी कि उनको यादों में बसाए रखें, उनको प्यार दीजिए। और यही तो भाई बहन का रिश्ता होता है जो कि मोहब्बत के साथ जुड़ा होता है। तो हम आप सभी को कहेंगे थैंक यू सो मच। इस समय हमारा साथ दे रहे हैं गुलशन जी, जो कि एक पहले से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। गुलशन जी सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि वो अपनी जो इस समय गंगा तालाब की तरफ जा रहे हैं जो शिव डिवोटीज हैं उनको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि सब आपको बहुत प्यार करते हैं, पर गंगा माँ का प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गंगा माँ का प्यार मिल जाए तो हर चीज़ आसान हो जाती है। तो पानी की एक बूंद हो चाहे गंगा माँ हो, एक ही चीज़ है। तो थैंक यू सो मच आप सबका इतना साथ देने के लिए और इन प्यारे प्यारे गानों की फरमाइश के लिए। तो हम सभी के गाने एक एक करके चलाने वाले हैं। अभी है हमारे पास कुछ मिनट, एक गाना और ले सकते हैं, जिसको भी कॉल करना है साथ जुड़े रहिए।
0: RM3 Radio

0: दिलों की आवाज,
1: आठ बजकर 52 मिनट हो चुके हैं और आप जुड़े हुए थे अपने ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़, और मैं थी आपके साथ पूनम। तो आज की शाम यहीं तक आपका साथ रहा, गीत चलते रहे, बातें भी दिल से होती रही। बस अपनों का ख्याल रखिएगा, खुद का ख्याल रखिएगा, वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा और टेंशन नहीं लेनी है, बाकी सब कुछ करना है। कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेनी, यस बिल्कुल ऐसे ही कीजिएगा। आखिरी गाना आपको पसंद है, पता है कि मैं अपनी पसंद का चलाती हूँ, तो मेरी तरफ आप सबके लिए और ये प्यारा सा गाना काजल मूवी का मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सबके लिए, एंजॉय कीजिएगा एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।
0: RM3 रेडियो।

0: Mauritius.
1: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
0: Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius. भोजपुरी तड़का.
2: आज की रात रत्ना के संगे MBC रेडियो पर.
1: भोजपुरी तड़का.
3: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमार सब कोई श्रोता लोगन के स्वागत बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर. रत्ना के सप्रेम नमस्कार स्वीकार कर लेजा. अभी से लेके रात के 11 बजे ले आप सबको एक मनोरंजन करे खातिर बढ़िया बढ़िया भोजपुरी गीत संगे आप सबको एक साथ देव जा अभी से लेके तो जुड़ जाइए हमनी के संगे 4028085 पर और मजेदार कार्यक्रम संगे हाईजा पर हमनी के साथ देवत हवन पूनम जे अभी थोड़ा घड़ी पहला तो हर साथ देलन रेडियो मनोरंजन पर. तो चला होकर खातिन एगो बढ़िया गीत संगे आज के कार्यक्रम के शुरुआत करब जा और मजेदार कार्यक्रम के जरूर सुनिया जा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर. और राजा बंधु के आवाज में रखल आज के हई पहला गीत के साथ करब जा एगो धमाकेदार शुरुआत.

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के संगे संगे जितना कोई हमने के अभी साथ देवत हवन बस साथ देते रहिए जा बहुत मजेदार कार्यक्रम और ऐसा ठंडा ठंडा मौसम में गर्मा गर्म गीतवा जब बजेला ते एगो दूसर कलिते के ऊर्जा चलावेला। और आज के कार्यक्रम तो चली रात के 11 बजे ले, वैसे तो रोज चलेला रात के 9 बजे से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। और जब तू साथ देवेला तो हई कार्यक्रम में और भी चार चांद लग जाला। तो चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ अब जाओ। और आज हमनी के संगे प्यारी सुनीता जी भी जुड़ गल हवन गांव गो बगल से।

और उनकर प्यारी बहिन कोंगो माँ से विमला जी उतना बेसब्री से हमर कार्यक्रम के इंतजार करत हुआ। चलो विमला जी तो नाम भी बहुत प्यार से जोड़ देवत हई और हईजा पर हमनी के गांव गोब से अमृता जी भी जुड़ गल हवन और गुडलैंड बगल से वीना जी भी प्यार से साथ देवत हवन। तो हई अगला गीत तोहरो खातिन चलावब जा साथ देवत हवन भाई आबू और आफेज वाकवा बगल से और उनका सब परिवार असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और साथ देवत हवन उनकर खास संगतिया आपी और उनकर पत्नी और उनकर एगो भगिनी हवन रकीबा जे तनी मलाद हवन। तो चला दुआ करब जा कि वो अच्छा हो जाए और ऊपर वाला ओकरा बहुत शक्ति दे हिम्मत दे। और भाई आबू हमने के बोले विक्रम कोलाचन के है गीतवा तनिक चला दा धोती पोथी पगड़ी वो बहुत खुशी रहेलन है गीत सुने के। तो चला हंसते मुस्कुराते संगे सुनब जा है गीत और हमर चाचा और चाची के किस्सा तक का बोलब जाने ल हमर चाची चचा से बोले जाने ल तू बहुत किस्मत होला हवा कि तोरा हमनी नियर पत्नी मिलल बा आउरी कौनो दूसर मिल जात हमनी जैसे जस्ती तेज तड़ाक तब देखा तोहर जिंदगी कैसे चलत। तो चाचा बोले हाँ तोहर से भी जस्ती तेज तड़ाक कोनो रहल रहल बा अब हम कैसे जानब हो भगवान तोहर से भी जस्ती कोनो तेज तड़ाक के बना दिले हव तोहर से जस्ती कोनो ऐसन मॉडल मिली बाजार में

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम बहुत ही मजेदार बहुत ही लाजवाब कार्यक्रम का है कि हैजा पर तू अपन पसंदीदा गीत हमनी के बोलेलन चलावे के और हम बहुत ही प्यार से खुशी रहिला तोहर संगे संगे है गीत के आनंद उठावे के। तो चला आज के कार्यक्रम में हमनी के साथ देवत हवन बसंती जी बास हैं बगल से और ही वाकवा बगल से जुड़गल हवन फूलवंती जी उनकर बेटा हवन उषण बेटी भावना पति हवन देवानंद और सब कोई परिवार संगे उस साथ देवत हवन और हैजा पर गायत्री जी हमनी के साथ जुड़गल हवन पिचवेश पियसे और बोले हमनी के है गीतवा तनी चढ़ा चला द हमर खातिन हे गंगा मैया तोहरे पियरी चढ़ेबो और है जोन गीत है जोन ओरिजिनल गीत लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के आवाज में लिखल गल बाते गावल गल बाते और बहुत ही मजेदार गीत संगे है गीतवा अभी थोड़ा घड़ी में चलाओ अब जा उनकर खातिन और ये जाने ल है गीतवा हमनी के मोरिस के स्थानीय कलाकार भी बहुत ही

बाजार से गईले होवन पर चला तोहर खातिन तोहर पसंदीदा गीत चलाओ अब जा तोहर पसंद पे औरी है जोन गीत है तोहर बहिन अमृता खातिन तोर तोहर भौजी हवन मीरा खातिन और तोहर भगिनी हवन नेहा क्षिति दिव्या गिरिशा और मेधा और भगिना हवन सुधीर और कमलेश और पतो हवन सुधा तो चला सब परिवार खातिन चलाओ अब जा है गीत और हमर चाची और चाचा के तक किस्सा सुनते चला हो हमर चाची और चाचा जाने ल हमर चाची जब गाल बजावेला और चाचा का जानी कहाँ कहाँ से शायरी खोज के बोल देवेला और ऐसे बतवा बोल देवेला कि चाची जोन है नारिया के खिसिया जाला चाचा कौन दिन लगल अपन बेसुरा आवाज में गीत गावे जे शादी ना करिए तनहाई से मर जाइब जे शादी नहीं करिए तनहाई से मर जाइब और जे शादी कर लेब त मेहरारू संगे जीते जीते मर जाइब का हो चाचा ऐसन गीत को गात हो देखा ऐसन बढ़िया बढ़िया गीत तोहर खातिर हम लेके आल हई सुना तनी भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में

0: बढ़िया बढ़िया गीत सुनत हवन आउरी टेलीफोन पे इतना प्यार से हमनी के चाची नानी दादी लोग हमनी के संगे बतियात हवन तो बहुत बस हमनी के साथ देते रहिए जा ऐसने। और अभी हैजा पर विश्वानी दुमन जी भी हमनी के साथ जुड़ गल हवन वाकवा वाकवा देने से और ही बहुत प्यार से हमनी के बोले तनी हमर खातिन चला दा दादा के पोसल पासल ललका चिड़ैया। और जो है गीत है ना विश्वानी जी है अभयदानंद बीजन के आवाज में रखल गीत है बहुत मजेदार गीत और इंदिरा शारदा तोहर बहिन लोग और सखी हवन नीला और प्रतिभा साथ देवत हवन शोभा जी और गीता गजादर और सब कोई जितना सुनत हवन सब कोई खातिन है गीतवा चलाओ अब जा। और हमनी के प्यारी चाची और चचा का बोलब हमर चाची जाने ल कौन दिन अपन एगो एप्लीकेशन कर लन लिसेंस खातिन तो चचा एक कुछ खिसिया के बोले कौन चीज कर देलक बुढ़िया बोले का होल बोले हाँ एप्लीकेशन कर देलक लिसेंस के तो बोले हाँ कर ले हाँ बोले अनपढ़ के अनपढ़ रहबे बोले का है बोले कौन चीज के लिसेंस के एप्लीकेशन कर ले हवा लिसेंस कोंजरे करे के बोले नहीं तो बोले तो कौन चीज के बंदूक के तू लिसेंस के एप्लीकेशन कर दे ले हवा तो बोले हाँ जानी ला बंदूक के कर ले हाँ तो बोले तू तो अनपढ़ हो गल हवा पगली हो गल हवा बंदूक के काहे तू एप्लीकेशन कर दे ले हवा बोले नहीं जानबूझ के न कर ले हाँ जान के कर ले हाँ जानी ला हम काहे हम बंदूक के एप्लीकेशन कर ले हैं जैसन हालात बा घर के जैसन अभी तू करत हवा तांडव हमनी के नचावत हवा हवे से हम एप्लीकेशन कर दे ले है एगो बंदूक रखब अब घर में हमनी के संगे है हमर सिक्योरिटी खातिर बंदूक के एगो एप्लीकेशन कर ले है। तो चचा बोले हमनी से कोनो गलती हो गल बा का हमर रानी बोले देखा बंदूक जब चलाई तब बतियाब तोहर संगे तो चचा बोले देखा देखा बुढ़िया तोहरा बहुत प्यार से हम बोलत हैं जे फजीर के भूल जाला सांझ के लौट के घरे चले आओ चलावेला ओकरा भूला नहीं बोलल जाला बुढ़िया हमर रानी हमर गाते कोको। तो चाची बोले देखा हाय जन कहावत है ना हाय बहुत पुराना हो गल बा हमनी के हाय सब अभी मक्खन नहीं लगावा हमनी के समझ गई ल बोले काहे तो ऐसे खिसियात हव हमर प्यारी बुढ़िया का पीब बोलता तनी तोहर तोहर खातिन पानी लेके आई तोहर खातिन गर्मा गर्म चाय बना दे काहे तू तो दो तीन दिन से तोहर मूड तनी जस्ती खराब रहे नहीं करे के चाहिए ला इतना खीस हमर बुढ़िया हमर बहुत रानी तोरा दिल के रानी बना के रखब बोले हाँ पतलून गीला हो गल तोहर
1: दादा के पोसल पासल ललका चिरैया दादा के पोसल पासल

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: उमेश दाऊ की आवाज में रखल हाई बढ़िया गीत रहल और जिले जिले बस जीवन जिए के चाहिला, हंसते रहे के चाहिला और तनाव दूर भगाए खातिन हमनी के चुटकुला सुनते रह। चला आज के कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिन अगला गीत जन है गीता राधे की सुन खातिन, अंजू खातिन, उनकर परिवार खातिन, बड़की मुनवा, सत्यानंद सालिक खातिन और हई जोन गीत अभिमन्यु हरिपाल के आवाज में रखल मजेदार गीत। आउरी हमर चाची के का बोलब जाने लग चल गल कोन दिन बाजार एगो नवा टेम्पो किने, तभी एगो नवा टेम्पो त लाने पे चाचा किन के देलन, त हम बोली चाची काहे हो एगो नवा किन टेम्पो किनत हो, बोले देख ले गई देखे गईली बाजार में नवा टेम्पो, हम बोली काहे बिगड़ गल का, बोले न जाने लो जब हम टेम्पो पे दाल चढ़ाई ला न जब मोबाइल में ढुक जाइला त दलवा जर जाला त नहीं जानिला, हम देखे जात हई हम मौसों से पूछब एगो टेम्पो मिले ऐसे जैसे उ सीटी बजी त कम से कम हमनी के बताई कितना सीटी होल बा, त हमनी के पता चली कितना सीटी हो गल बा न, कहे के गिनती भुला जाइला बूढ़ा हो गल हई हवे से। हम बोली का हो चाची बाजार में ऐसन टेम्पो कहाँ मिली तोरा जे तोरा गिनती कराई कितना सीटी होल बा।
2: सिया मांग

0: भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा। भोजपुरी तड़का
1: भाई जीवन में तनी गमट करे के बहुत जरूरी है, तड़का मारे के बहुत जरूरी है। और जैसे हमर चाची और चचा तो तड़का मारते रहे लन सब, अपन जाने ल उ तड़का मारे लन अपन झगड़ा के। अरे वो बात छोड़, चला आगे बढ़ब जा। चाची ललिता हमनी के संगे जुड़ गल हवन त्रियोले बगल से, और सब कोई कुशल परिवार खातिर अगला गीत के उमंग कले हवन। और है गीतवा भी बहुते मजेदार, लाले लाल होठवा लागी ना ही छूटे राम के बहुते मजेदार गीत। बहुत खुशी रहल हन सुने के। और है गीत उनकर बहिन सुदेवी ज्ञानी और देवी ना, और संगे हवन छोटी पोलौजे से नीता खातिन, और दादी प्रभावती खातिन, सुखलाल मौसी खातिन, भाई आत्माराम, भाई हरीश खातिन, और माला राम जी आवन खातिन। चला हंसते मुस्कुराते सुनब जा है बढ़िया संगीत। और गीत के संगे संगे जाने ला चाची और चचा जितना झगड़ा करत हवन, त दमोदर भैया बोलन चचा गजोदर के, जाने ला अभी हम राजों पर सुन ले रही, जब पति पत्नी में झगड़ा होवे के शुरू हो जाला तो तनी काउंसलिंग करे के चाहिला। बोले कौन ची करे के साहिला? बोले काउंसिलिंग जाके बतियाई के चाहिला, काहे झगड़ा होता उ तोहरा बताई कौन ची करे के चाहिला। तो चल गल चाची के लेके काउंसिलिंग करे। तो काउंसिलिंग होला जोन भैया रहल उ पूछलन चचा के, चचा तू शादी काहे करलक? तो चाचा के तो लाल लाल गाल टमाटर जैसे शर्मा के, बोले हमनी के तनी मस्ती रहल हो वैसे शादी कर देनी। तो बोले चाची तू शादी काहे कलन? तो चाचा के तो गाल टमाटर नियर लाल लाल हो गल रहल ना। अब तो चाची के तो आँख टमाटर नियर लाल लाल होके खिसिया के चाचा के ओर देख के, बोले एकरा तो मस्ती रहल, एकर सब मस्ती उतारे खातिन हम शादी कर ले रही।

जा पर कल्याणी जी भी हमनी के संगे जुड़ गल हवन बा शेरी बगल से और अगला गीत जो ना संभावती दुमन की आवाज में वो मांग कर ले हुआ और हई गीत भी बहुत मजेदार कैसे बोला बे को कुहा नियर आहो ऊर्जा नियर जाने ल हमर जो चचा है कौन दिन कौन ची होल ओकर तन ऐसन बार सब खड़ा हो गल अखवा तक करिया करिया और कान में से जैसे धुआं निकले मुआ तो ऐसे फाट के तो चाची के बुझाल का होल चचा के तो उठा के हाली से टैक्सी में डाल के लेके गल लोपीताल तो लोपीताल में जाके डॉक्टर के बोले हाली से देखकर हमनी के बूढ़ा के का जानी कौन ची होल तो चचा के देख के तो डॉक्टर बोले हाँ कौन ची होल ओकरा माता जी ओकरा कौन ची कुहा धर ले बाकी का बोले नहीं कुहा तो नहीं धरले बा पर कुहा के पापिया आल रहल त कुहा के पापिया देख के ओकर सब बार सब ऐसन खड़ा हो गल आंख में से ऐसन ऐसन आंखवा तक करिया हो गल जैसे कि कुहा लग गल बा बोले कौन पापिये बोले कुहा के पापिये चलाल त जैसे उ धर देलक त ओकर बुझाल जैसे कुहावा चल गल बोले हाँ तनी महंगा हो गल बा ना महंगाई बढ़ गल बा हवे से त तनी झटका लगल चचा के 4,000 रुपया के बिल चलाल बोलत

0: भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मौरी देखते देखते 9:55 हो गल बा। एक घंटा कैसे बीतल हाली से और ही चला एगो और घंटा रह गल बा। बिल्कुल 11 ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और हईजा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन शोभा जी पॉम्पले मुस बगल से और उनकर सब संगतिया खातिन सब कोई दोस्त खातिन सब परिवार खातिन अगला गीत के मांग करत हवन और है गीत भी बहुत मजेदार लागी नहीं छूटे राम की एगो बढ़िया गीत है रखिया बंधाल भैया काहे के सावन के महीना चलाल बा और आवत समय में मनावब जा राखी के पर्व तो चला जितना भाई बहन लोग सुनत हवन उन सब कोई के बहुत बहुत प्यार और अगला गीत जोन है गीत चलावब जा विजय बंधन जी खातिन भी जे क्लावेट से हमनी के साथ देवत हवन पत्नी रेखा और तीन गो बहन है चंदनी बिंदु कुमारी और जितना संगतिया हवन उन सब कोई खातिन बहुत प्यार से चलावब जा और हमनी के पीतो बगल से जुड़ गल हवन गणेश परिवार अमृता गणेश हमनी के साथ देवत हवन उनका दू गो नातिन सोनिया और परी बेटा हवन विषम पतो हवन मीनाक्षी और बेटी हवन पूनम तो चला हंसते मुस्कुराते सब कोई साथ देते रहिए जाला जवाब कार्यक्रम चलते रही और ही हमर चचा के का बोलब दुखते ओकरा बोलले बा तनी मॉर्निंग वॉक करे के त हमनी के चचा बोले जाने ला मॉर्निंग वॉक करे के कोनो फायदा नहीं है हम बोली काहे ऐसन बोलत हवा चचा बोले देखा एक महीना से मॉर्निंग वॉक करत है हमनी के एक बात तो समझ में चलाल बा कि मॉर्निंग वॉक करे के कोनो मंजिल नहीं है घूम फिर के हौजे फेरो से जाए के पड़ी तोरा और कितना भी मेहनत करबा आई पेट जोन हा आई जोन तोहर पेट फुला गल बा उ फुले रही उ कबो भीतरे नहीं हेली हम बोली नहीं चाचा तू जाके उतना मॉर्निंग वॉक करके चलावेला अरे कितना गातो पीमा खाला बोला था बड़का बड़का जीपे में इतना जीबे सब लगा के खाई बा तो कहाँ से तोहर पेटवा भीतर जाई बोलता अरे चला एगो बढ़िया गीत बोला तरफ सुनावत है हाँ जोन गीत है हाँ। राखी के गीत है हाँ। तनी तोहर बहिन खातिन चलावब हई हाँ। चलावत हई हाँ। तो सुना है हाँ गीत बहुत मजेदार गीत है हाँ। और जाने ला एग्जेसिस करिए तनी

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का
2: धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
3: भोजपुरी तड़का मजेदार कार्यक्रम और 10:02 होगलवा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के जितना कोई श्रोता लोगन हमनी के सुनत हवन, बस प्यार से साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम संगे है जा पर हमनी के प्यार ही चाची शांता सुकागी भी जुड़ गल हवन से जमिल फॉरेस्ट बगल से, और उनकर पतो हवन किरण और नाती हवन पावेश, नातीन संजना, चार गो बेटा सुदेश, गावीन, सुजीत और अशोक खातीन चलाव अब जागला गीत गीता गजादर के आवाज में रखल। और हई गीत खास करके चाची बोले हमर समधी जी खातीन चनी चला दा हई गीतवा मेघदत्त जपत रॉय जे ग्लेन पॉक से हमनी के संगे जुड़ गल हवन और सब जपत रॉय परिवार खातीन तजलत चलाव अब जा समधी समधन खातीन हई गीत गीता गजादर के आवाज में रखल समधन के लगे हिचकी। और हमर चचा है कौन दिन हमनी के बोले हमर कुत्ता जोन है वो अंडा दे ले बा, हम बोली चचा तोर कपार घूम गल बा का, कुत्ता कबो अंडा देवे सकी, बोले हाँ काहे नहीं देवे सकी, हम बोली चचा कुत्ता तो जनावर है और अंडा तो मुर्गी देवेला, बोले हमर मुर्गी के नाम हम कुत्ता रख दे ले हाँ वही खातिर हमर कुत्ता अंडा दे ले बा हो। आ कलिते के एक्सपेरिमेंट करता है चचा,

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:10 हाली समय वा आगे बीता था और ही चला अगला गीत जो हम मानती जी हमने के साथ बहुत प्यार से देवत हवन नोएल फ्रांस से और आज तक उनकर सब परिवार उनकर संगे जुड़ गल हवन और अगला गीत जन है मड़ैया में आग लगल बा है गीत तो मंगले हवन उनकर दुगो बहिन अनंती और आरती दुगो पतो हवन अनुषा और उर्वशी और साथ देवत हवन गिरीशा मितिशा अमिक्षा साथ हवन भव्या पुष्कल और हितांशु चला हंसते मुस्कुराते है गीत सुनब जा।

और हमर पप्पू भैया के तो किस्सा सुनते चला। पप्पू भैया कौन दिन आल एविताशो करे, बोले जाने ला हम बहुत खुशी है। हम बोली काहे भैया पप्पू कौन ची होल, बोले हम और हमर जन छोकरी संगतिया है ना शादी करत हवन। अरे हम तो बहुत खुशी हो गई नी। हम बोले अरे वाह पप्पू भैया तोरो बहुत बहुत बधाई। बोले हाँ हमर शादी हुआ था 20 तारीख के और हमर जो छोकरी संगतिया है ना ओकर शादी हुआ था 30 तारीख के। तो हम बोले हैं है कैसे, बोले अलग अलग शादी करत हैं संगे संगे शादी नहीं करत हैं। हम बोले तो इतना खुशी से तू काहे अपन शादी के इनविटेशन करत हुआ।

भीतर का कार्यक्रम के जारी रखत है और हैजा पर हमनी के साथ देवत हवन अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लाग देनी से और संतोष महादेव की आवाज में रखल पियर पियर उंठी के गीत के मांग कर ले हवन तब मजेदार गीत बा और मजेदार गीत संगे चला सुनब जा अगला गीत उनकर खातिर उनकर सब परिवार खातिर और जितना कोई खुशी अवन है गीत सुने के और ही आप सब कोई के याद दिलावत है कि चचा गजोधर का जनी कैसे कैसे हमर चाची के बतवा सुना देवेला जाने लो हमर चाची बिचारी नवा नवा सब पकवान सीखेलन सा यूट्यूब पे देख देख के और कौन दिन इतना जोली से एगो तरकारी जोन चीज रहल घर में उस सब सब्जी डाल के एगो बढ़िया तरकारी पका के पारी करके चचा के परोस देलक तो चचा तक खा के जैसे मुंह बनैलक और हाली से हल्ला करके बुलैलक चाची के बोले अरे बुढ़िया हियाँ तो चाची तो चलाल तो बोले का पकैले हवन बोले का है एगो बढ़िया तकारी बनाई ले हाँ, हाँ, यूट्यूब पे देख देख के बोले हाँ एकर नाम का है बोले नाम तो नहीं जानीला देख देख के पकैले रही तो नमवा तो नहीं देखले हई बोले काहे पूछत हवा हो बोले जब मर के जाब यमराज हियाँ तो यमराज पूछी नहीं हमनी के कौन चीज खा के मरल रलन तो हवे बोले के तो नाम तो नहीं जानत हवा तो कैसे जानब कौन चीज पकैले हवन कुछ ना कुछ पकैते रहेला हमर बुढ़िया

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:22 हो गल बा जितना कोई रात के काम करत हवन आप सब कोई के बहुत बहुत हिम्मत के साथ बस आप सब कोई जुड़ल हवन और आज के अगला गीत जोन है अनीता जी अनीता लाल जी खातिन चलावब जाबो डाल बेस साथ देवत हवन और अगला गीत जोन है बसंत सुपोल के आवाज में रखल है गीत है और ई तो परिवार गोगा परिवार और उनका जितना खास दोस्त आज उनकर हियाँ आल हवन उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा और ये हमर जोन चचा है कौन दिन ऐसे लंगड़ते लंगड़ते चलत हवन और जितना कराता ता हम बोली चचा कौन ची होल बोले का बोला अब हमर तो जाने लग गोड़ में घाव लगल बा तो दोगतिया ही आ गल रली तो नसवा जाने लग कौन ची कलन हम बोली हम कैसे जानब चचा बोले नसवा एगो इतना बड़का सुई लेके हमर पाछे में भोंक देलक हम बोले अच्छा पिकिया करा ले हो अब बोले ऊ छोड़ा पहला तक गोड़ में दर्द रहल चले नहीं सकत रली अब तो बैठे नहीं सकत है हो

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
0: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला आगे बढ़ब स और हई जो नगला गीत है पूर्णिमा फोकीरा जी खातिन चलाओ अब जा फोकीरा परिवार देवी दयाल परिवार कालिया चेटी परिवार और SSRN के सभी दोस्त खातिन जितना सुनत हवन उन सब कोई खातिन चलाओ अब जा हई अगला गीत और हई गीत पूर्णिमा जी के आवाज में और जाने ल चाचा हमनी के एगो इतना मजेदार पते के बात बोले बा बोले जब उठाता फजीरे तो देखत आई हई के भाव बढ़ गल हौ के भाव बढ़ गल पेट्रोल के भाव बढ़ गल लाइसेंस के भाव बढ़ गल डीजल के भाव बढ़ गल काश हमनी के पगार भी ऐसने फजीर के उठते ही तोरा एगो जानकारी मिली तोहर पगार भी ऐसने बढ़ गल कितना अच्छा हो आई तो चचा तू नहला पे दहला मार दिलक पर कहाँ होला हो ऐसे आई तो सपना बेचा था हमनी के

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ये चला है जहाँ पर मेबग से हमनी के संगे जुड़ गल हवन कल्याणी मोहन जी और अगला गीत के उमांग करत हवन बहुते मजेदार गीत और है गीत चलाओ अप डाउन कर खातिन जन हा बेलेना बेलेना बसंत सुपोल के आवाज में है ये गीत कर अब जा बिंदु काली चन खातिन और गायत्री उनकर भगिनी और उनकर बेटा अजय खातिन जे नोएल फ्रांस से हमेशा हमनी के साथ देवेलन और है ये गीत कर अब जा नीता खेदनी खातिन सेंट जूलिया विलार से जुड़गल हवन उनकर खास संगतिया स्वाधिका खातिन

0: नाचे भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही चला आज के मजेदार कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिर अगला गीत एक बार फिर

तो से लागी नहीं छूटे राम के हाई गीत चलाओ अब जा श्यामा जी खातिन श्यामा रघुनंदन जी हमने के संगे जुड़ गल हवन गौ गोप देने से और बिल्कुल उनकर भैया हवन जयप्रकाश भौजी हवन नम्रता केशव और युधीश दूगो भगीना और साथ हवन उनकर खास संगतिया विश्वानी जी और वीना राम फल जे हमने के हमेशा सुनते रहेलन। और अगला गीत के साथ साथ हमर चचा जोन है कबो कबो ऐसा समझदारी के बात बोल देवेला हमनी के बोले जाने ल है जोन तोहर गलती पे जोन इंसान अपन गलती पे हसेला ओकर उम्र बढ़ जाला। हम बोले सच्चे के चचा बोले हाँ आउरी जोन अपन बुढ़िया के गलती पे हसेला ओकर उमीर जोन है कमती होवे के शुरू हो जाला।

0: तड़का
1: भोजपुरी दरगाह कार्यक्रम अवरी चला पौने 11 बजे था और हैजा पर शोभा जी का थोबोन से हमने के संगे जुड़ गल हवन और ओमनिका के बहुत बहुत प्यार से बधाई देवत हवन जन्मदिन के जेकर काल जन्मदिन रहल 21 तारीख के उनकर माता पिता दादा दादी नाना नानी भाई और उनकर सब परिवार के दिन से बहुत बहुत ओकरा जन्मदिन के बधाई देवत है और हमर पूरा एमबीसी की टीम बगल से ओमनिका के बहुत प्यार बहुत बहुत जन्मदिन के बधाई और जितना कोई जन्मदिन मनावत हवन बसंती जी बोले ओकर खातिर भी चला जात शोभा जी हमने के साथ हवन और शोभा जी हमने के बोले सब कोई जितना जन्मदिन मनावत हवन उनकर खातिर चला द एगो जन्मदिन के बहुत ही प्यारा सा गीत जरूर है गीत जितना कोई जन्मदिन मनावत हवन उन सब कोई खातिर हैप्पी बर्थडे।

भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला मजेदार कार्यक्रम संगे जितना कोई अभी हमनी के साथ है जुड़ल हवन और हैजा पर निमन परिवार साथ है देवत हवन हमनी के और निमन परिवार खातिन चलाओ अब जा अगला जुन लाखोश है बहुत ही मजेदार गीत है और है गीत चलाओ अब जा खासकर उनकर खातिन चला सुनब जा बसंत सुपोल और सोना नयन के आवाज में रखल है गीत खासकर निमन परिवार खातिन

0: पैदा होते ही कि नहीं मर गए सब दिन दुख बढ़ी जाए।
1: चला है ये गीत हमनी के जोड़ी हमनी के 11 बजे के कार्यक्रम सुनहरे पल के संगे और है ये गीत के साथ आज के भोजपुरी दड़का कार्यक्रम हैजा पर समाप्त हो जाए। आप सब कोई हमनी के ढेर से बहुत प्यार से सुनलन, बहुत बहुत धन्यवाद बोलब जा और आवत सामदी के एक और एक बार फेरों से सब कोई के साथ दिवब जा हैजा रेडियो मॉरिशस सॉरी रेडियो मनोरंजन के लहरों पर भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में। तो चला साथ देवे खातिन बहुत बहुत धन्यवाद और एकर संगे रत्ना के दीजिए अनुमति। शुभ रात्रि, नमस्कार सब कोई के।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

समस्त श्रोताओं को नीतूषा का करजोर प्रणाम। इस समय आप रेडियो मॉरिशस के साथ जुड़े हुए हैं और आप सुनहरे पल कार्यक्रम सुन रहे हैं। हमेशा की तरह श्रोताओं, आज भी बॉलीवुड के उस जमाने में आपको ले चले हैं जहां पर अभिनेता और अभिनेत्रियां जो थीं वो कमाल का काम कर रहे थे। उनमें से एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिनका करियर तो एकदम सक्सेसफुल सफल रहा ही, और जिन जिन मूवीज में उन्होंने काम किया वो काफी अच्छे भी रही और गाने जबरदस्त। कौन है वो, ये पहला गाना आप सुनते चले, पता चल जाएगा। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

तो आज के ये सुनहरे पल कार्यक्रम में जिनसे हम मुलाकात करा रहे हैं वो है तनुजा। जी हाँ, वेटरन एक्ट्रेस तनुजा। सौंदर्य, प्रतिभा और स्वाभिमान की मिसाल। हिंदी सिनेमा के स्वर्णीय इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार होते हैं जो सिर्फ अपनी फिल्में ही नहीं बल्कि अपनी शख्सियत, अपनी सोच और अपने अंदाज से भी याद रखे जाते हैं। ऐसी ही एक अभिनेत्री हैं तनुजा, जिन्होंने अपनी तीखी नज़र, खुले विचार और प्रभावशाली अभिनय से 60s और 70s के दौर को एक अलग पहचान दी।

पूरा नाम तनुजा सामर्थ है। उनका जन्म 23 सितंबर 1943 को मुंबई में हुआ। वो एक कलात्मक परिवार से आती हैं। उनकी माँ शोभना सामर्थ खुद एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और फिल्म निर्देशिका थी और उनकी बड़ी बहन नूतन तो हिंदी सिनेमा की महान अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं। इस प्रकार कला, रंगमंच और सिनेमा तनुजा के खून में ही बसा हुआ था।

0: पूजा ने बचपन में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी पहचान एक मुख्य अभिनेत्री के रूप में 1950 के अंतिम और 1960 के दौर में बनी। उनकी पहली बड़ी सफलता 1960 की फिल्म छबीली रही, जिसे उनकी मां शोभना सामर्थ ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में तनुजा का चंचल और जिंदा दिल अंदाज दर्शकों को तुरंत भा गया। इसके बाद तनुजा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने लगातार कई सफल और यादगार फिल्में की, जिसमें उनका अभिनय प्राकृतिक भावनाओं से भरा और बहुत ही जीवंत था।
1: ये

श्रोताओं, इस समय आप सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम बात कर रहे हैं तनुजा के बारे में। वैसे उनकी सबसे बड़ी खूबी थी उनकी नेचुरल एक्टिंग। वो बिना ज्यादा बनावट के अपने किरदार को जीती थी। उनकी आंखों की भाषा बहुत ही प्रभावशाली थी, कभी चंचल, कभी तेज, कभी गहरी वेदना से भरी हुई थी। उन्होंने ग्लैमर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रोल्स भी निभाए। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली थी। उस दौर में जब अधिकतर हीरोइन शर्मीली और शांत दिखाई जाती थी, तनुजा ने बोल्ड, कॉन्फिडेंट और जैसे कहते हैं ना आउटस्पोकन महिला के रूप को पर्दे पर पेश किया।

अनुजा की कुछ यादगार फिल्में हैं जैसे कि 1966 की बहारें फिर भी आएंगी, 1967 की जुआ थीफ, 1971 की हाथी मेरे साथी, 1972 की मेरे जीवन साथी, 1971 की अनुभव और 1970 के पवित्र पापी। फिल्म हाथी मेरे साथी में उनका अभिनय आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में उन्होंने ममता, समर्पण और नारी की सहनशीलता को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया। तनुजा का विवाह शोमू मुखर्जी से हुआ जो एक फिल्म निर्माता थे। विवाह के बाद उन्होंने फिल्मों से कुछ समय के लिए दूरी बना ली और अपने परिवार पर ध्यान दिया। उनकी बेटियां काजोल और तनिषा मुखर्जी हैं जो आज खुद फिल्म जगत का हिस्सा है। काजोल के रूप में हिंदी सिनेमा को एक और शक्तिशाली अभिनेत्री मिली जिसमें कहीं न कहीं तनुजा की प्रतिभा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है।

बाद के सालों में तनुजा ने माँ और कैरेक्टर रोल्स में वापसी की. उन्होंने भूत रोल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला साथ ही आज जैसे प्रोजेक्ट्स में अपनी मच्छियो एक्टिंग से फिर से सबका ध्यान खींचा. ये उनकी कला की गहराई को दर्शाता है कि हर उम्र के साथ उनका अभिनय और भी निखर कर सामने आया. तनुजा को उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले. उन्हें हिंदी सिनेमा में उनके लंबी और समर्पित सेवा के लिए फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार उनकी कला, उनके संघर्ष और उनके प्रभाव को समर्पित एक सच्चा सम्मान है.

श्रोताओं, तनुजा सिर्फ एक अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक सोच, एक जज्बा, एक पहचान है। उन्होंने अपने काम से ये साबित किया कि सच्चा अभिनय शब्द से नहीं भावना से जन्म लेता है। उनका योगदान हिंदी सिनेमा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तनुजा ने एक ऐसे दौर में अपनी अलग राह बनाई जब परंपराओं को तोड़ना आसान नहीं था, इसलिए वो आज भी ग्रेस, स्ट्रेंथ और ओरिजिनलिटी का मिसाल मानी जाती है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

NBC Radio, हर पल आपके साथ।

सी रेडियो हर पल आपके साथ।